0: लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चकचाल कैसीनो एंड रिजॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 इयर्स और ओल्डर टू गेम।
1: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
2: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
1: Kya matlab?
2: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
1: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
2: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
1: Ab to karna hi padega, madam.
3: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
4: Yaar, festival season aa raha hai. और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है।
5: कितनी लंबी लिस्ट है?
4: बस दो पेजेस। इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ एक पूजा मंदिर भी।
5: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL वर्ल्डवाइड है ना। इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं। पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है।
6: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL वर्ल्डवाइड शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड वर्ल्डवाइड। विजिट SFLWorldwide.com.
7: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
8: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
7: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
8: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान। एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 9455270897 or visit astrologer-ishwar.com.
9: एक और लड्डू ले लो।
10: थोड़ी और बिरयानी।
9: अरे अमेरिका जाके थोड़ी मिलेगा।
11: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बन के साथ आ गए।
12: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए। स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अलोंग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स, दे आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स। कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259। पैशन Health Primary Care.
13: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.

एंड गाइज एज प्रॉमिस मैं आपके लिए नया गाना लाई हूँ. दिस वंस कॉल्ड अरे बावड़ी फ्रॉम द मूवी डोंट बी शाई. ऑफ कोर्स कंपोज बाय राम संपत इन द वॉइस ऑफ सोना महापात्रा. एंड इन केस यू वंडरिंग नी कौन सी मूवी है यार, ये मूवी अभी रिलीज होने वाली है, अभी तक हुई नहीं है. 5 दिन पहले ये गाना रिलीज हुआ है एंड इट फीचर्स आलिया भट्ट टू. सो डेफिनेटली गो चेक इट आउट व्हेन इट्स आउट इन द वर्ल्ड.

तो गाइज, आपका ट्यूसडे कैसा जा रहा है? मेरा तो सही जा रहा है. आई मीन इट वॉज प्रेटी गुड. ट्रैफिक नहीं था. लाइफ इज़ प्रेटी अमेजिंग. ओके. लेकिन यू नो, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड इज़ अबाउट टू स्टार्ट अगेन, राइट? तो अगर आपकी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है गाड़ी वाड़ी की, एंड यू आर लाइक जस्ट टालोइंग इट कि नहीं, बाद में ठीक कराएंगे, अभी करा लो, बिकॉज अक्टूबर में मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड आता है. आई डोंट नो इफ यू आर अ बिलीवर ऑफ ऑल दैट और नॉट. आई एम डेफिनेटली बिलीवर ऑफ ऑल दैट. आई एम दैट वू वू गर्ल हु बिलीव्स इन ऑल ऑफ द एस्ट्रोलॉजी एंड मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड एंड ऑल ऑफ दैट. सो मेरे साथ तो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है, हमेशा ड्यूरिंग द रेट्रोग्रेड. सो आई ट्राई एंड प्रिपेयर फॉर इट इन एडवांस. आई एम जस्ट टेलिंग यू, मे बी यू वॉन्ट डू द सेम. ओके. ऑलराइट गाइज, आई एम गोना प्ले यू वन सॉन्ग. आपको बाय द वे, गाना बजाने से पहले आपको पता है ना, सोनू निगम इज परफॉर्मिंग दिस सैटरडे एट क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सस इवेंट सेंटर इन एलन. येस, दिस सैटरडे एट 8:30 PM. तो अगर आपने टिकट्स नहीं लिए हैं, जल्दी जल्दी ले लो यार. दे आर अवेलेबल एट टिकट मास्टर. समवेयर आई रेड दे आर ऑलमोस्ट सोल्ड आउट एज वेल. ऑल द $45 टिकट्स, $55 टिकट्स जो भी थी, सम ऑफ देम आर ऑलरेडी सोल्ड आउट. सो यू मे जस्ट हैव ओनली द एक्सपेंसिव ऑप्शन अवेलेबल. बट यू नो वट, इट डजेंट मैटर. इफ यू लव द आर्टिस्ट एंड इफ यू लव म्यूजिक, देन गो फॉर इट. ओके, चेक आउट ऑनलाइन एट टिकट मास्टर. मे बी यू कैन स्टिल गेट सम टिकट्स. ओके, और यू कैन कॉल 855-360 शोज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. येस, सोनू निगम इज परफॉर्मिंग दिस सैटरडे एट 8:30 PM. तो आई एम गोना प्ले यू अ सॉन्ग बाय सोनू निगम, एंड आफ्टर दैट वी आर गोना गो इन टू अ शॉर्ट ब्रेक आफ्टर द सॉन्ग, एंड आई विल सी यू आफ्टर द कमर्शियल ब्रेक. बाय.

0: तारा।
1: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
2: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
3: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
2: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
3: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
2: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
3: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
2: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
4: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
5: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
4: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
5: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
6: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
7: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
8: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
7: नहीं।
8: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
7: नहीं।
8: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
7: वो भी नहीं।
8: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
9: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे

0: for services. Visit agfintechs.com. Call 972-618-8555. AG Fintechs, your growth, our strategy. AG Fintechs, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
1: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
2: Dallas has its own superheroes. Fighting dust, clogs, blocked vents and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer and fresher home.
3: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस.
4: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
3: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
4: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
3: ये क्या होता?
4: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस एंड एलन.
5: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
0: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन.
6: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूं.
7: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
0: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
8: वेट, इतना सब और प्राइस?
0: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
9: मैं.
10: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
11: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
10: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
12: तुमसे मिलके दिल का है.
11: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
10: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क. इश्क, इश्क है, इश्क, इश्क ये, इश्क, इश्क है.

तो गाइज, एज प्रॉमिस, मैं आज मैंने आपको बोला था, आई एम गोना ब्रिंग सम न्यू म्यूजिक टू यू. वेल, इसके पहले आपने जो गाना सुना दैट वॉज नॉट न्यू, दैट्स एक्चुअली 15 ईयर्स ओल्ड. लेकिन उसके पहले, बिल्कुल ब्रेक के पहले, मैंने गाना बजाया था फ्रॉम एन अपकमिंग मूवी. आई एम गोना प्ले यू अनदर सॉन्ग. ऑफकोर्स थैंक्स टू माई लिसनर्स एंड माई फैंस आउट देयर. यू गाइज, वेन यू गिव मी न्यू इन्फॉर्मेशन दैट समहाउ आई मे हैव मिस्ड ऑन माई रेडार, आई लव इट बिकॉज देन आई कैन शेयर विद एवरी वन एल्स. सो if you want to share new music with me that I have not heard yet, or if you want, you know, just to share, play a request or something, you can also text me on Instagram. You can DM me, you can follow me on Instagram and DM me and tell me a request, and I'll be more than happy to play it for you. My Instagram handle is ipi.music. Thank you to Zimran who sent me this track subah subah ki bhai mera gana please zarur bajana. कि ये गाना नया नया आया है, आज के दिन रिलीज हुआ है. इट लिटरली रिलीज वन डे अगो. प्लीज प्ले इट. सो आई टोल्ड ज़िमरान, आई सेड ब्रो आई विल प्ले इट एट 7:30 एज प्रॉमिस. भाई 7:40 हो गया, कोई बात नहीं, 5-10 मिनट चलता ही है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ना. तो दिस इज ठुमक ठुमक फ्रॉम द मूवी द वन. आई थिंक इट्स सपोज टू बी वन, लेकिन दो वी के क्या रीजन है ये मुझे नहीं पता. अगर आपको पता है, you can tell me, call me up and let me know. 972-235-5555 from this new movie called The Vavan. Let's play.

0: तुम मजाक कर रही हो या लाइन मार रही हो?
1: लाइन मार रही हूँ। तो गाई, अगर ऐसे ही ठुमकते ठुमकते वीकेंड भी आ जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो अगर वीकेंड आ गया है एंड यू आर फिगरिंग आउट आज क्या बना है वीकेंड पे खाने में, चलो बाहर चलते हैं। यू शुड डेफिनेटली गो ट्राई आउट द फ्लेवर लाउंज बिकॉज दे हैव देयर वीकेंड लंच बफे दैट फीचर्स माउथ वाटरिंग डिशेज that you're gonna wanna keep going back to. They have a live counter, they have chef special, fresh flavors, all of this, everything for just $24.99. Saturday Sunday ko buffet hota hai from 12 PM to 3 PM, so make sure you definitely go check it out. And they have a new location in Frisco at 5855 Preston Road, Frisco. Flavor Lounge, good food, great memories. Aapke liye ye next gana.
2: ऐसा लगा तो नहीं, but that's fine. मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं।
3: कुछ डायलॉग सिर्फ सलमान खान पे अच्छे लगते हैं, सब पे नहीं।
1: This song is also from an upcoming movie, of course composed by the one and only Amit Trivedi. And the movie is called Vibe, okay? And it's a new movie which features Kunal Khemu, Vanshika Dheer. So definitely check it out when it releases.

तो गाइज मैंने वो गाना इसीलिए पॉज किया बिकॉज आई वांट टू प्ले यू अ डिफरेंट सॉन्ग टुडे. दिस वन इज कॉल्ड टॉक्सिक. ओके, इट इज फ्रॉम द मूवी, इट इज फ्रॉम द मूवी रॉकिंग, एंड इट इज कंपोज एंड अरेंज बाय विशाल मिश्रा, एंड ऑफ कोर्स द लिरिक्स एंड द सिंगर इज हनीता भामरी. नाउ दिस फीचर्स यश एंड कियारा अडवाणी. एक्चुअली द वीडियो ऑल्सो फीचर्स विकी कौशल. लेकिन एक फन फैक्ट पता क्या है, ये भी 11 दिन पहले ही रिलीज हुआ है गाना. ठीक है, फन फैक्ट पता क्या है, आप सोच रहे होगे मैं फेंकती रहती हूँ ऐसे, लेकिन नहीं है. जो हनीता भामरी जो सिंगर है, जब मैं इंडिया में थी अराउंड 10 साल पहले, हनीता वॉज एक्चुअली अ स्टूडेंट ऑफ माइन इन गुड़गांव, एंड इट वॉज अ म्यूजिक स्कूल कॉल्ड वन वर्ल्ड स्कूल ऑफ म्यूजिक, और वहाँ पे मैं सिखाती थी. आई यूज टू टीच म्यूजिक दैट, एंड हनीता वॉज माई स्टूडेंट देन. उसके बाद शी यूज टू डू प्राइवेट वॉइस लेसन्स विथ मी, सिंगिंग लेसन्स, एंड इट्स सो अमेजिंग टू सी हर सिंग एंड राइट म्यूजिक फॉर दिस इनक्रेडिबल बॉलीवुड मूवी. एंड या आई इट गिव्स मी ग्रेट जॉय टू सी ऑल माई स्टूडेंट्स सक्सीडिंग सो वेल. तो आप ये गाना इंजॉय करिए, दिस वन इज कॉल्ड टॉक्सिक.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
3: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal, or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
4: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो. जॉइन पास या एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री. शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियर बाय. पास या बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग.
5: वांट टू एक्सप्लोर प्रॉपर्टीज इन इंडिया? यू डोंट नीड टू फ्लाई टू इंडिया. The Grow Pravesh India Property Expo is coming to Frisco. Meet top developers from Bengaluru, Hyderabad, Mumbai, Pune, Chennai and Delhi NCR. Explore 200 plus projects for your dream home or next investment. October 10th and 11th, Hath Regency Frisco, 10 a.m. to 8 p.m. Free entry, free parking. Grow Pravesh India Property Expo by My Square Feet.
6: भूख लगी
7: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
8: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू. ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी. ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
7: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी.
9: जिंदगी एक रंगमंच है
10: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल. रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो. दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन. फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन. कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com.
11: वी नीड टू टॉक.
12: अब क्या हुआ?
11: Nothing. It's not you.
12: Oh no.
11: It's the distance.
12: Distance? We live 10 minutes apart.
11: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
13: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
14: Shaadi biyah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
15: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
16: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
17: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन डबल द फ्लेवर.
18: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
17: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं.
18: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी.
16: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड. बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर.
19: When the unexpected becomes inevitable, the real story begins.
20: इस वन की काली शक्तियाँ, और अगर कोई रात को वन में प्रवेश करता है तो उसकी लाश भी नहीं मिलती.
19: Get ready for a brand new action packed experience full of emotion and suspense.
21: एक तरफ है वन देवी और एक तरफ है विकास.
19: The वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट,
22: अ हिंदी मिथोलॉजिकल फोक थ्रिलर डायरेक्टेड बाय अरुणव कुमार एंड दीपक कुमार मिश्रा. सिजलिंग द बिग स्क्रीन फॉर द फर्स्ट टाइम टुगेदर, सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया.
19: ऑन 25th September in cinemas near you.

नूर का झरना है, मैं प्यास पुरानी मैंने आंख से गटक लिया उस हुस्न का पानी। उसे तकते है उम्र गुजारूं

0: टीचर
1: एंड गाइज वी आर बैक. दिस इज इपी द हिप्पी एंड आई जस्ट रियलाइज कि मैं तो यहाँ पे 7 बजे से आई हुई हूँ. 8:08 हो चुके हैं. मैंने आज तो अपना इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया. ले फेल ही हो गया थोड़ा सा. मैं भूल जाती हूँ कई बार. ऐसे आपसे बात करने में इतनी एक्साइटमेंट हो जाती है कि आई कम्प्लीटली फॉरगेट कि भाई मुझे अपना नाम भी बोलना होता है. गाइज यू आर लिसनिंग टू इपी द हिप्पी. वी आर बैक. मेरी एक फ्रेंड है वत्सला जो मेरी रेडियो के थ्रू ही फ्रेंड बनी. कहती हूँ हमें बड़ा अच्छा लगता है व्हेन यू से एंड वी आर बैक. यस यू गाइज वी आर बैक एंड यू आर स्टिल लिसनिंग टू इपी द हिप्पी ओनली ऑन फनेशिया रेडियो 104.9 FM एंड दिस इज माई शो. An evening in Dallas. So guys, without further ado, let's go ahead and play our giveaway game. So, giveaway game क्या है? Giveaway game very simple है. मैं आपको बोलूँगी एक movie की story, ठीक है? ऐम इसे अपने style में मस्ती मजाक के साथ मैं बोलूँगी. आपको उस movie का नाम guess करना है. And that's about it. क्योंकि ये वाला गिव अवे सिर्फ एक ही क्वेश्चन का है. इट्स वेरी वेरी सिंपल. मतलब अगर आपने मूवीज देखी है अपनी तो कोई मुश्किल ही नहीं होना चाहिए. हम तो खेल रहे हैं, इतनी सारी मूवीज होती है. तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. लेकिन पहले ये तो बता दूँ पहला वाला गिव अवे है कहाँ से. पहला वाला गिव अवे इज फ्रॉम द वन एंड ओनली फन पिज्जा किचन. दैट्स राइट यू गाइज. एंड आई नो अ लॉट ऑफ यू पीपल आर लाइक वेटिंग फॉर दैट फन पिज्जा किचन का गिव अवे. कई लोग मुझे आके बोलते हैं यार फन पिज्जा किचन वाला गिव अवे कब होगा. भाई आ गया है मौका. फन पिज्जा किचन में क्या मिलेगा आपको? मैक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्जाज. दे हैव द न्यू मेन्यू विच इज मैक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्जाज, फिएस्टा वेजी, पोयो लोको, सी फूड पैक्ड, सीनियर कैमरॉन और भी बहुत कुछ. एंड Starting this weekend, stop it you guys, this is amazing, okay? This weekend say Fun Pizza Kitchen will be open till, drum roll please, till 3 AM. तो अगर आपको वो midnight या after midnight cravings है, you know, and you have the munchies or you're out partying and then you're like, guys, कुछ greasy सा, कुछ amazing सा, कुछ cheesy सा खाने का mood हो रहा है, then Fun जस्ट ड्राइव टू फन पिज्जा किचन. क्योंकि 2 बजे तक तो वैसे ही ज्यादा चीजें नहीं खुली रहती. ये तो 3 बजे तक खुला है एंड इट इज परफेक्ट फॉर दोज लेट नाइट्स आफ्टर गरबा कॉन्सर्ट्स एंड शोज अराउंड टाउन. तो अगर आप सोनू निगम के कॉन्सर्ट में जा रहे हैं और आपको पता नहीं हो रहा कि भाई अब भूख लगी है, रात के 10 बज चुके, आई डोंट नो वेयर टू ईट, वॉट टू ईट, देन दिस इज वेयर यू नीड टू गो डाउन टू. ओके, न्यू फ्लेवर्स, लेट नाइट क्रेविंग्स, ऑल ऑफ दिस इज सॉर्टेड. आप जीत सकते हैं $10 का गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन बाय आंसरिंग द सिंपल क्वेश्चन. तो मैं बातें कम करती हूँ. माई नंबर इज 9722355555 एंड लेट्स प्ले द गेम. तो वंस अपॉन अ टाइम आपको मूवी का नाम गेस करना है. ओके, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज दिस वन गाय, ही वाज लाइक सुपर डुपर रिच एंड देन ही फॉल्स इन लव विद दिस गर्ल. अब वो लड़की के साथ दे यू नो दे गेट मैरिड एंड दिस गाय सम काइंड ऑफ अ राजा महाराजा टाइप बंदा. अब वो जो लड़की से उसने शादी करी, शी टर्नड आउट टू बी द अल्टीमेट गोल्ड डिगर एंड आई मीन लाइक क्रिमिनल मास्टर माइंड गोल्ड डिगर, नॉट जस्ट अ गोल्ड डिगर. उसने इस बंदे को प्यार में उलझा के बेचारे बंदे का मर्डर ही कर दिया. ओह नो, सो मच ट्रेजेडी. फिर उस लड़की की जो मम्मी और बहन थी उसको पैलेस से निकाल दिया. देन शी स्टार्टेड लिविंग इन दैट पैलेस ऑल बाय हरसेल्फ विद हर न्यू बॉयफ्रेंड. And this is, you know what I'm saying, the ultimate gold digger. Yes, that is the ultimate gold digger. Then what happens after like 25-30 years, ye jo banda hai jiska murder ho chuka tha wo dobara, he's born, okay, in another family and this time he becomes a superstar singer. Guys, abhi tak movie nahi guess kari, come on. अभी तो मैंने पूरी स्टोरी बोल दी यार. वो 25-30 साल आ गया. कॉल हमारा पहला एंड लेट्स सी हु द कॉलर इज.
2: हेलो,
1: हाय, कैन यू टर्न ऑफ द रेडियो इन द बैकग्राउंड?
2: ओके, सो दिस मूवी हिज नेम इज कर्ज.
1: वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशंस, आप जीत चुके हैं फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड. पर पहले अपना नाम तो बताइए.
2: मेरा नाम है अनीला.
1: अनीला जी, कांग्रेचुलेशंस. सब लोग भाई अनीला जी के लिए तालियां बजाओ. एक सेकंड, हम भी पूरे स्टूडियो वाली तालियां बजाते हैं.
2: थैंक यू.
1: मतलब नेक्स्ट
2: थैंक
1: लेवल
2: यू, थैंक यू सो
1: तालियां
2: मच.
1: हैं ऑफ कोर्स. तो
2: ठीक
1: अनिला जी प्लीज स्टे ऑन द लाइन, ठीक है? मैं गाना बजाती हूँ और उसके बाद मैं आपका इन्फॉर्मेशन लेती हूँ आफ्टर दैट. ओके, जस्ट स्टे ऑन द लाइन.
2: ओके, नो प्रॉब्लम.
1: ओके
2: ओके ओके, थैंक यू.
1: यारो दोस्तों, आप लोग इसी कर्ज फिल्म का गाना सुनिए, द ओजी ओम शांति ओम, एंड आई विल टॉक टू यू आफ्टर द
0: सॉन्ग. इन्फॉर्मेशन लेकिन
3: तुमने कभी किसी से प्यार किया?
4: किया?
3: कभी किसी को

And guys, we are back. This is Zippy the Hippie, and you are still listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. Hanji guys, aur ye mera show hai. An evening in fill in the blanks, Dallas. Exactly, guys. तो भाई जाने से पहले हम लोगों ने ऑफकोर्स गेम खेला था एंड ऑल ऑफ दैट. आज मैंने जैसे आपको बताया, आई फील लाइक इंट्रोड्यूसिंग यू गाइस टू सम न्यू म्यूजिक टुडे बिकॉज व्हाई नॉट. पुराने गाने तो हम हमेशा ही सुनते रहते हैं, तो वील मिक्स इट अप टुडे. आई विल प्ले यू ओल्ड सॉन्ग्स जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बजाया ओम शांति ओम वाला, एंड अभी आई एम गोना प्ले यू अ रियली इंटरेस्टिंग सॉन्ग. ओके ओके, हियर मी आउट. This is by this American Indian artist called Priya Raghu, theek hai? And she's been out, she has released some of her own songs for a long time. She mostly writes in English, even though she's Indian American, but she mostly writes in English. So, but her music is quintessentially Indian, South Indian for that matter. I don't know which part of South India she's from, but you can tell the inspiration of the beats and the rhythm jaise usne use kiya. It's very much like maybe like Telugu music or something. So you will, once you listen to it, you'll know what I'm talking about, okay? So I'm going to play you that song. This one's called Finally. This actually showed up on my feed, on my Instagram, bahut sare mahino pehle. एंड उसने ना थोड़ा एक मिनट की क्लिप डाली और मैंने सुना, यार ये गाना तो बड़ा सही है, इट्स सो कूल. एंड देन आई वॉज एंटिसिपेटिंग कि फुल वर्जन कब आएगा, क्योंकि वो उस टाइम पे सिर्फ एक मिनट की क्लिप आई थी. आई थिंक शी वॉज टेस्टिंग आउट द वाटर्स और समथिंग, एंड द एल्गोरिथम वर्क्ड फॉर हर किस इट रीच्ड मी एंड आई एम गोना प्ले दिस सॉन्ग फॉर यू राइट नाउ. आई एम श्योर यू विल लव इट. इफ यू लव इट, यू नो वॉट, एज एन इंडी आर्टिस्ट माई सेल्फ, and because I like to play a lot of indie artists, just go and stream it on your devices, because trust me, jitne views milte hain, jitne hits milte hain, it's good for us. It helps us grow better. So this is Priya Raghu with the song Finally.

0: यार फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है।
1: कितनी लंबी लिस्ट है?
0: बस दो पेजेस। इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ एक पूजा मंदिर भी।
1: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL वर्ल्ड वाइड है ना। इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं। पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है।
2: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL वर्ल्ड वाइड शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड वर्ल्ड वाइड। विजिट SFLWorldwide.com।
3: हेलो, वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
4: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन इज आस्किंग लंच में क्या है?
3: फिकर नॉट, वी हैव द Perfect solution.
5: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
6: Kya matlab?
7: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
7: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
6: Ab to karna hi padega, madam.
8: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
9: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just

0: नॉट लीगल टैक्स और इन्वेस्टमेंट एडवाइस।
1: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
2: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।
3: Season 4. Subscribe now.

मैंने होको का खाना कभी नहीं खाया क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली में तो था नहीं होको। लेकिन अगर आपने खाया है होको का खाना तो आपको पता है वो कैसा है। दे हैव ओपन देयर न्यू लोकेशन इन फ्रिस्को टेक्सस। दे हैव देयर फेमस चना पुड़ी सैंडविचेस डिलिशियस करीज एंड ऑफ कोर्स द लेजेंडरी होको कोल्ड कोको। एंड आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा विद ए वैलिड स्टूडेंट आईडी। तो स्टूडेंट डिस्काउंट भी है फॉर ऑल माई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। एंड देन देर इज ऑल्सो 20% डिस्काउंट फॉर एम्प्लॉयज ऑन लंच पैक्स अवेलेबल मंडे थ्रू फ्राइडे ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। तो गाइज अगर आपको सस्ते में लंच ऑप्शन चाहिए 20% डिस्काउंट भी चाहिए तो देन यू नीड टू गो टू होको। अगर आप ये क्वेश्चन आंसर करते हैं, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है इसीलिए प्राइस भी बहुत ईजी है इसका। अगर आप ये क्वेश्चन आंसर करते हैं तो आपको फ्री आलू टिक्की मिलेगी। यार हु डज नॉट लाइक अ लिटिल चाट। सो दिस इज आलू टिक्की। यू कैन गेट इट एट होको एट प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को एंड लर्न मोर एट hoko.us। सो आई एम गोना प्ले यू अ सॉन्ग, वेरी इजी सॉन्ग। यू हैव टू लिसन टू द सॉन्ग एंड देन टेल मी द ओरिजिनल वर्जन ऑफ दिस सॉन्ग। इसका जो ओरिजिनल वर्जन था 1970s का, उसमें जो एक्ट्रेस के ऊपर जिस पे पिक्चराइज किया गया था उस एक्ट्रेस का नाम क्या है। सिंपल, जिस एक्ट्रेस ओरिजिनल एक्ट्रेस जिसने जिसके ऊपर ये पिक्चराइज किया गया था, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एक्ट्रेस। ओके इट्स वेरी इजी। तो ये गाना आप एंजॉय करो एंड देन कॉल मी एंड लेट मी नो। माई नंबर इज 9722355555।

0: And we have our first caller. Let's see. Hi, can you hear me?
1: Hello.
0: Hi, can you hear me?
1: Yeah.
0: Okay, पहले तो अपना नाम बताइए and दूसरा आप इस question का answer बताइए.
1: Okay. मेरा नाम हिमांशु पटेल.
0: हिमांशु पटेल जी, go for it. Who is the original actress जिसपे ये गाना picturize किया गया था?
1: अपना वो डांस वाली क्या नाम, अभी वो सलीम खान से शादी किया था, नाम भूल गया उसका, एक मिनट है रुकना.
0: ये ना रिसर्च पहले कर लेनी पड़ती है. वैसे आप
1: हम ना वही पास सुनते हैं वही करते हैं, वो रिसर्च वाली में तो सही बता देते हैं. वो आई थी दूसरी कंट्री, मलेशिया, कहाँ से आई थी वो?
0: नहीं, नाम ही तो बताना है. पर आप सही बोल रहे हो, सलीम खान की बीवी है वो, उनकी वाइफ है, लेकिन नाम तो बताना पड़ेगा.
1: नाम बताना पड़ेगा, लेकिन उसका नाम उसका नाम ये मेरा दीवाना.
0: चलिए, आपके पास 30 सेकंड है, नहीं तो फिर मुझे दूसरा कॉल उठाना पड़ेगा. ठीक है, आप रिसर्च कर लो, मैं 30 सेकंड दे रही हूँ आपको, रिसर्च कर लो, कोई टेंशन नहीं.
1: ओके, ऑलराइट.
0: ठीक है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, गो, यू हैव 30 सेकंड्स.
1: ओके, नो प्रॉब्लम.
0: चलो, आप रिसर्च कर रहे हो?
1: या.
0: ओके ओके, आप यू कैन जस्ट टाइप इट इन गूगल, सलीम खान की बीवी, एंड देन यू शुड गेट द आंसर. और अगर नहीं है तो मुझे दूसरा कॉलर लेना पड़ेगा. एंड आपके पास 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड ये बजिया मेरा अलार्म. कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम हिमांशु जी, थैंक यू फॉर ट्राइंग. ओके गाइज, द क्वेश्चन इज स्टिल ओपन एंड वी हैव आवर सेकंड कॉलर. ओके, हाय, कैन यू हियर मी?
2: यस, हेलो.
0: हेलो, अपना नाम बताइए पहले तो.
2: अनिला.
0: अनिला जी, आपने तो पहले एक आंसर कर दिया है, मैं दो गिव अवे आपको तो नहीं दे सकती. आई हैव टू टेक द सेकंड नेक्स्ट कॉलर.
2: Okay, no problem.
0: Guys, the question is still open and here we go, next caller. Hi, can you hear me?
3: Yes, I can hear you now.
0: Okay, great. Pehle to apna naam bataiye and then tell me the correct answer.
3: My name is Sanjay Jain.
0: Sanjay Jain ji, okay, what is the correct answer? Who is the actress jis pe ye gana picturized kiya gaya tha?
3: Zinat Aman.
0: Oh, wrong answer. Helen. So close.
3: Helen
0: है.
3: Parveen Bhavi.
0: चलो, Helen है. आपने सारे गाने एक्ट्रेसेस के नाम बोल दिए. चलो, क्योंकि सेकंड ट्राई पे आपने सही जवाब दे दिया, देन आई दैट्स व्हाई आई विल गिव इट टू यू. कोई बात नहीं. सो संजय जी, स्टे ऑन द लाइन, लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर संजय जी. आफ्टर 1 2 3 ट्राइज ही फाइनली गॉट इट, फटाफट से नाम बोल दिया. Good. So, Sanjay, please stay on the line. I'm going to play a song and then I'll come and take your information, okay?
3: Sure. No worries. Okay. Thank you.
0: Guys, you enjoy this song.

भाई, एज मच एज आई लव द फोक भाषा इन अ लॉट ऑफ दीज बॉलीवुड सॉन्ग्स, बट समटाइम्स दीज राइटर्स रियली नीड टू थिंक अबाउट. अब उसने लव यू की जगह उसने लिखा हुआ है लव जू, मतलब उसको जुए से इतनी प्यार है कि वो लव जू बोल रहा है. लाइक तुम मेरे सर पे एकदम जुए जैसी रेंग रही हो, मुझे तुमसे इतना ज्यादा प्यार है. यू आर नॉट जस्ट नाइस, यू आर लाइस. आई लव यू सो लाइसली. भाई ऐसे ऐसे जोक्स आपको सुनने को मिलेंगे सिर्फ मेरे ही मुंह से, और कहीं नहीं मिलेगा आपको. इंजॉय.

वी आर बैक भाई। भाई हम लोग इतने मजेदार जोक्स मारते हैं ना यहाँ पे, और ऐसे जोक्स आपको कहाँ सुनने को मिलेगा, और कोई नहीं सुनाएगा आपको। एनीवेज गाइस, लेट्स कंटिन्यू विद आवर कॉन्वर्सेशन। दिस इज इपी द हिपी ओनली ऑन फनेजर रेडियो 104.9 FM। इट इज 8:54 ऑन द क्लॉक। कल जैसे हम बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट मिड लाइफ क्राइसिस। आई नो अ लॉट ऑफ माई लिसनर्स हु आर इन द मिड 30s, लेट 30s, अर्ली 40s, एंड एज वी ऑल नो डेटिंग इज बेसिकली ब्रोकन एट दिस टाइम, एंड यू प्रॉबली आर वंडरिंग हाउ टू बिल्ड फाइनेंसिस वगैरह वगैरह, हाउ टू गेट योर लाइफ सेटल्ड, इमिग्रेशन, ये H1B के टंटे, और पता नहीं कितना कुछ ड्रामा ऑलरेडी चल रहा है हम लोग की जिंदगी में। वी आर लिविंग इन डिफरेंट टाइम्स देन यू नो द गाइज हु केम हियर लाइक 15-20 ईयर्स अगो। आई मीन देव ऑलरेडी डन इट एंड दे आर वेल एस्टेब्लिश, बट पीपल हु जस्ट कम हियर इन द लास्ट 10 ईयर्स, यू ऑल नो वट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? इफ यू जस्ट ग्रेजुएटेड, मे बी यू आर अबाउट टू ग्रेजुएट, ऑल द स्टफ इज फॉर यू। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ मिड लाइफ क्राइसिस एक्सप्लेन। भाई मिड लाइफ पहले हमें लगता था इज आफ्टर द एज ऑफ 50, अराउंड 55, यू नो दैट्स वेन अ लॉट ऑफ पीपल, गर्ल्स एंड गाइज इंक्लूडेड, डू समथिंग वाइल्ड। यूजली गर्ल्स, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ गर्ल्स हु आर इन देयर मिड लाइफ क्राइसिस सिचुएशन, दे ईदर गेट अ रियली वाइल्ड हेयर कट और लाइक अ वाइल्ड हेयर कलर, लाइक अ रेड हाईलाइट और समथिंग लाइक दैट। आई हैव सीन इट सो मेनी पीपल। या फिर सम गर्ल्स डिसाइड टू गो ऑन अ सोलो गर्ल्स ट्रिप, यू नो, गो टू लाइक साउथ अमेरिका एंड हाइक और समथिंग। गाइज ऑन द अदर हैंड, दे स्टार्ट डूइंग समथिंग एडवेंचरस। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, हर हस्बैंड, यू नो वॉट ही डिड, ही वेंट एंड बॉट अ हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल। लाइक आई मीन दिस इज टॉकिंग अबाउट इन इंडिया, जहाँ पे बाइंग अ हार्ली इज एक्चुअली अ बिग डील। यहाँ पे तो इट्स नो बिग डील, बट वहाँ पे इट इज अ रियली बिग डील। ओके, या फिर some people, some men go and buy a sports car just because they want to feel in touch with their youth, right? Ya fir some men who just don't have the money to do all that actually start having an extramarital affair. I know it is so common, and I know most people don't want to hear this on the radio, but you know what guys, truth is truth and it is there. Okay, so however, midlife crisis और द सो कॉल्ड मिड लाइफ सिचुएशन डज नॉट हैपन इन योर 50s, क्योंकि आप 100 साल तक तो नहीं जीते हो। ज़्यादातर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑन एन एवरेज इज अबाउट 80-85। अगर आप 100 साल तक जीत गए, इट इज इनक्रेडिबल, बट अगर आप नहीं जीतते हो तो लेट्स जस्ट अज्यूम 40-45 इज द मिड लाइफ क्राइसिस एंड यू नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम इट। द टर्म मिड लाइफ क्राइसिस जो है, इट वॉज बेसिकली गिवन बाय दिस पर्सन कॉल एलियट जैक्स इन द मिड 1960s, एंड इट्स बेसिकली बिकम अ कल्चरल पंच लाइन एवर सिंस। तो लेट्स टॉक अबाउट ऑल दिस अ लिटल मोर, लेकिन एक छोटे से गाने के बाद, उसके बाद 9 बजे के बाद वी विल टॉक अबाउट मोर अबाउट दिस। क्या है

0: गाइज हम अभी ब्रेक में जाने वाले हैं. इन अबाउट 5 seconds आई विल सी यू शॉर्टली. ओके कम बैक बिकॉज वी
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क. यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM KZMP 104.9 FM HD1 पायलट पॉइंट टेक्सास. साइमलकास्टिंग ऑन KTCG 104.1 FM HD2 सैंगर टेक्सास. पावर्ड बाय फन एशिया फिल्म्स एंड फन पिज़्ज़ा किचन. ऑफिशियल टैक्स एंड फाइनेंस पार्टनर AG Fintax. ऑफिशियल इंजरी लॉ पार्टनर द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा इन एसोसिएशन विद पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर.
2: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
3: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
4: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
5: कौन सा?
4: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
5: अरे सारे तो सेम है.
4: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
5: ओ हाँ, ये तो अलग है.
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
6: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था.
7: साइन मिलना मुश्किल है लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
8: अजी सुनते हो?
9: अजी नहीं, एजी सुनते हैं.
10: The OG of tax planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM only on Funasia Radio.
11: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट.
12: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव.
11: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
12: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन.
13: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
14: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू. लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Funasia.
15: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
16: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
17: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
18: तुमसे मिलके दिल का है.
16: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
17: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क. इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क इश्क है.

तो गाइज वेलकम बैक, दिस इज इपी द हिपी एंड यू गाइज आर स्टिल लिसनिंग टू फनेजर रेडियो 104.9 एफएम. इट इज 9:11 ऑन द क्लॉक. मैं आपके साथ रहने वाली हूँ फॉर ओनली अनदर मे बी लाइक 45 मिनट्स. तो गाइज लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम. ओके, तो गाइज जैसे हम लोग बात करते हैं, व्हाट इज दिस सो कॉल्ड कोट एंड कोट मिड लाइफ क्राइसिस. यस, आप 25 के हो, यू नो यू आर थिंकिंग लाइक ओ माई गॉड आई हैव माई इंटायर लाइफ टू लिव, और देखते ही देखते मतलब यू रीच 45 एंड यू नो लाइक अरे जिंदगी कहाँ गई, पता भी नहीं चला. आई मीन आई फेल्ट लाइक आई वाज लाइक 25 लाइक यस्टरडे, राइट? देयर इज समथिंग रियल गोइंग ऑन इन दिस सो कॉल्ड मिड लाइफ क्राइसिस की मिथ. ठीक है, तो इकोनॉमिस्ट या जो सोशियोलॉजिस्ट है वो सारे ये कहते हैं देयर इज समथिंग नोन एज लाइफ की ना एक यू कर्व होती है. उसका मतलब क्या है मैं बताती हूँ. सो यू कर्व में होता है आपकी लाइफ ऊपर ऊपर जाती रहती है, फिर यू टर्न मार के फिर वो वापस आ जाती है, एंड देन इट आई मीन रीचेज अ स्टैग्नेंसी. सो वॉट इज द स्टैग्नेंसी? तो मेन चीज जो ये है, द रीजन वाई इट टेक्स अ यू कर्व, उसके बाद वॉट कॉजेज द डिप इज बिकॉज फर्स्ट एक तो आप 40 एज में ना मैक्सिमम जो पीक लोड होता है, चाहे वो करियर हो, बच्चे हो, एजिंग पेरेंट्स, ओके, एट द सेम टाइम यू हैव मॉर्गेजेस, ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग ऑल एट वंस. ओके, इट्स दैट मिडिल फेज वेयर यू गेटिंग द प्रेशर फ्रॉम एवरीवेयर. देन देर इज द एक्सपेक्टेशन गैप कि आप 25 में थे, यू हैड इमेजिन्ड अ पर्टिकुलर लाइफ कि अरे बाय 45 मेरे पास घर होगा, बंगला होगा, गाड़ी होगी, माँ होगी, सब कुछ होगा. लेकिन मे बी द रियालिटी स्ट्रक एंड देन यू हैड लॉट्स ऑफ बिल्स टू पे. लेकिन आपके सारे सपने शायद सच नहीं हो पाए. मे बी यू कैन टेक अ वेकेशन वंस अ ईयर और समथिंग विद योर किड्स, बट देन स्टिल देयर इज दैट इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेट. मे बी द वीजा सिचुएशन डिड नॉट वर्क आउट फॉर यू, एंड मे बी यू नो समवन, और मे बी यू नो समवन हु वॉज वन ऑफ दोज पीपल हु ड्रोव ऑल द वे टू द एयरपोर्ट, लेफ्ट देयर कीज इन द कार, left it running and saying that cannot make payments, moved back to India. You know what I'm talking about, right? Yes, these things are not in our control, okay? And then you realize, bhai, time is not infinite. Time ki to ek thodi limit hoti hai. It is finite. And the so-called someday list, it starts to feel like a never happening list. So, what do we do? Here is my argument, aur main चाहती हूँ कि आप इसको अच्छे से सुन लो, ठीक है? बिकॉज मे बी यू रिलेट टू इट, मे बी यू डोंट. अ लॉट ऑफ पीपल, व्हाट पीपल कॉल्स मिड लाइफ क्राइसिस इज रियली बेसिकली अ डिलेड इनवॉइस फॉर डिसीजंस दैट वर नेवर मेड इन योर थर्टीज. जो आप थर्टीज में आपको जो काम करना चाहिए था वो चीज नहीं करते हैं जब, तो फोर्टीज में आके उसका प्रेशर लगता है कि ओ नो ब्रो टाइम तो खत्म हो गया, 10 साल कैसे बीत गए पता भी नहीं चला, एंड आई नेवर गॉट टू माई लिस्ट. ओके, द फ्रेंडशिप्स दैट यू डिड नॉट कीप अप विथ, यू नो द बॉडी दैट यू डिड नॉट ट्रेन बिकॉज इन योर थर्टीज यू केप थिंकिंग यार आज वीकेंड पे पार्टी कर लेते हैं, वर्कआउट कल करेंगे, ठीक है, ये वाली चीजें. या फिर यू डिड नॉट कट द अमाउंट ऑफ शुगर यू वर कंज्यूमिंग आफ्टर एवरी मील. ओके, द क्वेश्चन इज कि यू नेवर आस्क योर सेल्फ दैट कि थर्टीज में वॉट डू यू रियली वॉन्ट टू डू विथ योर लाइफ, इज इज अ करियर योर सेल्फ सी योर सेल्फ बींग इन, डू यू सी योर सेल्फ बींग लाइक आई मीन आई नो हम देसी हैं, नन ऑफ द देसीज आर इन लाइक कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव और वट एवर, बट से फॉर एग्जाम्पल यू आर इन दैट काइंड ऑफ अ जॉब, इज दैट द करियर दैट यू ऑलवेज इमेजिन? या फिर मे बी यू वॉन्टेड टू बी अ प्रोफेशनल स्काई डाइवर? आई डोंट नो, दैट्स अ क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क योर सेल्फ. The habits that were made on autopilot, सुबह उठ के ही फोन पे स्क्रोल करना, डूम स्क्रोल करना, it all comes due at once and in the same years when life is the most demanding. तो ये सारी चीजें जो होती है 40s में जाके हमें realize होता है, oh bro, हमने तो ये सारी चीजें करी नहीं थी, मैं तो कितना कुछ सोचा था, I had to do this, but we never got to it because you know you just thought, oh I have time on my hands.

बैक. तो भाई ये सब बात करते करते एक चीज तो मैं बताना भूल ही गई. अगर आप स्मॉल बिजनेस ओनर है या कोई भी बिजनेस ओनर है एक्चुअली, एंड यू आर लुकिंग फॉर अ स्मार्टर कमर्शियल एनर्जी सोल्यूशन, देन यू हैव टू ट्रस्ट तारा कमर्शियल एनर्जी, बिकॉज दे आर हेल्पिंग टेक्सस बिजनेसेस सिंस 2002 विद कंपेटिटिव रेट्स, रिलायबल सर्विस एंड कस्टमाइज एनर्जी प्लान्स. कॉल 844-428-2808. दे प्रोवाइड हेल्प विद कमर्शियल एनर्जी सोल्यूशन. सो इफ यू हैव अ शॉप और अ 7-Eleven और सम काइंड ऑफ बिजनेस समवेयर, दिस इज वॉट यू नीड टू डू. तारा एनर्जी डॉट कॉम. ओके, जस्ट चेक दम आउट एंड मे बी दे कैन हेल्प यू आउट.

0: Dallas has its own superheroes, fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
1: हुजूर, आपको चुनना होगा हम या ये बिरयानी।
2: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
1: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
2: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
3: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
4: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
3: Barista House, richness of biryani bliss.
4: Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
5: Aaj sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
6: India mein? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
5: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
6: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
5: सच में सब संभाल लेंगे?
6: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
4: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
7: इंडिया में घर खरीदना हुआ आसान, गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो आ रहा है फ्रिस्को में, अक्टूबर 10th एंड 11th, हाथ रीजेंसी फ्रिस्को, 10 a.m. टू 8 p.m. मुंबई, बैंगलोर, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद एंड दिल्ली एनसीआर के टॉप डेवलपर्स से मिलने का एक ही मौका। चूज योर होम फ्रॉम 200 प्लस प्रोजेक्ट, फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग, एन इवेंट बाय माई स्क्वायर फीट।
8: Hi, I'm Abhishek Bachchan and you're listening to Funasia Radio. Thank you all the listeners for always being there watching our films. Thank you Funasia Radio for spreading the word.

आपको एक पूरा दिन ध्यान में बैठकर मंदिर में जाकर भक्ति करनी है ना, तो जाइए आप भ्रमण, हम भी चले जाएंगे अपने मायके।

0: बम भोले, भोले बम भोले, भोले बम भोले।
1: तो गाइज, जैसे हम बात कर रहे थे, व्हाट आर द फोर थिंग्स, यस वी वर टॉकिंग अबाउट द फोर थिंग्स दैट डिटरमिन एवरीथिंग दैट यू गोना हैपन, ओके, फॉर योर सो कॉल्ड मिड लाइफ क्राइसिस। योर हैबिट्स, योर लाइफ, योर सेल्फ आइडेंटिटी एंड योर विजन। तो पहले बात करते हैं हैबिट्स की। भाई, हमने सबने सुना हुआ है दैट हैबिट्स टेक लॉन्गर टू फॉर्म देन यू थिंक। सबसे कॉमन थ्योरी पता है क्या है? इट टेक्स अराउंड 21 डेज टू फॉर्म अ हैबिट, एंड दैट इज अ मिथ। पता है क्यों? क्योंकि एक कुछ रिसर्चर्स हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में, उन्होंने बोला है कि एक हैबिट को फॉर्म करने में 21 डेज तो बहुत कम है यार, इट टेक्स अराउंड 66 डेज, ओके, विद अ ह्यूज रेंज, अबाउट 2 months टू एक्चुअली फॉर्म ए प्रॉपर हैबिट, टू डिवेलप अ न्यू हैबिट। और सिर्फ 2 हफ्ते 3 हफ्ते की बात नहीं।

mean, you have to consistently keep showing up, whether it's going to the gym, whether it's cutting down the amount of sugar that you consume in a day, or the amount of coffee that you drink in a day. All of this, it has to be consistent. Now, that consistency builds habits, okay? So, agar aap wonder kare, if you've tried and you've quit something 3 times, ek hafte mein aapne shuru kiya, फिर उसके अगले दिन डाइट में चीट हो गया, ओहो कोई बात नहीं. इट डजंट मीन दैट यू आर अनडिसिप्लिन्ड. इट मीन्स यू क्विट अराउंड से week 3. मतलब आपने 21 डेज के बाद भी अगर आपकी सो कॉल्ड हैबिट फॉर्म नहीं हुई, क्योंकि भाई 2 महीने लगते हैं, 21 डेज में नहीं बनती है हैबिट, ठीक है? सो डोंट गिव अप आफ्टर 3 वीक्स. यू हैव टू कीप डूइंग इट. चीट मील हो गया, डजंट मैटर, यू कीप गोइंग फॉर इट, ओके? एंड अनदर फाइंडिंग दैट इज वर्थ मेंशनिंग इन ऑल ऑफ दिस इज दैट अगर एक दिन आपका मिस हो जाता है अपने हैबिट में से, इट डजंट मीन आप अपनी हैबिट तोड़ रहे हो. इट डजंट मीन आपकी हैबिट नहीं बनेगी 66 इस बार. वॉट हर्ट्स इज मिसिंग नॉट वंस बट मिसिंग ट्वाइस थ्राइस एंड देन फाइनली गिविंग अप ओनली ऑल टुगेदर. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर वन ऑफ दोज पीपल हु इज ट्राइंग टू क्विट स्मोकिंग, फॉर इंस्टेंस, वी ऑल नो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, राइट? वी ऑल नो दैट. बट वी ऑल्सो नो दैट अ लॉट ऑफ इंडियन गाइज, you know, they smoke a lot. The people smoke a lot of cigarettes, right? So, if you are one of those people and you have decided ki aaj main cigarette quit karunga ya jo bhi hai, and aapne ek hafte nahi piya, uske baad jaake fir aapne pi liya, and then you are like, arre yaar, koi baat nahi, mere se nahi hota, it's very hard, and you give up. No, the point is, even if you have a cheat day after 1 week, then you remind yourself, koi baat nahi, it's okay, I'm just learning how to do this. After 66 days, maybe it'll form, okay? So make this your rule. Miss once, maybe miss twice, but don't miss it the third time. You have to keep trying all the way for 66 days, right? And then what's the second thing? Don't chase outcomes. Become the type of person. Iska matlab kya hai? Main bataungi is gaane ke baad.

भाई पैशन से याद आया, अगर आप हेल्थ से याद आया एक्चुअली. इफ़ यू डोंट हैव हेल्थ इंश्योरेंस एंड इफ़ यू आर वन ऑफ दोज पीपल लिविंग इन अमेरिका विदाउट हेल्थ इंश्योरेंस, यू माइट बी इन फॉर अ सरप्राइज, बिकॉज इंश्योरेंस इज़ रियली ट्रिकी ओवर हियर एंड हेल्थ केयर इज़ वेरी एक्सपेंसिव. दैट्स वाई पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, दे आर ब्रिंगिंग समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. इट्स कॉल्ड पैशन हेल्थ डायरेक्ट. इट्स लाइक अ प्लान फॉर $85 अ मंथ विच गिव्स यू प्राइमरी केयर, प्रिवेंटिव केयर, मेडिकेशन मैनेजमेंट और भी बहुत कुछ. कॉल 214-666-6259 और विजिट पैशन हेल्थ फिजिशंस डॉट कॉम. रिमेंबर दिस इज नॉट अ हेल्थ इंश्योरेंस, इट्स लाइक अ प्लान. देर आर एलिजिबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस, सो गिव दम अ कॉल, मे बी दे कैन हेल्प यू आउट.

तो गाइज, अगर आप कोई पार्टी वगैरह सोच रहे हैं करने की, या फिर यू प्लानिंग टू हैव ए वेडिंग और एन एंगेजमेंट और अ ग्रेजुएशन पार्टी, यू नो व्हाट, यू डोंट वांट टू बी स्टक इन प्लानिंग एंड ऑल दैट. यू वांट टू बी द गेस्ट एट योर ओन पार्टी. यू वांट टू एंजॉय द पार्टी, राइट? वेदर सो दैट्स व्हाई यू शुड रीच आउट टू वेनेसा इवेंट्स, बिकॉज वेदर यू आर लुकिंग फॉर वेन्यूज, डेकोर, दे हैव इट ऑल. दे विल डू एवरीथिंग फॉर यू, इंक्लूडिंग फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी एंड केटरिंग, विच इज गोइंग टू बी डन एक्सक्लूसिवली बाय बसेरा ग्रैंड. कॉल हरी बसेरा एट 469-442-8770 एंड वेनेसा इवेंट्स, मेक देम योर सेलिब्रेशन पार्टनर. दैट्स राइट यू गाइज, इट इज 9:46 ऑन द क्लॉक. मैं आपके साथ जरूर रहने वाली हूँ ओनली फॉर अनदर मे बी 10 मिनट्स एंड देन आई एम गोना गो. ओके, लेकिन जाने से पहले जैसे मैं बोल रही थी, वी वर टॉकिंग अबाउट हैबिट्स. Like I said, it takes around 66 days to build a new habit. So if you give up after 21 days and you're like, yaar, mere se to nahi ho raha. Bhai, sirf 21 days hi hue hain, usko 66 days tak karna padta hai. Ek din cheat day ho gaya, koi baat nahi. Just come back to it tomorrow. That's how habits form. That's how you become the person who goes to the gym every single day and does like 30 minutes of cardio. It's not much. It's just a little bit. That's it. Okay? And something, you know, the thing is, jo main bol rahi thi, don't chase the final goal, okay? Become the type of person who does that kind of a thing. So, uska matlab kya hai? You don't say, for example, you're trying to quit smoking, theek hai? You don't say ki you're not putting it out in the universe, or you're not telling your friends like, ki, oh, I am trying to quit smoking. The moment you say trying, that means that's not your identity. That's not who you are. Instead, you should say, I'm not really a smoker. I occasionally have a cigarette. Okay, that's what you can say if you have a cheat day. Or for instance, if you're the person who's trying to incorporate working out into your routine, you know, getting that physical exercise every single day, then you don't say, ki main, I'm trying to run, you know, I'm trying to get fit. Just say, I'm the person who moves every single day. This is who I am. This is my identity. And why does all that matter in your 30s? Honestly, this is an advice I think it does not just apply to people in their 30s. It applies to people in their 20s and their 40s and their 50s. It can apply to any decade that you are in. But 30s mein sabse zyada kyun? Because this is the decade you are deciding ki aap kya ho, kaun ho, what are you going to be right now, that defines you for the rest of your life. Okay? Every habit is a small vote in that election. Theek hai? Then, habits aise choose karo ki it doesn't feel like you're climbing Mount Everest. Make it small. Make it obvious. Make it easy. ठीक है? Don't announce that you will work out for 1 hour every day. भाई, 1 hour exercise करना मतलब सबकी time फिश वहीं हो जाती है. You can't say that. Just say that आज आप अपने जूते पहन के, अपने रनिंग शूज पहन के, अच्छे वाले नाइकी के, $60-$70 के या $100 के, whatever shoes you have, you're gonna put those shoes on and go for a walk for 10 minutes either on the treadmill, या फिर यू गोना डू 10 मिनट्स ऑन द इलिप्टिकल, या फिर यू जस्ट गोना टेक अ वॉक इन योर नेबरहुड. दैट्स इट. ओके, इट टेक्स हार्डली 10 मिनट्स. दैट्स इट. जस्ट स्टार्ट डूइंग दैट मच एंड आई एम टेलिंग यू, यू गोइंग टू स्टार्ट नोटिसिंग अ डिफरेंस इन योर हेल्थ. एवरीथिंग इज लाइक हैबिट स्टैकिंग. जैसे हम लोग सेविंग्स नहीं बढ़ाते, एक दिन में तो हम $10,000 नहीं सेव करते ना, हम लोग थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके सेव करते हैं, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं. इट्स लाइक दैट. हैबिट्स ऑल्सो फॉर्म लाइक दैट. ओके, so I will see you in about 5 minutes and I will come and say bye before I go tonight. But tab tak ke liye ye gana.

गाइस, दिस इज टाइम फॉर मी टू गो नाउ. लेकिन जैसे आई एम गोना लीव यू विद दिस थॉट, ओके. हैबिट्स जो होती है ना, इट्स लाइक यू हैव टू स्टैक देम ऑन टॉप ऑफ ईच अदर. सो इफ यू आर ट्राइंग टू मेक दैट चेंज, नो मैटर वट एवर स्टेज यू आर इन योर लाइफ, 30s, 40s, 20s, 50s, 60s, जो भी है आपकी जो भी एज है, यू कैन ऑलवेज बिल्ड अ न्यू हैबिट. आई नो इट गेट्स हार्डर एज यू गेट ओल्डर, लेकिन आई कैन प्रोमिस यू, यू कैन डू इट एट एनी स्टेज ऑफ योर लाइफ, ओके. तो इसीलिए अगर आप कोशिश करें, देन लर्न दिस वर्ड, दिस इज कॉल्ड हैबिट स्टैकिंग. अटैच द न्यू हैबिट टू एन एग्जिस्टिंग वन. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह उठ के सबसे पहले क्या करते हो, चाय बनाते हो, कॉफी पीते हो, राइट. सो यू राइट इट डाउन कि आफ्टर आई पोर माई फर्स्ट कप ऑफ कॉफी, आई एम गोना राइट डाउन थ्री प्रायोरिटीज दैट आई हैव टू डू इन अ डे. फॉर एग्जाम्पल, दोज थ्री प्रायोरिटीज कैन बी, आई एम गोइंग टू वर्क आउट फॉर 30 मिनट्स. यू डोंट हैव टू मेक इट हार्ड फॉर योर सेल्फ, यू जस्ट डू इट लाइक 30 मिनट्स, ओके. आई एम गोइंग टू रीड 5 pages ऑफ अ बुक. एंड नंबर थ्री, इट कुड बी आई एम गोना कॉल वन फ्रेंड दैट आई हैव एंड टॉक टू इन लाइक अ ईयर, समथिंग वेरी सिंपल, ओके. आई एम टेलिंग यू, आई एम लाइक वन ऑफ दोज लिस्ट गर्ल काइंड ऑफ पीपल. सुबह उठ के मैंने लिस्ट बनाती हूँ, टू डू लिस्ट, आज ये मुझे करना है. By the end of the day, when my list gets done, and I only put like maybe 5 things on that list, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है, इसको email भेजना है, insurance company को call करना है, वगैरह वगैरह, ऐसे ऐसे करके. उसमें से एक मेरा must रहता है कि आधे घंटे का मैं रियाज ज़रूर करती हूँ रोज़. और I have made it a rule कि 10 से 10:30 बजे I am going to do my music practice. So I do that for myself, and if this helps, then you can try it too. I will see you guys tomorrow. We will continue this discussion. And I hope you're enjoying this conversation. Do let me know tomorrow. My number is 972-235-5555. Don't call me today because I'm about to go. Bye. Have a great rest of your evening. And I will see you tomorrow.

0: मार्शमेलो, नाम तो सुना होगा।
1: जिंदगी के कई रंग फनीशा रेडियो के संग।
2: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
3: Official tax and finance partner, AG FinTax.
2: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: In association with Passion Health Primary Care.
4: It's the time to clock out. It's the time to catch up.
5: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame. जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन। एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM, ऑर्डर एनी 2 एंट्रीज एंड गेट 1 एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री। ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
6: Dallas, are you ready? Jabu Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
7: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
8: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
7: Fear not, we have the perfect solution.
9: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25+ dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking. Sadia!
10: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
11: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
9: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
12: तुमसे मिलके दिल का है।
11: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
9: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

0: अब तेरी बात।
1: मतलब
0: मेरा फैन बनना?
1: तेरा फैन बनने के लिए मुझे एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं इसी तरफ हूँ।

Storming into a million hearts. 104.9 FM. Number one hit station.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फनीशा 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

0: the Dill of Dallas. Heart to Heart, Fun Asia.
1: Check it out.

0: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
1: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुर्राटा चिकन टिक्का न्यू लव।
0: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
1: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
2: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
3: Beta, 95% aaye?
4: Haan, mummy.
3: Good. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
5: मेरा?
3: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
5: वो
6: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
7: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डालस, because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican inspired menu, and trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
8: Bindas bolo, bolo bolo bolo bindas bolo.
9: Jab gaana bole bindas to shanti hogi bindas. Join Banda Bindas Marvindas Monday se Thursday from 5 PM to 7 PM for music, musti or full on entertainment. Powered by Texas Star Rehab and Performance Center or Himalayan Bazaar. Sirf Anisha Radio par.
10: Yeah, this is Shakti Kapoor and you guys are listening to me on the Fun Asia Radio.
11: Spreading love and understanding with best music. 104.9 FM.

0: कितने आदमी थे?
1: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।

The Heartbeat of Dallas. Fun Issue Radio, 104.9 FM.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू. लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
4: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen.

0: flavor on, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
1: कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं?
2: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
1: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे।
2: लो भी मुंडियो, जड़ी टीम जीतूगी उन्हें मेरे वालों पैसे ते बोल्ट ते हार नाला उन्हें मेरे वालों बहुत सारा प्यार।

जिंदगी के कई रंग। फनीशा रेडियो के संग 104।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

एक रात वो गया था जहाँ रात रुक के, अब तक रुका हुआ हूँ वहीं रात रुक के। डोंट चेंज दैट डायल, कीप इट राइट हियर ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें। Declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है. So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज. सुनते रहिए हमें और इस next गाने को.

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एशिया रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी एशिया रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

0: Are you trying to protect your business, retain top talent, and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax, or investment advice.
1: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
2: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
0: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
3: तुमसे मिलके दिल का है.
2: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
0: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है, सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डैलस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

एवरीवन, यू ट्यून्ड इनटू 104.9 एफएम फनीशा रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा? डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनीशा रेडियो के साथ।

0: ये क्या कर रहे हो चंदर? लाओ मेरा गीता बदलाओ, लाओ।
1: गीतों से मियाँ तानसेन, कानों में शहद तो भरा जा सकता है लेकिन पेट की आग नहीं बुझाई जा सकती, समझे?
0: तुमने फिर शुरू कर दी ना अपनी कीड़ों वाली बोली। जब देखो एक ही लगा रखते हो, भूख लगी है। लाओ दबाओ।
1: भूख दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है और इस बात को अपने दिल से तुम भी मानते हो और इसीलिए अपना और मेरा हिस्सा जेब में दबाए रखते हो। मैं तुमसे अपना हिस्सा मांग रहा हूँ।
0: कौन सा हिस्सा? 2 रुपए थे, उसमें से 1 रुपया तुम्हें दे दिया है। दिया है कि नहीं?
1: दिया। मैं कहा इनकार कर रहा हूँ। अब 1 रुपया तुम्हारे पास बचा है कि नहीं?
0: बचा है।
1: और उस 1 रुपए में से मैं 50 पैसे मांग रहा हूँ, अपना हिस्सा। 50-50 हमारा परमानेंट एग्रीमेंट है कि नहीं?
0: तेरी तो भूख की ऐसी की तैसी।
2: कमाल के लोग रहते हैं तुम्हारे पड़ोस में, गा रहे थे तो महसूस होता था किसी ने अमृत पिला दिया हो मेरी कविता को। लड़ने लगे तो मरने मारने के लिए तैयार हो गए।
3: पुराने दोस्त हैं, साथ रहते भी हैं, रोज लड़ते भी हैं, मगर दोस्ती में कभी फर्क नहीं आता।

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फनीशा रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: रुको जरा, सबर करो।
4: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। Stay tuned to Phonesia.

रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी। देखना ये है कि संगीत की ये सवारी आपको कहाँ तक ले जाएगी। सुरों का सफर, आपका हम सफर। फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनीशर रेडियो।

थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो। एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है, मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे। जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट। सो कमाल धमाल फन मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ।

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

0: एजी सुनते हो?
1: जी नहीं, एजी सुनते हैं।
2: The OG of Tax Planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
3: कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं?
4: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फनेशन।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।
2: What's up, ladies? Have you met my friend Harry?

0: Bollywood, Tollywood, Lollywood. 24 karat pure on 104.9 FM.
1: हर एक सीढ़ी में

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड। डैलस में रेडियो का डैड फोनेशिया 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

0: जा पहला साता लैला
1: मर जानी पौंदी भंगड़ा अंग्रेजी वीड वे
2: 104.9 FM Funny Show. Not just a radio. Not just a radio. It's a mindset of entertainment. Come on.

0: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: रुको जरा, सबर करो।
4: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। Stay tuned to Phonesia.

0: playing the best tunes in all of Dallas. Fun Asia Radio, 104.9 FM.
1: पंडित जी, दूल्हा है, दुल्हन है, हम हवन लगवा के फेरे ले लें?
2: ये मैं पंडित दिखता हूँ नहीं, मेरी तो बाहर आलू चाट की रेडी है।

टीना चिकन चमेले कट कट रीना, सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना, तूने यू तो किया बर्बाद, तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है। टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे, बादशाह के गाने सारे याद है।

0: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
1: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
2: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
3: तुमसे मिलके दिल का है।
1: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
2: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
4: Hi, I'm Rajkumar Rao, and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

0: अजी सुनते हो?
1: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
2: The OG of Tax Planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
3: एक बार जो मैंने commitment कर दी, तो फिर सिर्फ Funasia ही सुनूंगा।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन. एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM, ऑर्डर एनी 2 entrees एंड गेट 1 appetizer एब्सोल्युटली फ्री. ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है.
2: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त. जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो.

0: Hi, this is Ranbir Kapoor.
1: And I'm Vani Kapoor. And you're listening to Funasia Radio.
2: और इस तरह बल्ली को भी अपनी रानी मिल गई, वीरे की गीत से वेडिंग हो गई और शादी में घोड़ी के सबसे आगे नाचे मामा जी और भांजा जी।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
1: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुर्राटा चिकन टिक्का न्यू लव।
0: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
1: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
2: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
3: This is Ali Zafar and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: पिक्चर
1: अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
2: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फोनीशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: तमाशे थिएटर भर देते हैं, इससे फिल्मों का भी फायदा हो जाता है।
1: तुम इस तमाशे में शामिल?
0: तुम्हारी जिंदगी के तमाशे में शामिल काफी है।

0: कुछ बदल गया है।
1: नहीं तो
0: आपकी आवाज में नहीं, आपके मन में।

0: tracks that put you on the right track.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
4: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
5: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
6: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
7: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
9: Call 857-891-8942 today.
10: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
11: Dallas has its own superheroes. Fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeepu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
12: जिंदगी एक रंगमंच है
13: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल. रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो. दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन. फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन. कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com.
14: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
15: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
16: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
17: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
16: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
18: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
19: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
9: When you hear any traffic updates on our airwaves at the Fun Asia Network, you have to remember that they are brought to you by the law offices of Attorney Omar Khwaja. If you've been injured in a car or truck accident, or you've gone through a slip and fall incident, you can focus on healing while Attorney Omar will fight for you, and you pay nothing unless he wins. You can call him 469-300-5046 or visit Attorney Omar, OMAR.com. As we get started with our program here, sabse pehle tareef us upar wale ki jisne duniya banayi, chand sitare banaye, zameen aasman banaye, insaan ke dil mein mohabbat ka jazba paida kiya, usi upar wale ki tareef hai jisne mujhko, aapko aur ye sari kainat ko इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए बनाया है. आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद, एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एज वी गेट स्टार्टेड विद आवर प्रोग्राम ऑन दिस फर्स्ट फुल डे ऑफ ऑटम.

0: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
1: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
2: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
1: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
2: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
3: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
4: Dad, property papers कहाँ हैं?
5: Laptop में।
4: Investment?
5: Google Drive।
4: Insurance? Passwords?
5: बेटा don't worry, मुझे सब पता है।
4: Dad, वही तो problem है, सिर्फ आपको पता है।
6: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
7: Hi, this is Deepti Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
6: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
8: It's the time to clock out.
9: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, jahan tandoor ki smoky khushboo, sizzling flavors aur chatpate appetizers make an ordinary weekday feel like a delicious celebration. Every Monday through Friday from 5 to 8 p.m., order any two entrees and get one appetizer absolutely free. Bring your family, friends and your appetite. Visit Tandoori Flame in Garland. Terms and conditions apply.
10: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
11: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
10: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
11: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
10: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
11: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
10: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
12: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन।
13: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे।
14: तारीख पर तारीख।
15: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर। आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर। आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर। प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
13: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259.
16: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
17: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर।
18: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
17: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानीज और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
18: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी।
16: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।
19: When the unexpected becomes inevitable, the real story begins.
20: इस वन की काली शक्तियाँ, और अगर कोई रात को वन में प्रवेश करता है तो उसकी लाश भी नहीं मिलती।
19: Get ready for a brand new action packed experience full of emotion and suspense.
21: एक तरफ है वन देवी और एक तरफ है विकास।
19: The One, Force of the Forest,
22: a Hindi mythological folk thriller, directed by Arunab Kumar and Deepak Kumar Mishra, sizzling the big screen for the first time together, Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia.
19: On 25th September in cinemas near you.

0: Plenty more news and we'll get it to you in the next hour of the program. Stay with us right here on the Funasia Network.
1: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
2: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
3: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
4: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो. Join Paasya and market your business for free. Showcase your deals and get discovered by customers nearby. Paasya, be where your customers are looking.
5: अरे यार, घर मिल गया.
6: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग.
7: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट. अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर. वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी.
6: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
7: बिल्कुल. विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम.
8: We need to talk.
9: अब क्या हुआ?
8: Nothing. It's not you.
9: Oh no.
8: It's the distance.
9: Distance? We live 10 minutes apart.
8: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
7: Irving, that long-distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
10: Yaar, festival season aa raha hai. Aur meri wife ne shopping list bhi de di hai.
11: Kitni lambi list hai?
10: Bas, 2 pages.
7: इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ, एक पूजा मंदिर भी.
11: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो. SFL Worldwide है ना, इंडिया में आपके डोरस्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं. पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है.
12: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL Worldwide. शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड Worldwide. विजिट SFLWorldwide.com.
13: बेटा, 95% आए?
14: हाँ मम्मी.
13: गुड. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
15: मेरा?
13: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
15: वो
7: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
16: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
17: Dude, life mein kuch aisa karna hai jisme main front page pe rahu.
18: Front page ka to pata nahi, but tera page 3 mein hona meri guarantee hai.
17: Kaise?
18: Page 3 eatery?
17: No, not another restaurant again.
18: Dude, it's page. Start with the bar, signature cocktails, classic pours, and the food crafted to suit every craving, every appetite.
17: Matlab great food, great drinks, and great company. Yani ki main.
19: Page 3 Eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
7: Sadia.
4: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
0: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
2: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
3: तुमसे मिलके दिल का है.
0: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
2: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.

0: what, Asian Americans? We could be the ones who killed it. And it is going down in federal court. Right.
1: Hasan Minhaj was born on today's date in 1985. The American comedian whose work explores Indian culture and anti-Muslim bias hosted the Netflix comedy talk show called Patriot Act.
0: The NBA in the 1950s. Really?
2: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
3: ओह हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com. Are you trying to protect your business, retain top talent, and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax, or investment advice.
5: Huzoor, aapko chunna hoga. Hum ya ye biryani?
6: Begum, mohabbat apni jagah, lekin barista ki Hyderabadi biryani apni jagah.
5: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
6: दम में नरमी, मसालों में जादू और हरने वाले में नवाबी स्वाद.
7: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco. 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
4: Happy hours, Monday through Friday from 3 PM to 7 PM.
7: Barista House, richness of biryani bliss.
8: अरे यार, घर मिल गया.
9: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग.
4: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट. अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर. वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी.
9: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
4: बिल्कुल. विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम.
10: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
11: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline.
12: इंडिया में घर खरीदना हुआ आसान. गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो आ रहा है फ्रिस्को में. अक्टूबर 10th एंड 11th, हाथ रीजेंसी फ्रिस्को, 10 AM टू 8 PM. मुंबई, बैंगलोर, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद एंड दिल्ली NCR के टॉप डेवलपर्स से मिलने का एक ही मौका. चूज योर होम फ्रॉम 200+ प्रोजेक्ट्स, फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग, एन इवेंट बाय माई स्क्वायर फीट.

0: visa and looking for mortgage options? या आप H1B पे हैं and looking options with 5% or 10% or even 3% down. So call कीजिए कामना को at 214-845-4189 क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है. NMLS 926641.
1: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दूं.
2: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
3: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
4: वेट, इतना सब और प्राइस?
3: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
5: मैं हीरो.
6: चीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं. एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो.
7: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं.
8: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं.
7: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए.
8: और एंटरटेनमेंट?
7: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है.
8: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
7: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे. मिरेकल्स हैपन इन मिराज.
9: ये तारा वो तारा हर तारा.
10: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
11: पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था.
12: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
13: You know my voice on the radio. Now let me be a voice you can trust in real estate. मैं हूँ नवनीता खेमका, रियल्टर विद केलर विलियम्स रियल्टी. Buying, moving or selling a home? I bring market knowledge, creative marketing and personal commitment to your journey. Because to me, real estate isn't just about properties. It's about you, मेरे दोस्तों, your possibilities and your new beginnings. Every home has a story. Let's create yours together.
14: Call Namita Khemka at 347-449-4242.
15: Phone uthaye, number dabaye. 347-449-4242.
16: Sadia.
10: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
17: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
10: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
18: तुमसे मिलके दिल का है.
17: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
10: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.
19: रेडी फॉर दिस.

0: It is right now 9 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
4: Zindagi ek safar hai suhana. Yahan kal kya ho, kisne jana.
1: Life ho ya health, kab kya ho jaye pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust. Aur ab wahi trusted care, urgent care services ke saath naye Kaiserway location par. Lunoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Adults aur bachchon ke liye primary care, urgent care, X-ray, CT scan, heart testing aur med spa. Sab kuch ek hi roof ke niche. Lunoxy Medical Urgent Care. Open 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
5: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
6: Hello, mere relatives aa rahe hain. Everyone's asking lunch mein kya hai?
5: Fikar not. We have the perfect solution.
1: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25-plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
7: Dallas has its own superheroes, fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
8: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
9: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं.
10: डील कहाँ?
9: सिंपल, पास्या पे. इंट्रोड्यूसिंग पास्या. डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ. ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड अ डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन.
10: डाउनलोड पास्या, दैट्स PASYA टुडे, बिकॉज़ डील्स दूर नहीं, पास है.
11: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग है.
12: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
13: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
14: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
13: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
15: अजी सुनते हो?
16: अजी नहीं, एजी सुनते हैं.
17: The OG of tax planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM only on Fun Asia Radio.
18: बिंदास बोलो, बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो.
19: जब गाना बोले बिंदास तो शांति होगी बिंदास. Join बंदा बिंदास, मारविन दास, Monday से Thursday from 5 p.m. to 7 p.m. for music, मस्ती और full on entertainment. Powered by Texas Star Rehab and Performance Center और Himalayan Bazaar. सिर्फ फनीशा रेडियो पर.
0: All right, let's get started with this final hour of our program on this lovely Wednesday morning. It's the 23rd of September and it is the first full day of autumn. We touched 96 yesterday, probably today also about the same. Our heat index can go up to 101 and we are under an air quality alert. 4 inches of rain deficit is what we have right now, but I don't think we're getting any rain till next week. And then it'll also be feeling more like autumn, not this week, but hopefully next week. The number here in the studios is 972-235-5555 as we move on with our program.

0: No matter what language it is in, it means the depth of love. And with that, ladies and gentlemen, I'm going to round off my show for today. Hoping you enjoyed it as much as I love bringing it to you. Rimita is coming on. It's 10 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Hey Frisco, get ready to celebrate silver like never before. Chandrika Silver by Shri Krishna Jewelers celebrates its grand launch. Discover exquisite handcrafted silver jewelry and artifacts with exciting inaugural offers and raffle prizes. Visit 7777 Warren Parkway, Suite 280 Frisco. Chandrika Silver, the tradition shines in silver.
4: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म। सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर।
5: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह। कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259।
6: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
7: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
6: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
7: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
6: सच में सब संभालेंगे?
7: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
8: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
9: यार फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है।
7: कितनी लंबी लिस्ट है?
9: बस दो पेजेस। इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ एक पूजा मंदिर भी।
7: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL वर्ल्ड वाइड है ना। इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं। पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है।
10: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL वर्ल्ड वाइड शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड वर्ल्ड वाइड। विजिट SFLworldwide.com।
11: भूख लगी
12: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
13: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 ईटरी। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
14: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।
15: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
14: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
16: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
17: Bindas bolo. Bolo, bolo, bolo, bindas bolo.
18: Jab gaana bole bindas, to shaam bhi hogi bindas. Join Banda Bindas, Marvindas, Monday se Thursday from 5 p.m. to 7 p.m. for music, musti or full-on entertainment. Powered by Texas Star Rehab and Performance Center or Himalayan Bazaar. Sirf Anisha Radio par.

वेंसडे की सुबह की शुरुआत ऐसी ही होनी चाहिए, अगर हो तो ऐसे ही हो। लेट्स डू सम बल्ले बल्ले। गुड मॉर्निंग DFW। एज आई सेड, वेंसडे मॉर्निंग है एंड दिस इज रमिता टू हर शो एंड आई वेलकम यू टू ऑल टू माय शो गप शप गली ओनली ऑन 104.9 FM फनीशा रेडियो। और वेंसडे का मतलब टुडे वी चेक के दुनिया में चल क्या रहा है। आई नो थोड़ा मिडवीक मोटिवेशन चाहिए हमको, जो दो दिन हमने काम कर लिया अपने ऑफिस में या घर में या कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में। अगले दो दिन आपका कैसा बीतेगा इस वीक, उस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है ये वेंसडे। तो थोड़ा सा हम लाइट इस वेंसडे के माहौल को रखेंगे क्योंकि गॉसिप चलेगा बहुत सारी। बॉलीवुड में क्या चल रहा है, इंटरनेट ने पिछले 24 घंटों में कौन सी नई चीज़ को इम्पॉर्टेंट बना दिया, सारी गपशप होगी इस गपशप गली में। बिकॉज सीरियसली सुबह फोन खोलो तो कभी लगता है कि दुनिया में बहुत कुछ हैपनिंग है। यू नो कल नेशनल अवार्ड्स के जो अनाउंस हुए थे वो अवार्ड सेरेमनी फुलफिल हुए हैं, नए मूवीज के ट्रेलर्स निकले हैं, सेलिब्रिटीज न्यूज भी है। और फिर सडनली एक न्यूज ने मुझे इस गरबा सीजन में बहुत ही फैसिनेट किया है, जो कि मैं आगे इस शो में शेयर करूंगी, बताऊंगी। तो बॉलीवुड से स्टार्ट करते हैं बिकॉज कल इंडियन सिनेमा ने, जैसे कि मैंने कहा, एक प्रिटी बिग इवनिंग थी, द 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स। कुछ विंस की स्टोरीज मुझे बहुत दिल, आई नो यू, इट हैज टच्ड माय हार्ट, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी है। सो विल डिस्कस ऑल अबाउट इट। कॉफी रेडी रखो क्योंकि वेंसडे की फ्रेश गपशप ऑफिशियली बिगिंस नाउ। लेट्स शेक द वाइब।

You're listening to 104.9 FM Funny Share Radio. This is Gup Shup Gully with me, Rimita. It's 14 minutes past 10 o'clock. And baat karte hai about the Gup Shup that I mentioned earlier. You know, जीतना ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है, बट मुझे लगता है अवार्ड के बाद लोग जो स्पीच देते हैं, जो बातें वो शेयर करते हैं विद द ऑडियंस एंड विद द वर्ल्ड, वो समटाइम्स आर वेरी आर मोर इंटरेस्टिंग दैन द अवार्ड दैट दे हैव रिसीव. बिकॉज कल नेशनल फिल्म अवार्ड्स इन इंडिया, कार्तिक आर्यन ने बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता है फॉर हिज मूवी चंदू चैंपियन. जिन्होंने ये मूवीज देखी है, दे कैन वाउच दैट इस बंदे ने कितनी मेहनत की है उस कैरेक्टर को आगे लाने के लिए. एंड एग्जैक्टली ही डिजर्व्स द नेशनल अवार्ड एंड ही डेफिनेटली शेयर दिस विद मामूटी. वाइल यामी गौतम वोन द बेस्ट एक्ट्रेस फॉर आर्टिकल 370 एंड वेटरन एक्टर अनंत नाग रिसीव द दादा साहेब फाल्के अवार्ड. एंड बात आ रही है कार्तिक आर्यन के ऊपर कि ही डिस्क्राइब दिस मोमेंट एज द ड्रीम ऑफ अ स्मॉल टाउन बॉय. एंड दैट लाइन एक्चुअली स्टेड विथ मी बिकॉज हम सक्सेस का फाइनल पिक्चर देखते हैं, अवार्ड्स, स्टेज, फोटोज, अप्लॉज, बट उसके पीछे कितने ऑडिशंस, कितने नोज, कितने इयर्स ऑफ वंडरिंग कि भाई मेरा नंबर कब आएगा, ये सारी चीजें ना वो इंस्टाग्राम पिक्चर में नहीं दिखता है. एंड मे बी दैट्स वाई रिकग्निशन फील्स डिफरेंट व्हेन जर्नी आपकी स्ट्रेट नहीं होती है, आसान नहीं होती है. सो टुडे आई वांट टू आस्क यू समथिंग दैट इज बियॉन्ड बॉलीवुड. ऑल दो ये सीखे हमने बॉलीवुड से ही सीखी है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी अचीवमेंट है जो दुनिया को मे भी छोटी लगे, बट आपको पता है कि उसके पीछे कितनी मेहनत थी. वो पहली जॉब हो सकती है, पहला घर हो सकता है, आपकी डिग्री हो सकती है, आपका बिजनेस हो सकता है, इवन मूविंग ऑन टू दिस एंटायर कंट्री विच इज USA. सो बताओ मुझे बताओ. 972-235-5555 इज द स्टूडियो नंबर. आज थोड़ा सेलिब्रेट करते हैं उन छोटे छोटे जीतों को जिनके लिए ट्रॉफियां नहीं मिलती है.

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic alag. और ऊपर से स्ट्रेस।
3: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
2: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
3: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
2: ये क्या होता है?
3: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
4: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
5: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
6: डैड, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ हैं?
7: लैपटॉप में।
6: इन्वेस्टमेंट?
7: गूगल ड्राइव।
6: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
7: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है।
6: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है।
8: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
9: Hi, this is Deepti Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
8: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
10: आप पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
11: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स। और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो। विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
12: Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
13: Weekend ka plan abhi tak nahi bana. Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezaar कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
14: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, New obsession.
15: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
16: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
17: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
18: तुमसे मिलके दिल का है।
16: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
17: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

You're listening to 104.9 FM Funny Shad Radio. This is Rumita with the show Gup Shup Gali. Gup Shup जो हो रहा है अभी वो ये है कि कल हुआ है इंडिया में 72nd नेशनल अवार्ड्स, और क्योंकि आज हम बॉलीवुड के थोड़े गपशप करते हैं तो वी आर ब्रिंगिंग आउट द टॉपिक टू डिस्कस के इस अवार्ड से कौन सी चीजें हैं जो हमारी टेक अवे है. जैसे एक इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन निकली है अबाउट एंड अराउंड यामी गौतम. So she has won this best actress for Article 370. It's a wonderful movie. If you haven't yet watched, please go and watch it. OTT pe maujood hai ye movie. So she spoke about what the recognition could mean for people coming into the industry without established connections, framing her journey as encouragement for outsiders. Basically, unhone thori le liye about the nepotism topic we discuss here and there, और फटाक से तमाचा मारा है उन नेपो किड्स पे. पर मुझे लगा कि बॉलीवुड को थोड़ा सा साइड में रखो यार फॉर अ सेकेंड, क्योंकि ये आउटसाइडर फीलिंग सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में होती नहीं है, ये हर जगह है. यू नो, जब आप कोई नए देश में आते हो विथ योर फर्स्ट जॉब, नई कंपनी में आते हो काम करने के लिए, यू स्टिल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फील लाइक एन आउटसाइडर. नए स्कूल में आपकी एडमिशन होती है पुराने दोस्तों को छोड़ के, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, परेशानी होती है टू एडजस्ट अमंग्स यू नो योर क्लासमेट्स और नए नेबरहुड्स. कभी कभी रूम में तो एंटर करते हो और लगता है कि यार एवरीबडी नोज एवरीबडी, एवरीबडी नोज द रूल्स, और आप बस स्माइल कर रहे हो यार कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा. बट क्या करे, टशन तो अपनी बनाए रखनी है ही. स्पेशली अगर आप इमिग्रेंट हो, यू नो दिस फीलिंग ऑफ यू नो कमिंग इन टू डिफरेंट कंट्री फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. पहले कुछ महीनों में तो इतनी बेसिक चीज़ें सीखनी पड़ती है हमें, लाइक क्रेडिट स्कोर, इंश्योरेंस, स्कूल सिस्टम, टैक्सेस, हेल्थ केयर, कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमें पता है नहीं. चलिए अब हेल्थ केयर की अगर बात करें अभी, तो पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर लेकर आया है पैशन हेल्थ डायरेक्ट. उसके बारे में चर्चा होगी बस एक छोटे से गाने के बाद.

जैसे कि मैंने कहा था, एक छोटे से गाने के बाद मैं आपको इनलाइटन करूंगी अबाउट योर सर्टेन हेल्थ केयर अपग्रेड्स जो कि आप अपने लिए ले सकते हो विद द पैशन हेल्थ डायरेक्ट स्कीम ओनली एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. यू नो, आपके पास अगर इंश्योरेंस नहीं है या फिर पैशन हेल्थ इज आउट ऑफ योर नेटवर्क, तो आपको मिल सकता है अफोर्डेबल प्राइमरी केयर विद पैशन हेल्थ डायरेक्ट फॉर जस्ट $85 अ मंथ. अब उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? उसमें इंक्लूडेड है आपका प्राइमरी केयर, प्रिवेंटिव केयर, मेडिकेशन मैनेजमेंट, टेलीहेल्थ और भी बहुत कुछ. बट मैं आपको बता दूं, दिस इज नॉट अ हेल्थ इंश्योरेंस, तो एलिजिबिलिटी रेस्ट्रिक्शंस आर अप्लाइड. तो मुझे लगता है मेरे से ज्यादा पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर वालों से आप पूछिए, जिसके लिए आपको सिर्फ टेक्स्ट करना है या कॉल करना है इन द नंबर 214-666-6259. दैट्स 214-666-6259. और यू कैन विजिट passionhealthphysicians.com. प्लीज माइंड दिस, दिस इज नॉट अ हेल्थ इंश्योरेंस. और पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर की अगर बात करें तो दे आर लोकेटेड अराउंड द DFW मेट्रोपॉलिटन. सो अगर आप अरविंद में या फ्रिस्को में रहते हैं, यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू विजिट. आई मीन, अगर आपको विजिट करनी हो तो सैटरडेज एंड संडेज भी अरविंद एंड फ्रिस्को लोकेशन ऑफ पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इज ओपन. You're listening to Gup Shup Gali with me, Ramita, only on 104.9 FM, Funny Share Radio.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
2: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage.
4: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूं।
5: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
2: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
6: वेट, इतना सब और प्राइस?
2: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
7: मैं ही तो।
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही

0: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं, तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
1: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
0: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
2: हेलो, वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
3: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन इज आस्किंग लंच में क्या है?
2: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
4: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet, from flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert, Saturday to Sunday 12 p.m. to 3 p.m. This weekend let the Flavor Lounge do the cooking.
5: Is saal to kamaal ho gaya, hamara revenue double ho gaya.
6: Sir, acha hai. लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
5: नहीं।
6: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
5: नहीं।
6: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
5: वो भी नहीं।
6: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
7: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
8: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
9: This is Uday Chopra, and you are listening to Fun Asia Radio.

Midweek motivation with the high energy songs only on Gup Shup Gully with me, Rumita, only on 104.9 FM Fun Asia Radio. Gup Shup is on, and the headline which caught my attention this morning is of actor Pratik Gandhi, जिन्होंने कहा है कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे roles हैं जो गवा दिए थे in his career because according to him he was told. And actually, he was told that he does not look rich enough. And honestly, forget Bollywood for a second. How quickly do we judge people based on how they look? You know, if someone is dressed sharply, hum immediately bol dete hai ki yaar, bahut hi successful hoga. Koi agar chup hai, I mean, अपने काम से काम रख रहा है, चुप है, किसी झमेले में नहीं पड़ना है, बहुत ही शांत इंसान है, बस उसको हम टैग दे देते हैं यार बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड है इसमें. अगर कोई फ्लुएंटली एक्सेंट से अगर इंग्लिश बोले तो हम बोलते हैं स्मार्ट बॉय. एंड अगर कोई अगर बहुत ही एक्सपेंसिव गाड़ी ड्राइव कर रहा हो, अगर उसके ड्रीम कार पे फाइनली वो चढ़ के पूरा शहर घूम रहा हो, हम इजीली जज कर देते हैं यार ही मस्ट बी डूइंग रियली वेल. एंड देन यू व्हेन एक्चुअली यू नो द पर्सन एंड रियलाइज यार पूरी कहानी ही डिफरेंट है. हम सबके दिमाग में एक इनविजिबल यू नो वो कहते हैं कास्टिंग डायरेक्टर बैठा हुआ है. विद इन सेकेंड्स ये सीरियस लगता है, ये फ्रेंडली लगता है, ये बहुत अमीर लगता है, ये ट्रस्टवर्दी बिल्कुल नहीं लगता. एंड बेस्ड ऑन वॉट? उसके जूते. सो टेल मी, हैज समवन एवर कंप्लीटली मिसजस्ड यू बेस्ड ऑन योर अपियरेंस और द फर्स्ट इंप्रेशन दे हैड ऑन यू? और इवन बेटर, आप अपने बारे में बताओ यार. आप जब लोगों को देखते हो पहली दफा, हैव यू एवर जस्ट समबडी इनिशियली एंड लेटर थॉट यार कितनी गलत थी मैं, ये इंसान तो कितना अच्छा है. हम बस जज कर लेते यार, टुकुर टुकुर जस्ट देख ही लेते उसको.

0: 53 minutes past 10 o'clock. You're listening to 104.9 FM Fun Asia Radio. This is Gup Shup Gali with me, Ramita. And there is a Bollywood update. The trailer of Ayushman Khurana and Sara Ali Khan's Urta Teer is out today. And the setup is quite something. Ayushman plays a Pakistani spy suffering from memory loss. Or us film mein, with the film positioning itself as a स्पाई कॉमेडी. अभी हॉरर कॉमेडी सुना था, अभी स्पाई कॉमेडी भी आ गया है रादर देन अनदर स्ट्रेट एक्शन स्पैनिज मूवी. एंड ऑनेस्टली मुझे कॉन्सेप्ट बहुत ही पसंद आई, बहुत हंसी में ट्रेलर देख के. अगर नहीं देखी है देख लो यार. स्पाई है बट स्पाई को खुद याद नहीं है कि वो स्पाई है. एक तो एक डायलॉग भी है एक्चुअली ट्रेलर में कि उसको देशभक्ति याद है बट कौन से देश के लिए ये याद नहीं है. I mean, seriously, आप अगर नहीं देखे हो अभी भी तो गो एंड वॉच द ट्रेलर ऑफ उड़ता तीर. वैसे बॉलीवुड स्पाई यूनिवर्स में यूजुअली हीरो को सब पता होता है, यू नो, मिशन पता है, एनिमी पता है, कंट्री भी पता है. या हीरो प्रॉबेबली उठ के सुबह वही डायलॉग बोलता है 1970s वाले, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ. बट दिस मेड मी थिंक कि बॉलीवुड में कुछ जॉनरे इतने सीरियस हो गए कि मे बी वी हैव लॉस्ट द फ्लेयर ऑफ कॉमेडी. वो कॉमेडी का डोज जो था अर्ली 2000s में जो अक्षय कुमार वापस लेके आए थे आफ्टर हिज हेरा फेरी टाइम. एंड वी सीरियसली मिस दोज बॉलीवुड मसाला मूवी और द स्लैपस्टिक्स कॉमेडीज जो आज भी हम किसी कन्वर्सेशन में फनीली रेफर करते हैं. लाइक ऑल द मीम्स दैट आर नाउ एट प्रेजेंट वेरी प्रेविलेंट इन द इंटरनेट आर बेस्ड फ्रॉम दोज बॉलीवुड कॉमेडी मूवीज. एक्चुअली है कि नहीं, चाहे कॉमेडी की बात हो रही है तो 90s का ये गाना या 90s की ये फीलिंग कैसे मिस हो सकती है. लेट्स वॉच और लेट्स लिसन टू योर फेवरेट स्टेशन 104.9 FM Fun Asia Radio.
1: अरे वाह,

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
0: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य। एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम। 9191 काइज़रवे, सुइट 205, फ्रिस्को।
3: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल। कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर, पंडित ईश्वर जी, 9455270897, और विजिट astrologerishwar.com।
4: हुजूर, आपको चुनना होगा, हम या ये बिरयानी।
5: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
4: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
5: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
6: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
0: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
6: Barista House, richness of biryani bliss.
7: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
8: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम, ओके, नेम ऑफ द लॉयर,
9: उमर ख्वाजा।
10: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
11: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो। जॉइन पासिया एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री। शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियर बाय। पासिया, बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग।
12: When the unexpected becomes inevitable, the real story begins.
13: इस वन की काली शक्ति, और अगर कोई रात को वन में प्रवेश करता है तो उसकी लाश भी नहीं मिलती।
14: गेट रेडी फॉर अ ब्रांड न्यू एक्शन पैक्ड एक्सपीरियंस फुल ऑफ इमोशन एंड सस्पेंस।
15: एक तरफ है वन देवी और एक तरफ है विकास।
14: द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट,
16: अ हिंदी मिथोलॉजिकल फोक थ्रिलर डायरेक्टेड बाय अरुणव कुमार एंड दीपक कुमार मिश्रा। सिजलिंग द बिग स्क्रीन फॉर द फर्स्ट टाइम टुगेदर, सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया।
14: ऑन 25th September in cinemas near you।

एंट्री ले ली है इंटरनेट की गॉसिप ने ऑन गपशप गली विद मी रुमिता ओनली ऑन 104.9 एफएम फनीशा रेडियो, यानी कि बॉलीवुड को जरा सा साइड में रखते हैं और अभी इंटरनेट की तरफ चलते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये मैं बिल्कुल नहीं बना रही हूँ, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप एट ऑल। नवरात्रि इज अप्रोचिंग एंड सोशल मीडिया में एड्स मैंने देखा एंड इट इज क्वाइट सर्क्यूलेटिंग। देर आर offers also on this advertisement that I saw, which is rent a garba partner. Yes, you heard that right. Apparently, finding someone who can match your steps has now become a potential service category. मतलब वाह, क्या business idea है? Some viral posts which are advertised with different packages and prices are also circulating. यानी कि सिर्फ garba हाथ पकड़ के फोटो खींचना, गरबा का ड्यूरेशन, इन सब में कैटेगरी में बटे हुए हैं। एंड साइबर क्राइम अथॉरिटीज हैव वॉर्न पीपल नॉट टू सेंड मनी टू अननोन एंड अनवेरीफाइड प्रोफाइल्स इन एड्स को सर्कुलेट होने के बाद, जो देखा है साइबर क्राइम वालों ने। बट अभी सेफ्टी वार्निंग इज डेफिनेटली सीरियस, बट द कॉन्सेप्ट, I have seriously one question. I mean, dating apps के बाद क्या अब festival apps का जमाना आ गया है? Because garba partner rent पे मिल रहे हैं यार। अभी next क्या होगा? शादी में that relative who dances enthusiastically, वो हम ढूंढने वाले हैं इन apps में? यार उसके subscriptions भी होंगे? यार मैं तो बहुत confused हूँ और इन internet trends के लिए तो दिमाग मतलब झोल हो गई दिमाग की। आप सहमत हो? नहीं? चलो थोड़ा डांस कर लो वेडिंग वाले। This is Gup Shup Gully with me, Rumita.

You're listening to 104.9 FM Funisha Radio. This is Gup Shup Gully with me, Ramita. और आप अगर दीवाने हैं बटर चिकन बिरयानी पनीर टिक्का या फिर दाल मखनी and these dishes sound like your kind of dinner, then head to Tandoori Flame which is located in Garland. और क्यों मैं दे रही हूँ आपको रीजन, बिकॉज तंदूरी फ्लेम में शुरू हो चुका है द फ्लेम आर. मंडे टू थर्सडे 5 to 8 PM यू मे ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड रिसीव वन कॉम्प्लीमेंट्री एपेटाइजर्स. तो दो एंट्रीज और उसके साथ एक एपेटाइजर बिल्कुल मुफ्त मुफ्त मुफ्त. तंदूरी फ्लेम्स Texas TX actually, TandooriFlameTX.com is the website where you can get all the details that you need. और जाओ यार, अच्छा खाना है तो तंदूरी फ्लेम तो जाना पड़ेगा.

11:20 by the studio clock. You're listening to 104.9 FM Funny Shah Radio. This is Gup Shup Gali with me, Rumita. And Gup Shup jari hai kyunki President of India Draupadi Murmu ne urgently a film personalities ko as a whole thoda sa mindful rehne ke liye bola hai. Aur in terms of wo jo products endorse karte, that can harm people. Seeing actually mein stars have that influence and therefore it is their responsibility in what they promote. And this actually is an interesting everyday gupshup for me right now. Kya abhi bhi celebrity endorsements, do they still work on you? Because bachpan mein definitely it worked. I mean, there was no doubt. Aapke favorite cricketer jo energy drink pee rahe the, aapko bhi wahi drink chahiye. जिस एक्टर ने या एक्ट्रेसेस ने जो शैम्पू यूज़ किया था, आपको वही शैम्पू यूज़ करना था. बट टुडे वी आर सपोजिटली स्मार्टर एंड दिस स्मार्टर कम्स विद अ हैशटैग स्मार्टर्स, बिकॉज तब एक्टर्स थे, अब इन्फ्लुएंसर्स हो गए. तो वो वीडियोज़ में जो भी इन्फ्लुएंस करते हैं आपको खरीदने के लिए विद दिस स्टोन लाइक गाइज आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस प्रोडक्ट, एंड समहाउ हम डायरेक्टली जाते हैं और शॉपिंग कार्ट में उस प्रोडक्ट को ऐड कर देते. सो मे बी द सेलिब्रिटी कॉन्सेप्ट हैज चेंज्ड. पहले मूवी स्टार्स थे और अब है क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स, बट हमारी जो साइकोलॉजी है वो बिल्कुल सेम है. सो टेल मी ऑनेस्टली, हैव यू एवर बॉट समथिंग only because a celebrity or influencer has recommended it to you, and then aap use to matlab khareed to liya but usko use karne ke baad regret kar paye. I want to know your purchase stories ki wo actually mein kitne crazy hai.

काफी क्रेजी होने वाला है ऑन द 26th ऑफ सितंबर एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर व्हिच इज लोकेटेड इन एलन, बिकॉज द वन एंड ओनली सोनू निगम विल बी लाइव इन कॉन्सर्ट विथ हिज कॉन्सर्ट द रेवोल्यूशन, वेयर यू कैन एक्चुअली एक्सपीरियंस रेवोल्यूशन एंड हैव दिस अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक. आपके फेवरेट गाने, आपके बचपन के, एंड इवन आई मीन टुडे हिज सॉन्ग्स आर स्टिल लेजेंडरी इन दैट iconic voice. Sonu Nigam will be live here in Allen. Agar abhi bhi aapne tickets nahi kharidi hai, tickets are still available at the Ticketmaster, and if you need more information, call 855-360-SHOWS. That is 855-360-SHOWS. Revolution, where Sonu Nigam will be live. Aur sabse important cheez ye hai ki is event ke exclusive media partner hai Funisha Network. You're listening to Gup Shup Gully with me, Ramita, only on 104.9 FM, Funisha Radio.

38 minutes past 11 o'clock, you're listening to 104.9 FM Funny Share Radio. This is Gup Shup Gully with me, Ramita. और अगर आप मेरे साथ बने हुए हो, जुड़े हुए हो, तो एक रीकैप दे दूं कि थोड़ी देर पहले आई वॉज डिस्कसिंग अबाउट दिस रीसेंट बिजनेस कैटेगरी विच इज रेंट योर गरबा पार्टनर. और इस गरबा पार्टनर वाली स्टोरी से मुझे एक और थॉट आया है कि फेस्टिवल्स आर अराउंड द कॉर्नर. फेस्टिवल्स पहले भी सेलिब्रेटेड होते थे, आज तो होते हैं, बट समटाइम्स डेफिनेटली आजकल फेस्टिवल्स ऑल्सो हैव टू बी डॉक्यूमेंटेड. अब रिसेंटली गणेश चतुर्थी को ही देख लो, आउटफिट, पिक्चर्स, रील, ट्रांजिशन वीडियो, ग्रुप बूमरंग, खाने वाला पिक्चर, परफेक्ट रील आपका बन तो गया. एंड बाय द टाइम आपका कॉन्टेंट बन गया, आपका फेस्टिवल ना जाने कहाँ से चला गया. एंड आई एम नॉट एंटी फोटो एट ऑल. हा, फोटोज आर मेमरीज, रील्स आर फन, बट कभी कभी ना हम एक स्ट्रेंज अलग सी प्रेशर क्रिएट करते हैं हमारे अराउंड के एवरीवन एल्स लुक्स लाइक दे आर हैविंग द बेस्ट, यू नो, पूजा एवर, बेस्ट नवरात्रि एवर, बेस्ट दिवाली एवर, एंड यू आर सिटिंग एट होम ईटिंग खिचड़ी और आप अपने बोरिंग लाइफ के बारे में कंटेम्पलेट कर रहे हो. बट रिमेंबर, आप अपने ऑर्डिनरी से वेंसडे को कंपेयर कर रहे हो समबडी एल्सेस एडिटेड 14 सेकंड्स. यार ये ठीक नहीं है. एट इवेंट्स यू डू क्लिक 100 पिक्चर्स कंटेंट बनाने के लिए, इधर उधर वीडियोस तो ले ही लेते हो, बट क्या आप वो इंसान भी हो जो सिर्फ फेस्टिवल्स में द फेस्टिवल दैट यू आर अटेंडिंग आर गोइंग टू सिर्फ उसको एंजॉय करने के लिए उस फेस्टिवल में हो? डाउटफुल हूँ मैं कितने प्रतिशत लोग आजकल वो करते हैं, बट फिर भी इफ यू आर दैट 1%, कॉल करो. स्टूडियो का नंबर इज 972-235-5555 एंड लेट द गपशप कंटिन्यू.

That was Shilpa Shetty from the movie Dostana. यार कुछ भी कर लो यार, इनकी उम्र एक दिन भी नहीं बढ़ती है, क्या खाती है शिल्पा शेट्टी. You're listening to 104.9 FM Funisha Radio. This is Gup Shup Gali with me, Rimita. खैर शिल्पा शेट्टी के you know the way how gorgeous she is and how stunning she is, उस ऑरा को तो हम मैच नहीं कर पाएंगे. हम बेसिक रिक्वायरमेंट्स अपनी अपग्रेड कर सकते हैं, लाइक वी कैन एक्सेसराइज आर सेल्व्स विथ ज्वेलरीज. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट ज्वेलरी, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू टेल यू अबाउट श्री कृष्ण ज्वेलर्स, जो कि लोकेटेड है ऑन द मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को, वेर यू कैन एक्सप्लोर अ स्टनिंग हैंड क्राफ्टेड कलेक्शन ऑफ गोल्ड डायमंड्स. और मुझे नहीं लगता इस पूरे DFW मेट्रोपॉलिटन में उन जैसे पोलकी के जो कलेक्शंस हैं उनके, एंड देर आर एब्सोल्युटली मेनी मोर कलेक्शंस दे हैव, वैसे डिजाइंस आपको कहीं और मिलेंगे. सो विथ डिजाइंस फॉर एवरी ओकेशन एंड फॉर एवरी स्टाइल, चाहे आपको हैवी ज्वेलर्स पसंद, ज्वेलरी पसंद हो, या फिर ज्वेलरीज विच आर समवॉट फॉर एवरी डे, you can definitely try out Shri Krishna Jewelers again, which is located on the main street in Frisco.

Touch. Rubs are fun. Do you know what I mean? Okay.

You're listening to 104.9 FM Funny Share Radio. This is Gup Shup Gali with me, Rumita. And you know, एक NRI problem है जो मुझे लगता है अमेरिका में रहने वाले almost हर देसी ने कभी ना कभी face की होगी. हमारी salary हमेशा हमारे देश के currency में converted होती है, लेकिन हमारे expenses कभी नहीं. आप इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, किसी भी देश में हो, किसी रिलेटिव को कैजुअली अगर बता दो ना कि आपकी सैलरी कितनी है, बस मेंटली उनका कैलकुलेटर इज ऑन और उस मोमेंट पे उनकी आंखों में आपका स्टेटस ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाता है. ये तो अमेरिका में बहुत पैसा कमा रहा है. बट एक वायरल वीडियो ने एग्जैक्टली इसी कन्वर्सेशन को इंटरनेट पर डाल दिया है. फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर शरण हेगड़े के साथ कन्वर्सेशन में थे कॉन्टेंट क्रिएटर खुशी जैन, जिन्होंने मैनहट्टन में NYC मैनहट्टन में लिविंग एक्सपेंसेस की बात करते हुए बताया कि एक टू बेडरूम अपार्टमेंट का रेंट $10,000 या उससे भी ज्यादा हो सकता है, विच इज रफली 9 to 10 lakhs इंडियन रुपीज एवरी मंथ. अब सैलरी को रुपीज में कन्वर्ट करने वाले रिलेटिव्स को प्लीज ये वाला कन्वर्शन भी दिखा दो, बिकॉज अब्रॉड की सैलरी आपके किसी भी देश से बड़ी लगती जरूर है, बट रेंट, मॉर्गेज, इंश्योरेंस, चाइल्ड केयर, ग्रोसरीज, हेल्थ केयर, वो भी तो डॉलर्स में ही जाते हैं ना. तो DFW, क्या आपके साथ भी हुआ है कि आपके देश में किसी को अपनी US वाली सैलरी बताई और उनका रिएक्शन देख के इनको लग रहा है कि मैं तो सीक्रेटली अंबानी ही हूँ यार.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Dallas has its own superheroes. Fighting dust, clogs, blocked vents and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer and fresher home.
7: साइन मिलना मुश्किल है लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
12: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
13: What would happen to your business if a key owner, partner, or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? KeyPerson Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
14: It's the time to clock out. It's the time to catch up.
15: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन. एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM, ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री. ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
16: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
17: दीवारा
18: वही आवाज
17: आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
18: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
19: तुमसे मिलके दिल का है।
17: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
18: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

दिल का तो पता नहीं, पर मेरे स्टूडियो का टेलीफोन अभी धराधर बजने वाला है, बिकॉज इट इज दैट टाइम ऑफ माय शो जहां पे हमारे बॉलीवुड बफ DFW के लिसनर्स जग उठते हैं. इट्स 12:08 PM बाय द स्टूडियो क्लॉक. यू आर लिसनिंग टू गपशप गली विद मी रुमिता, एंड यस, राइटफुली सेड, इट इज दैट गिव अवे टाइम जहां पे मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक मूवी प्लॉट. और सिर्फ एक्सप्लेन ही नहीं, बैडली आई एम गोना एक्सप्लेन दैट मूवी प्लॉट, और आपको गेस करना है मूवी का नाम, जिससे आप जीत सकते हैं अ $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम Fun Pizza Kitchen. So without any further ado, let me give you the clue ताकि आप जल्दी से स्टूडियो का नंबर which is 9722355555 डायल कर सको और मुझे सही जवाब दे सको. So ready? Okay. An Indian girl and a Pakistani guy fall in love and break up. एक एलियन आता है और उन्हें कपल थेरेपी देता है और उसके बदले में he gets paid in batteries. An Indian girl and a Pakistani guy break up. Alien aata hai, couple therapy deta hai and gets paid in batteries. Phone lines have started blinking in. Call karo. Dekhte hai, kaun hai pehla sahi jawab dene wala listener. Keep listening to this beautiful track from the movie Gangubai Kathiawadi.

14 minutes past 12 o'clock. It's September 23rd, Wednesday, and you're listening to Gup Shup Gully with me, Rumita. And abhi just winner ka naam main announce karne wali hu is a little listener of ours, but bahut hi cutely unhone pehla call jo hai unhone hi dial kiya tha and सही जवाब उन्होंने ही दिया. सो दिस फन पिज्जा किचन $10 गिफ्ट कार्ड गोज टू अद्विक. अद्विक कंग्रेचुलेशंस. जैसे कि मैंने कहा, यू कैन एंजॉय दिस पिज्जा विथ योर पेरेंट्स, विथ योर फैमिली, एंड डेफिनेटली ट्राई आउट दिस मैक्सिकन स्टाइल्ड पिज्जाज. और इफ यू हैव एवर ट्राइड फन पिज्जा किचन चिकन तंदूरी पिज्जाज, विच इज माई पर्सनल फेवरेट, तो कॉल करके मुझे जरूर बताना कि ये पिज्जाज लगा कैसे. तो फ्रिस्को में फन पिज्जा किचन, एंड बाकी लोगों को बता दूं, यू आर स्टिल ट्राइंग, सो प्लीज स्टॉप कॉलिंग बिकॉज वी हैव द आंसर, एंड द आंसर फॉर दिस गिव अवे क्वेश्चन वाज पीके.

गाने में चार कदम तो बहुत ज्यादा ही रोमांटिक लगता है, लेकिन DFW में लंच के टाइम चार कदम नहीं, चार ट्रैफिक लाइट्स क्रॉस करने में ही पेशेंस आपका टेस्ट हो जाता है। यू आर लिसनिंग टू 104.9 FM फनीशा रेडियो, दिस इज गपशप गली विद मी रमिता, एंड आई नो अ लॉट ऑफ यू आर प्रोबेबली हेयरिंग आउट राइट नाउ, यू नो, लंच पिकअप, क्विक मीटिंग, या बस ऑफिस से थोड़ा सा एस्केप, चलो भाई थोड़ा ड्राइव पर होके आती हूँ। सो प्लीज ड्राइव सेफ, फोन साइड में रखिए एंड कीप योर अटेंशन ऑन द रोड, एंड दिस ज्ञान इज डेफिनेटली मेरा है, मुफ्त का ज्ञान, बट ऑब्वियसली इफ यू ड्राइव सेफ, और मानो अगर कहीं ऊपर नीच इधर उधर हो भी गया, इफ यू आर इंजर्ड इन अ कार और ट्रक एक्सीडेंट हो गया आपका, खुदा ना करे, या फिर अब कभी आप गिर गए, यू नो, यू हैव अ स्लिप एंड फॉल एक्सीडेंट, सो यू फोकस ऑन हीलिंग रादर देन, यू नो, इंश्योरेंस कंपनीज, 911 कॉल करना, ऑब्वियसली दैट्स द फर्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू डू, बट I'm talking about your insurance, car insurance, your health insurance, your everything that focus on your accident at that moment. Law offices of Omar Khwaja will be by your side and attorney Omar Khwaja will fight your case and make sure ke aapko apna compensation rightfully mile. And the best part about him is that you don't need to pay anything unless he wins the case for you. Toh, ये हुई ना विन विन सिचुएशन फॉर अ कंसल्टेशन एंड और अ डिस्कशन, इफ यू एवर गेट इन अ ट्रैफिक एक्सीडेंट और एनीथिंग, कॉल करें 4693005046, दैट्स 4693005046, और यू कैन सिंपली विजिट attorneyomar.com, दैट इज लॉ ऑफिसर्स ऑफ ओमर ख्वाजा, attorneyomar.com फॉर यू।

इसी के साथ वेंसडे की फ्रेश ट्रेंडिंग एंड टुडे गपशप को करते हैं रैप. यू नो वी हैड अ लॉट ऑफ कन्वर्सेशन, अ लॉट ऑफ गपशप टुडे ऑन दिस मिड वीक वेंसडे में. दिस इज रुमिता साइनिंग ऑफ. कल थर्सडे है तो मूड जरा सा चेंज होगा. आई विल बी टॉक अबाउट थ्रोबैक एंड मेमोरीज, बट कल सिर्फ जेनरिक नॉस्टैल्जिया नहीं करेंगे. लेट्स डिग इनटू दोस वेरी स्पेसिफिक मेमोरीज जो सुनते ही आप कहोगे ओ माय गॉड ये याद है. एंड टिल देन DFW स्क्रॉल करिए, ट्रेंड करिए, एंजॉय करिए. बस गरबा पार्टनर रेंट करने से पहले प्रोफाइल जरा सा वेरीफाई कर लेना. सी यू टुमारो ऑन गपशप गली ओनली ऑन 104.9 FM फनीशा रेडियो.

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
3: ओ हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: It's true, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
6: Dude, life में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
7: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, बट तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
6: कैसे?
7: पेज 3 ईटरी?
6: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
7: डूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोल्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
6: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
8: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
9: बेटा 95% आए?
10: हाँ मम्मी।
9: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
11: मेरा?
9: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
11: वो
12: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
13: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
14: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
15: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
14: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
15: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
14: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
15: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
14: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
16: बिंदास बोलो, बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो।
17: जब गाना बोले बिंदास तो शाम भी होगी बिंदास। जॉइन बंदा बिंदास मारविंदास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार सिर्फ वनीशा रेडियो पर।

0: नेशन का फन स्टेशन फनेशियर रेडियो।
1: हेलो नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। फनेशिया 104.9 एफएम पे आपकी होस्ट आयुषी आ चुकी है आपको एंटरटेन करने। दो घंटे के सफर में हम आपको लेके चलेंगे कुछ खूबसूरत बॉलीवुड गानों की तरफ, कुछ आपकी फरमाइश, कुछ मेरी पसंद और उसके साथ ढेरों बातें। तो आज का अपना शो स्टार्ट करते हैं इस बहुत ही प्यारे से गाने के साथ, जो है अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़ में।

Taking you towards some of the most romantic songs in our midweek Wednesday धमाल. और आज हम आपको सुनाएंगे ऐसे ही कुछ प्यारे और खूबसूरत गाने, romantic numbers इस segment में हमारे शो के. तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उसके पहले आपको ये बता दें कि आपने आपके सपनों का घर ना आपके बहुत ही करीब है, उतना करीब जितना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके पास है ड्रीम होम मॉर्गेज. सिंस 1998 ड्रीम होम मॉर्गेज हैज हेल्प्ड फैमिलीज नेशन वाइड विद पर्सनलाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशन फॉर बाइंग और रीफिनेंसिंग. कॉल 972-245-5626. आई रिपीट, दैट्स 972-245-5626. और विजिट dreamhomemortgage.com. ड्रीम होम मॉर्गेज, मेकिंग ड्रीम होम्स हैपन. स्टूडियो का नंबर बता रही हूँ, 972-235-5555 है. कॉल करिए, अपने पसंद के गानों की फरमाइश दीजिए. पर फिलहाल हम ना सिर्फ और सिर्फ कुछ रोमांटिक नंबर्स लेकर के आ रहे हैं 2000 के दौर से. बहुत ही प्यारी और खूबसूरत फिल्में हैं जिनके ये गाने हैं.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Funasia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
4: Call 857-891-8942 today.
5: When the unexpected becomes inevitable, the real story begins.
6: इस वन की काली शक्तियाँ, और अगर कोई रात को वन में प्रवेश करता है, तो उसकी लाश भी नहीं मिलती.
7: Get ready for a brand new action-packed experience, full of emotion and suspense.
8: एक तरफ है वन देवी और एक तरफ है विकास.
7: The One, Force of the Forest,
9: a Hindi mythological folk thriller, directed by Arunab Kumar and Deepak Kumar Mishra. Sizzling the big screen for the first time together, Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia.
10: On 25th September, in cinemas near you.
11: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
12: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
13: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो.
14: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
15: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
16: इतना सब और प्राइस?
15: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
17: मैं हीरो.
18: हुजूर, आपको चुनना होगा हम या ये बिरयानी.
19: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह.
18: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
19: दम में नरमी, मसालों में जादू और हरने वाले में नवाबी स्वाद.
20: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco. 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
21: Happy hours, Monday through Friday from 3 PM to 7 PM.
20: Barista House, richness of biryani bliss.
22: यार, फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है.
20: कितनी लंबी लिस्ट है?
22: बस 2 पेजेस. इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ, एक पूजा मंदिर भी.
20: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL वर्ल्ड वाइड है ना. इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं. पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है.
23: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL वर्ल्ड वाइड. शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड वर्ल्ड वाइड. विजिट SFLWorldwide.com.
24: रेस्टोरेंट चूज करना हो? गूगल रिव्यूज. होटल बुक करना हो? गूगल रिव्यूज. लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू.
25: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स, 2023 थ्रू 2026. मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज एवरी हेल्दी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर. कॉल 214-666-6259 एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स टुडे.
26: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंड ट्रैक बन जाती है.
27: वही आवाज
11: आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
0: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
1: तुमसे मिलके दिल का है।
11: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
0: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
2: हेलो एंड वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। और आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फन एशिया 104.9 FM पे। और अभी हम कुछ सुन रहे थे बहुत ही प्यारे खूबसूरत रोमांटिक नंबर्स, लेकिन इसमें लग गया एक छोटा सा ब्रेक क्योंकि एक और फरमाइश आ गई है भाई। रोमांटिक गानों के बीच में एक बर्थडे विश की फरमाइश आ गई है, और जब बात हो भाई और बहन की तो बीच में सब कुछ रोकना पड़ता है। अगले गाने की फरमाइश आई है मरियम की तरफ से अपने छोटे भाई यूसुफ जिब्रान को, और आज उनका बर्थडे है इसलिए ये गाना उनके लिए। इसके बाद फिर से रोमांटिक और प्यारे खूबसूरत बॉलीवुड गानों का सफर शुरू करेंगे। फिलहाल दिस इज फॉर यू जिब्रान, विशिंग यू अ वेरी वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे।

Okay, so here was this song requested by Maryam. और अगले गाने की तरफ चलते हैं. ये रहा एक और प्यारा और खूबसूरत सा नंबर. वापस से अपने रोमांटिक गानों का सिलसिला करते हैं इस मिड वीक धमाल में.

This part of our show is proudly brought to you by AD Fintechs, offering trusted tax accounting, payroll, bookkeeping and business advisory services for individuals and businesses. Call 469-942-9888 or visit agfintechs.com today. और ये था एक और प्यारा और खूबसूरत सा रोमांटिक नंबर. ऐसे ही कुछ रोमांटिक गाने लेकर के आ रही है आपकी होस्ट आयुषी. ये गाने जो है ना, ये जो रोमांस है, ये बॉलीवुड ने हमें सिखाया है, मतलब करना नहीं सिखाया है, इस रोमांस को देख देख कर जीना सिखाया है. और हमारे मन में ऐसी उम्मीदें पैदा करी है ना कि बस ऐसा ही कोई रोमांटिक सा हीरो हमारे जीवन में आएगा और हमारी भी दुनिया ऐसी ही हसीन हो जाएगी. बट व्हेन रियलिटी हिट्स, आपको समझ में आता है कि सारा रोमांस धरा का धरा रह जाता है और जिंदगी के जद्दोजहद में सारा का प्यार जो है ना, वैसे घुल करके पानी के साथ आटे में जाके उसकी लोई बना के चपाती बनानी पड़ जाती है और रोज रोटियां बेल रहे होते हैं हम शादी के बाद. पता नहीं क्या बोला मैंने, पर जो बोला अगर आपको समझ में आया तो समझ लीजिए शाहरुख खान और ऋतिक रोशन और बाकी रोमांटिक एक्टर्स ने जो प्यार का लेवल हमें दिखाया ना बॉलीवुड में, वो झटाक से ऐसे नीचे उतर जाता है लाइफ में. बट प्यारे जो खूबसूरत गाने हैं, ये थोड़ी देर के लिए हमें फिर से उसी मोड में ले जाते हैं जहाँ पे हम खो जाते हैं इनकी आवाज़ में. इनकी ये जो गाने हैं, इनको देख करके फिर से हो जाते हैं दीवाने. ऐसा ही एक और प्यारा सा नंबर ऋतिक रोशन और ईशा देओल की फिल्म से है.

So here was this beautiful track from the movie Na Tum Jaano Na Hum. Ritik Roshan और Isha Deol थे इस गाने में. तो हम बात कर रहे थे romantic numbers की, कि किस तरह से ना romance ने, मतलब Bollywood के romance ने हमारे लिए एक standard set कर दिया है और उस standard को सिर्फ और सिर्फ ये फिल्में और गाने ही पूरे कर सकते हैं. I don't think कि real life में वो standards meet हो सकते हैं. अब शायद मेरे कुछ रेगुलर कॉलर्स हैं जो कहेंगे कि नहीं नहीं हो सकते हैं. तो अगर आप कुछ ऐसे हो तो बताओ कैसे कर सकते हो ये स्टैंडर्ड सेट और कैसे किया हुआ है इसको सेट. एक्चुअली आप स्टूडियो के नंबर पर कॉल कर सकते हैं 972-235-5555 पे और बता सकते हैं कि ऐसा कुछ होता है रियल लाइफ में या बॉलीवुड में जो ये शाहरुख खान के लेवल का प्यार है वो वहीं तक रह जाता है. अगर आप ऐसा कुछ नहीं बताना चाहते मुझे तो मत बताइए, कॉल करिए और अपने पसंद के गाने प्ले करा लीजिए. क्योंकि भाई बॉलीवुड में तो एक से एक प्यारे खूबसूरत और रोमांटिक नंबर्स भर भर के हैं. तो देखते हैं अगला रोमांटिक नंबर कौन लेकर के आता है मेरे पास स्टूडियो में. फिलहाल शो को आगे बढ़ाते हैं लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि फॉर 13 इयर्स टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक इज प्राउडली केयर्ड फॉर आवर कम्युनिटी, नाउ ग्रोइंग विद अ ब्रांड न्यू नेम एंड अ सेकंड फ्रिस्को लोकेशन. इंट्रोड्यूसिंग लनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. लनॉक्सी मेडिकल ब्रिंग्स प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्सरे, सिटी स्कैन, कार्डियक डायग्नोस्टिक्स and Himalayan MedSpa services all under one roof. Open 7 days a week from 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime, no appointment needed. Is this beautiful 90s ka number in the voice of Udit Narayan and Alka Yagnik. Agli farmaish main umeed karti hoon aapki taraf se hogi. Call kariye studio ke number pe 972-235-5555.

0: It was this beautiful track. और अब वक्त हो रहा है छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, और देखिए जो रोमांटिक गानों का जो सिलसिला है ना यहाँ पर, ये अपने परचम पे है. मतलब इट्स ऑन अ नेक्स्ट लेवल राइट नाउ. अब एकदम अपने हाईएस्ट पे है, क्योंकि सब लोग ना ढूंढ ढूंढ के बहुत ही प्यारे प्यारे रोमांटिक नंबर्स लेकर के आ रहे हैं. और रोमांस और बॉलीवुड का जो नाता है ना, ये बहुत ही पुराना है. मतलब सारे प्यार के स्टैंडर्ड सेट्स वहीं से किए गए हैं. कुछ रियल लाइफ से लिए गए होंगे छोटे मोटे इंस्टेंसेस, बट चाहे वो गुलाब देना हो या घुटनों पर बैठ करके अंगूठी पहनाना या फिर प्रपोज करने के आइडियाज़ देने, आधे से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में ये सारे आइडियाज़ बॉलीवुड लेकर के आया है. तो कैसे बॉलीवुड गानों से पीछे रह सकते हैं हम? और बॉलीवुड का जो रोमांटिक नंबर है वो आज इस वीकेंड मिड वीक धमाल में मैं लेके आई हूँ, आपकी होस्ट आयुषी. तो बने रहिए और सुनते रहिए फनेशिया 104.9 FM, क्योंकि बहुत सारे प्यारे गाने लाइन अप है सिर्फ और सिर्फ आपकी ही फरमाइश पर.
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
2: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर. लॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेस्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनोक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइजर वे, स्वीट 205, फ्रिस्को.
3: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
4: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
3: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
4: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
3: ये क्या होता?
4: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
5: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
2: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन.
6: तारा वो तारा हर तारा.
2: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे. Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
7: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
2: That magic removal हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड solutions विद 100% privacy.
7: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. Now it's योर टर्न. समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर. कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
8: Astrology readings have for guidance only and results may vary.
9: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 AM to 5 PM Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies night and college nights B.
2: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage.
10: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
11: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
10: Kya matlab?
11: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
10: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
11: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
10: Ab to करना ही पड़ेगा मैडम.
12: Don't let debt ruin your life. Visit oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
13: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
14: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
13: Fikar not. We have the perfect solution.
2: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25-plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
14: ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಈಗ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ, ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಎನ್ಸಿಆರ್ ಎಂದ ಟಾಪ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಫ್ ಕೆಳಗೆ. 200+ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ದಿನಾಂಕ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10th and 11th. ಸ್ಥಳ ಹಯಾತ್ ರೀಜೆನ್ಸಿ ಫ್ರಿಸ್ಕೋ. ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಾತ್ರಿ 8. ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ, ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
15: The Dill of Dallas, Heart to Heart, Fun Asia.
0: आ गए वापस आप, हम भी आ गए वापस इस छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद. आपकी होस्ट आयुषी, आप सुन रहे हैं फन एशिया 104.9 FM. और भी चल रहा है मिड वीक धमाल, जहां पे सिर्फ और सिर्फ बज रहे हैं कुछ रोमांटिक गाने. और इस बार ये गाने मेरे पसंद के नहीं हैं, बिकॉज अभी पिछले 3-4 गाने कुछ ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ आपकी फरमाइश पे थे, और आने वाले जो गाने हैं ये भी आपकी ही फरमाइश है. दिस इज योर रिक्वेस्ट एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग माय टुडे सेगमेंट, जिसमें यू नो जॉइनिंग इन द सेंस, और जॉइन तो आप हो ही, मतलब आप अपने जो गाने दे रहे हो ना वो एकदम परफेक्ट हैं मेरे सेगमेंट के साथ. इतने प्यारे और खूबसूरत रोमांटिक नंबर्स लेके आ रहे हो. कुछ गाने जो हम भूल जाते हैं ना वो हमारे लिसनर्स हमें याद दिला देते हैं. तो प्लीज़ कॉल करिए स्टूडियो के नंबर पर 9722355555. बहुत मज़ा आ रहा है बिकॉज यू आर जॉइनिंग दिस होल सेगमेंट का, यू इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ this segment every time by giving me such beautiful songs. And another such beautiful song is from the movie Raju Chacha. Film ka naam hai Raju Chacha, par gana hai bahut pyara.
16: Mere labon pe ikrar hai, haan yahi to hai sab nishaniyan, haan isi ka naam.

This beautiful track in the voice of Shan was requested by Divya. Thank you, Divya. Raju Chacha hai film ka naam aur is gaane mein hai Ajay Devgan aur Kajol. और ये एक और बहुत ही प्यारा खूबसूरत रोमांटिक नंबर था दिव्या की तरफ से. अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आपको पहले बता दें कि अगर आप H1 पे हैं, F1 पे हैं, L1 पे हैं या फिर किसी भी नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पर हैं एंड इफ़ यू आर प्लानिंग योर पाथ टू US परमानेंट रेसिडेंसी, द लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता कैन हेल्प. अटर्नी सीमा मेहता और उनकी एक्सपीरियंस टीम, दे स्पेशलाइज एक्सक्लूसिवली इन इमिग्रेशन लॉ, including EB-5 investor visas, family and employment visas, perm labor certification and US citizenship. For more information on the EB-5 investor visa program, you can email info@seemamehtalawfirm.com. That's info@seemamehtalawfirm.com. The law offices of Seema Mehta. शो को आगे बढ़ाते हैं, अगले बहुत ही प्यारे और खूबसूरत नंबर की तरफ चलते हैं और इस गाने की फरमाइश है सोहेल की तरफ से मरियम के लिए. और जब भी सोहेल मरियम का नाम मन में लेते हैं तो बस यही गाना उनको याद आता है.

Here was this beautiful track from the movie हम आपके हैं कौन, और अगले गाने की तरफ आपको लेकर के चलते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे चल रहा है मिड वीक वेंसडे रोमांटिक धमाल। सिर्फ और सिर्फ रोमांटिक नंबर्स चल रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के हम भी ला रहे हैं आप भी ला रहे हैं, और हम दोनों जब साथ मिल जाएं तो क्या ही कहना है भाई, फिर तो कमाल हो ही जाएगा। अगला गाना आपको सुनाते हैं और सोच रहे हैं क्यों ना आपको बता दें कि अब अभी आप एक गिव अवे जीतने वाले हो। अगर आप स्टूडियो में मुझे कॉल करते हो और फिल्म का नाम बताते हो तो हम आपको देंगे $10 का डिस्काउंट कूपन ऑन योर डाइन इन बिल ऑफ $50 और मोर। और ये है चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से। भैया इनके यहाँ बड़ी स्पेशल थाली होती है मंडे टू फ्राइडे, एंड इनके पास हर बार एक एक्साइटिंग नई डिश होती है जो हमेशा रोटेट होते रहती है, एंड ये लंच ओनली ऑप्शन है। तो भैया लंच का टाइम भी हो रहा है, अगर आप ऑफ मैकडर्मट ड्राइव एलन में हैं तो डेफिनेटली जाइए चंडीगढ़ बाइट, और मुझे कॉल करके जाइएगा तो $10 का ऑफ भी पाएगा। सो हेडिंग टूवर्ड्स अ वेरी ब्यूटिफुल सॉन्ग। मूवी का नाम मैं नहीं बता रही इस बार, आपको बताना है कौन सी है ये फिल्म, ताकि आपको मैं दे सकूं ये $10 ऑफ का गिव अवे एक्सक्लूसिवली फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स।

प्यार तो होना ही था, यही है फिल्म का नाम। और जवाब मिल गया था मुझे बहुत ही जल्दी। जोरदार तालियां हो जाए ग्रीष्मा पटेल के लिए। हाँ बिल्कुल, तालियां तो बनती हैं भाई फटाफट जवाब देने के लिए। बहुत सारे लोगों ने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिन लोगों को गिव अवे आज नहीं मिल पाया है भैया, अफसोस मत जताइए, कल मिलेगा। हम हर दिन आते हैं 12:30 से 2:30 बजे तक आपको एंटरटेन करने। और आज हमारे विनर को मिल रहा है $10 ऑफ ऑन योर डाइन इन बिल ऑफ 50 और मोर फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स। सो गो एंजॉय योर फूड, इट्स लोकेटेड इन मैकडरमट ड्राइव इन एलन, एंड यू कैन विजिट देम ऑन chandigarhbites.com एज वेल फॉर मोर डिटेल्स। अगले गाने की तरफ चलते हैं भैया, बहुत सारे प्यारे प्यारे गानों की फरमाइश आ गई है। एंड दीज आर दोज ट्रैक्स जो हम लोग जनरली नहीं सुनते हैं, बिकॉज जब भी रेडियो ऑन करो या फिर इंस्टाग्राम ऑन करो या फिर टीवी ऑन करो, तो वही सारे गाने जो हर जगह ट्रेंडिंग है वही चलते रहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्यारे और खूबसूरत गाने हैं जो हमारे जहन से निकल जाते हैं, कहीं ना कहीं ध्यान में नहीं आते हैं। एंड दीज आर दोज ब्यूटिफुल ट्रैक्स जो बहुत समय बाद हम सुन रहे हैं। सो अनदर ब्यूटिफुल नंबर, और ये भी एक फरमाइश आई थी हमारे कॉलर की तरफ से, बहुत ही प्यारा खूबसूरत गाना है, उसकी तरफ लेके चल रहे हैं आपको।

0: हम दिल दे चुके सनम का ये गाना और समीर ठंडी हवा का झोंका सुखाम दिला के जाएगा। ये वाला डायलॉग याद है इस फिल्म से। मैं अभी ये पूरा गाना ना मतलब बिल्कुल ही वर्ड टू वर्ड मतलब 90% नहीं 95% बिल्कुल सही गाया है मैंने ये गाना उस समय ना कैसेट के साथ। मैं हर बार बताती हूँ आप लोगों को, जो उस दौर के लोग हैं उनको पता होगा, कैसेट्स कैसेट्स के साथ आता था पूरा का पूरा, एक बड़ा सा ना ऑलमोस्ट एक पोथी पत्रा जैसा लंबा सा, जिसमें सारे गाने हर एक शब्द बोल बाय बोल लिखे होते थे और वो सारे हमने ना रट लिए थे। भले हमें अपने सिलेबस की पढ़ाई लिखाई याद होना हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी के आंसर्स पता हो ना हो, पर हम दिल दे चुके सनम का गाना रटा हुआ था यार। ये था बॉलीवुड का असर हमारी ज़िंदगी पे। सोचो सारे गाने रट लिए थे, ऐसे लग रहा था कि हमारी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही फिल्मों की तरह चले, बस कोई आए प्यार हो जाए और उसके बाद से उसके लिए दुनिया जहान से लड़ जाए, बिल्कुल तलवार वलवार निकाल के तैयार हो जाए। पर ऐसा हुआ नहीं यार ऐसा हो ना पाया, बस ये फिल्मों में ही फिल्मों वाला प्यार दिखा और वहीं पे दिख करके ख़त्म भी हो गया। एनी वेज आज फन एशिया 104.9 FM पे आपकी होस्ट आयुषी आपको सुना रही है कुछ बहुत ही प्यारे खूबसूरत बॉलीवुड के रोमांटिक नंबर्स। मिड वीक रोमांटिक धमाल बोल रही हूँ मैं इसको, और बस ऐसे ही कुछ प्यारे और खूबसूरत गानों का सफर यहाँ चलता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि मेरे से ज़्यादा क्रिएटिव मेरे कॉलर्स हैं, वो सारे प्यारे प्यारे गाने ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं। All those beautiful love stories and romantic numbers जिसके आसपास हमारी जवानी के दिन बीते हैं और हमने भी सपने बुने हैं ऐसे ही कुछ गाने सुनकर। Coming up next would be this song from कुछ कुछ होता है the title track। लेकिन फिलहाल वक्त हो रहा है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, तो जल्दी से जाते हैं वापस आते हैं। स्टूडियो का नंबर है 9722355555। कॉल करिए और अपने पसंद के गाने प्ले कराइए अपनी होस्ट आयुषी से। तब तक के लिए ब्रेक पे जाइए फटाफट।
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क। यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM KZMP 104.9 FM HD1 पायलट पॉइंट टेक्सास। साइमलकास्टिंग ऑन KTCG 104.1 FM HD2 सैंगर टेक्सास। पावर्ड बाय फन एशिया फिल्म्स एंड फन पिज़्ज़ा किचन।
2: ऑफिशियल टैक्स एंड फाइनेंस पार्टनर AG FinTechs।
1: ऑफिशियल इंजरी लॉ पार्टनर द लॉ ऑफिसेस ऑफ ओमर ख्वाजा
2: इन एसोसिएशन विद पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर।
3: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
4: सिंपल बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन डबल द फ्लेवर।
5: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
4: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
5: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी।
3: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।
6: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
0: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं।
7: डील कहाँ?
0: सिंपल पास्या पे। इंट्रोड्यूसिंग पास्या, डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ। ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड अ डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन।
7: डाउनलोड पास्या, दैट्स PASYA टुडे, बिकॉज़ डील्स दूर नहीं पास है।
8: अजी सुनते हो?
9: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
10: द ओजी ऑफ टैक्स प्लानिंग एजी फिनटैक्स। सुनेंगे आपके फाइनेंशियल कंसर्न्स, देंगे स्मार्ट सॉल्यूशंस। Every Friday 9:45 AM only on Funasia Radio.
11: We need to talk.
12: अब क्या हुआ?
11: Nothing. It's not you.
12: Oh no.
11: It's the distance.
12: Distance? We live 10 minutes apart.
11: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
13: Irving, that long-distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
14: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications ab aa chuka hai digital media platform par. Kai million followers ke saath, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। द जागो टाइम्स कमीशन, जागो भी जगाओगी। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर पानेशिया।
11: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
8: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
11: एंड पिस्ताचियो लैम्ब चॉप्स,
8: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
15: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
16: Bindas bolo. बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो।
11: जब गाना बोले बिंदास तो शाम भी होगी बिंदास। जॉइन बंदा बिंदास मारविंदास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाय टेक्सस स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार सिर्फ वनीशा रेडियो पर।
14: आपके सुहाने सफर का साथी वनीशा रेडियो।
0: फिर से आपका स्वागत है, आपकी होस्ट आयुषी आपका इंतजार कर रही थी। जल्दी से आपको ब्रेक पे भेजा था, जल्दी से बुला भी लिया मैंने और बस फिर से वही प्यारे खूबसूरत जो रोमांटिक नंबर्स हैं वो आपके लिए लेके आए हैं, ढूंढ ढूंढ के एक एक चुनिंदा प्यारे खूबसूरत गाने। और अगला गाना आ रहा है फिल्म कुछ कुछ होता से है, जिसमें एक डायलॉग था शाहरुख का, एक लड़के का सर सिर्फ 3 लोगों के सामने झुकता है, देवी माँ के सामने, माँ के सामने और कौन था वो तीसरा, अभी तक शाहरुख ने नहीं बताया।

मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया, रिफत भी मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। याद है वो डायलॉग, कुछ कुछ होता है का, जब काजोल का दिल टूटा, मतलब दिल टूटा नहीं, टूट गया था, पता लगा कि शाहरुख किसी और से प्यार करते हैं, तो सबसे पहला डायलॉग यही निकला था उनके मुंह से। ये गाने, ये फिल्में, इनके डायलॉग्स इस तरह से हमारे जहन में बैठे हुए हैं ना कि भूले नहीं भूलते हैं, क्योंकि हमने एक्चुअली 90s की मूवी देखी नहीं है, हमने इनको जिया है, लिटरली जिया है। और अभी मेरी कॉलेज से मेरी बात हो रही थी, जहाँ पर मुझे बता रही थी कि किस तरह से हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया था कि इसी तरह से कुछ होगा हमारे भी लाइफ में। ऐसे ही प्यार का अगर कोई लेवल और स्टैंडर्ड है तो शाहरुख खान वाली मूवीज़ का है। मतलब जो रोमांटिक गाने, रोमांटिक फिल्में, जो रोमांस का लेवल है वो वहीं से आया है। बट यार जब वो रियलिटी हिट करती है तो क्या बोलते हैं, सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है। मेरा बकवास गाना मत सुनिए, अगले गाने की तरफ लेकर के चलती हूँ आपको, और जल्दी से आपको सुनाते हैं ये प्यारा सा नंबर। लेकिन उसके पहले यार आपको बता दें पीएमजे ज्वेल्स के बारे में कि इनका नया लोकेशन है फ्रिस्को में। दे आर ब्रिंगिंग ओवर 60 ईयर्स ऑफ ज्वेलरी एक्सेलेंस एंड टाइमलेस इंडियन क्राफ्टमैनशिप। एक्सप्लोर ब्यूटिफुल गोल्ड, डायमंड एंड ब्राइडल कलेक्शन फॉर एवरी सेलिब्रेशन। विजिट PMJ Jewels on Main Street, Frisco. Jewelry that tells your story. भाई कितनी भी बातें कर लें हम इन लव स्टोरीज के बारे में, इन मतलब 90s के प्यारे खूबसूरत गानों के बारे में, आज भी खो जाते हैं इन गानों में। मतलब प्यार हो तो ऐसे ही हो, बिल्कुल टूट के, नहीं तो नहीं हो वाला फीलिंग है।

ब्यूटिफुल ट्रैक दैट वाज रिक्वेस्टेड बाय हिनल. ऐसे ही कुछ प्यारे खूबसूरत गाने लेकर के आई आपके होस्ट आयुषी. और कभी कभी आपका दिल जोड़ रही है, कभी कभी तोड़ रही है, क्योंकि मतलब हम जब बोलने लगते हैं तो कुछ भी बोलने लगते हैं, और बोलते हैं तभी तो आपको पसंद आता है, और पसंद आता है तभी तो आप फोन करते हो. ऐसे ही फोन करते रहो, अपना प्यार देते रहो, और फन ऐसे अभी मेरी आवाज़ सुनते रहो. स्टूडियो का नंबर है 9722355555. ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, 15 मिनट है फिलहाल, एक दो गाने लाइनअप करके रखे हुए मैंने. पर अगर कोई मज़ेदार से ना प्यारे से रोमांटिक नंबर की फरमाइश आ गई तो हम चूज़ करेंगे हमको कौन सा प्ले करना है. इसलिए आप अभी भी कॉल कर सकते हैं और अपने पसंद के गाने बजा सकते हैं. और अगर आपको पसंद आ रहा है ना ऑलरेडी जो मैं प्ले कर रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, तो यार खुश हो जाइए और खुश होकर के मुझे और खुश कर दीजिए कॉल करके, बिकॉज आपके कॉल्स ही हैं जो हमें स्टूडियो में अच्छा बोलने पर और अच्छा करने पर मजबूर करते हैं, ताकि हमारे लिसनर्स जो हैं वो खुश रहें. तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं. लेकिन आपको बता दें यार कि एक अनफॉर्गेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक होने वाला है डैलस में. कहाँ हो आप लोग, क्या कर रहे हो, क्यों सोच रहे हो, जल्दी से ले लो टिकट, क्योंकि द वन एंड ओनली सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट हो रहा है September 26th को एट 8:30 PM एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर इन एलन. एक्सपीरियंस रेवोल्यूशन, your favorite songs, the iconic voice, all live. Tickets available at Ticketmaster. For more information, call 855-360-SHOWS. 855-360-SHOWS. रेवोल्यूशन सोनू निगम लाइव एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर है फन एशिया नेटवर्क, आपका अपना फन एशिया. तो चलिए अगले गाने की तरफ लेकर के चल रहे, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा नंबर, शाहरुख खान और ट्विंकल खन्ना है इस गाने में.

What a beautiful track from the movie बादशाह. जल्दी से अगले गाने की तरफ चलते हैं अपने midweek romantic धमाल में. बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा गाना है फिल्म कृष्णा कॉटेज से.

What a beautiful number in the voice of Shreya Ghoshal. Krishna Cottage का ये गाना बहुत अरसे बाद सुना है और बहुत बहुत thank you माही, आपने ये गाना request किया उसके लिए thank you so much. और फिलहाल मेरे विदा लेने का वक्त हो चुका है. जी हाँ, 2:30 बजने वाले हैं और अब यहाँ पे afternoon drive time में होंगी हमारी प्यारी सुनहरी किरण, जो कि बहुत ही प्यारा सा शो लेके आती हैं आप लोगों के लिए. तो मेरी चटपट और भग भग के बाद सुनहरे सुनहरे आवाज़ को और सुनहरे सुनहरे गानों को सुनने के लिए तैयार हो जाइए हमारी प्यारी सुनहरी किरण के साथ. तो आज के लिए विदा ले रही हूँ. लास्ट गाना प्ले करके जा रही हूँ. जिनके गाने नहीं प्ले कर पाई हूँ माफ़ी दीजिएगा, फिर अगले बार आएंगे तो आपके लिए आपके पसंद के गाने प्ले कर देंगे. मतलब कल दोपहर 12:30 से 2:30 बजे तक आपके होस्ट हो गया वनेशा के स्टूडियो में. मेरा नाम है आयुषी, याद रखिएगा और कॉल करते रहिएगा स्टूडियो पे, जो कि है 9722355555 स्टूडियो का नंबर. आज के लिए टाटा बाय बाय. और श्रुति की फरमाइश पे ये प्यारा सा गाना सोनू निगम की आवाज़ में है आप लोगों के लिए छोड़े जा रही हूँ. फिल्म का नाम है संघर्ष, अ ब्यूटिफुल रोमांटिक नंबर फ्रॉम दिस फिल्म. आज के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू टुमारो शार्प एट 12:30.

0: डैड प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ हैं?
1: लैपटॉप में.
0: इन्वेस्टमेंट?
1: गूगल ड्राइव.
0: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
1: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है.
0: डैड वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है.
2: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
3: Hi, this is Deepti Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
2: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
4: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था.
5: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
6: Have you thought about what would happen if you or a business partner passed away unexpectedly? The death of an owner can create serious challenges for a business, from ownership disputes to cash flow concerns and family financial needs. A properly structured buy-sell agreement funded with life insurance may help provide the funds needed to purchase a deceased owner's share of the business and allow for a smoother transition to the surviving owners. Life insurance can be used with different buy-sell structures, including cross-purchase and entity purchase arrangements. Protect your business, your partners, and your family. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603 to learn more about business continuation planning with life insurance. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult your attorney and tax advisor regarding buy-sell agreements. Not legal, tax, or investment advice.
7: It's the time to clock out.
8: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, jahan tandoor ki smoky khushboo, sizzling flavors aur chatpate appetizers make an ordinary weekday feel like a delicious celebration. Every Monday through Friday from 5 to 8 p.m., order any two entrees and get one appetizer absolutely free. Bring your family, friends and your appetite. Visit Tandoori Flame in Garland. Terms and conditions apply.
9: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. माई फैमिली होम लोन डॉट कॉम देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट माई फैमिली होम लोन डॉट कॉम और कॉल 469-734-3338. 469-734-3338. माई फैमिली होम लोन डॉट कॉम इज पावर्ड by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
10: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
11: Sadia. कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
12: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
13: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
14: तुमसे मिलके दिल का है.
12: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
13: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.

A very, very good afternoon to the listeners of 104.9 FM Fun Asia Radio. सुन रहे हैं आप Afternoon Drive Time with सुनहरी किरण. मैं हूँ किरण आपके साथ every Monday through Friday 5:30 to 5:00 PM तक. मेरा और आपका साथ रहता है 972-235-5555 के थ्रू रहते हैं आप भी मेरे साथ. It is always the best part of my day when I am here with you. म्यूजिक का सिलसिला तो चलता ही है. सुरीला सफर हम आपके साथ जारी रखते हैं, पर उसके साथ बहुत सारी अपडेट, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आती हूँ. और सुनहरी किरण में मिलता है आपको हमेशा कुछ डिफरेंट. हर रोज एक नया पैटर्न होता है, एक नई थीम होती है हमारी. आज है जी वेंसडे और वेंसडेज इज ऑलवेज जैम पैक्ड और बहुत सारी मजे की चीजें मैं आपके लिए लेके आती हूँ. वी स्टार्ट विद रोमांटिक मेलोडीज, गो ऑन टू पॉप फ्रीक्वेंसी, देन द टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामास अकॉर्डिंग टू द टीआरपी चार्ट्स इन पाकिस्तान, देन ट्रॉफी ट्रैक्स और इसके दरमियान बहुत सारी इंफॉर्मेशन. स्टे ट्यून्ड, अभी तो पार्टी शुरू हुई है.

जी हाँ, लव डू हैव अ वे ऑफ फाइंडिंग अ वे. सुन रहे हैं आप रोमांटिक मेलोडीज राइट हियर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. और जी, अब वक्त आ चला है, मैं सीधा आपको एक गिव अवे की तरफ लेके जाने वाली हूँ. और ये गिव अवे ना सिर्फ ये कि आप इंजॉय करेंगे, ऑफकोर्स आपको पैसे बचने वाले हैं, बल्कि आपकी सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड दैट इज डक्ट क्लीनिंग. डक्ट टाइम आपके लिए लेकर आ रहा है दिस गिव अवे. लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि डक्ट क्लीनिंग हम सबके लिए कितनी जरूरी है. इट हेल्प्स रिमूव डस्ट फ्रॉम आर डक्ट्स. साथ ही साथ क्लॉग्ड वेंट साफ हो जाते हैं, एयर फ्लो इंप्रूव होता है, और जो आपके हिडन हैजर्ड फायर हैजर्ड्स होते हैं वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं. इसी के साथ और भी बहुत सारे फायदे हैं डक्ट क्लीनिंग के. आप जरूर इसको रीड कीजिए और देखिए कि हमें अपने घरों में डक्ट क्लीनिंग की कितनी ज्यादा जरूरत है. और ये डक्ट क्लीनिंग आप करवा सकते हैं डक्ट टाइम से. डक्ट टाइम इज कंप्लीटिंग इट्स फर्स्ट एनिवर्सरी एंड दे हैव बीन डूइंग अमेजिंग. दे हैव डन अमेजिंग जॉब्स

फायदे हैं डक्ट क्लीनिंग के, आप जरूर इसको रीड कीजिए और देखिए कि हमें अपने घरों में डक्ट क्लीनिंग की कितनी ज्यादा जरूरत है. और ये डक्ट क्लीनिंग आप करवा सकते हैं डक्ट टाइम से. डक्ट टाइम इज कंप्लीटिंग इट्स फर्स्ट एनिवर्सरी एंड दे हैव बीन डूइंग अमेजिंग, दे हैव डन अमेजिंग जॉब्स, ब्रिलियंट रिव्यूज. आप भी डक्ट टाइम के जीतू पटेल जी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. कोई भी आपका सवाल है, आपने बुकिंग करानी है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, जीतू पटेल नंबर इज 972-877-2500, 972-877-2500 उनका नंबर. और आप अपनी बुकिंग कराइए और देखिए कि आपको क्लीनर, सेफर और फ्रेशर होम कैसे चुटकियों में देते हैं डक टाइम वाले. और अब ये गिव अवे आया है आपके लिए, यू कैन गेट अ 50% डिस्काउंट ऑन ड्रायर वेंट क्लीनिंग. एक बार फिर आपको बताती चलूं, 50% डिस्काउंट ऑन ड्रायर वेंट क्लीनिंग. आपके ड्रायर का जो वेंट है उसकी क्लीनिंग का 50% आपको डिस्काउंट मिल सकता है फ्रॉम डक टाइम. और आपको मुझे क्या बताना है, रोमांटिक मेलोडीज का समा चल रहा है जी, तो मुझे बताइए आपके जहन में वो कौन सा रोमांटिक गाना गुनगुना रहा है आपका जहन, जो आप कहते हैं कि बज जाए, प्ले हो जाए तो बड़ी बात है, लेकिन वैसे मेरे बैंक में इजाफा हो जाएगा म्यूजिक बैंक में. मुझे बताइए विच रोमांटिक मेलोडी इज वन ऑफ दोज जो इस वक्त आपके जहन में आ रही है. 972-235-5555 is the number to the studio.

इतनी सारी फोन कॉल्स हैं जी, अब हमारे कॉन्टेस्ट का टाइम खत्म हो चुका है, इसीलिए मजीद फोन कॉल्स मैं नहीं लूंगी. और आप सबको बताती चलूं कि जो बहुत प्यारे प्यारे गाने हमें रोमांटिक पता चले, जो मैं पूछ रही थी आपसे कि आपके जहन में क्या पहला गाना आ रहा है रोमांटिक मेलोडीज का सुन के, वी स्टार्टेड फ्रॉम पहला नशा, तो तुझे देखा तो ये जाना सनम, टू चांद सिफारिश एंड मेनी अदर्स, जैसे कि तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, और बहुत सारे और खूबसूरत गाने आपने बताए. और आज के जो हमारे लकी विनर हैं, एज ऑलवेज मैथ के फॉर्मूले ने अपना नंबर दे दिया है, और वो लकी विनर हैं रोहन मेहता. रोहन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ड्रायर डक्ट क्लीनिंग का ये 50% ऑफ फ्रॉम डक्ट टाइम. हमें 2 दिन का टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर वहां पहुंचाने के लिए, एंड समबडी विल डेफिनेटली गेट इन टच विद यू फ्रॉम डक्ट टाइम. थैंक यू सो मच आप तमाम लोगों का जिन्होंने पार्टिसिपेट किया. एज ऑलवेज इट इज अ प्लेजर एंड दिल से शुक्रिया आप टाइम निकालते हैं, फोन उठाते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं. थैंक यू.

और इसी के साथ इस सेगमेंट का इख्तिताम कर रहे हैं इस गाने के साथ. दिस इज गोइंग आउट स्पेशली टू सफी. सफी आपके लिए लगाने लगी हूँ, लेकिन उससे पहले आप सबको बताती चलूं जी, फाइनेंसिस का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. और अगर आप सोच रहे हैं यू नो यू वांट टू गेट सम पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटजीज मेड फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, तो फिर माई टाइम Equity led by CPA Sudhir Pai. This is a place जहां आपको contact करना है. इनसे अपनी discussion कीजिए, देखिए आपकी क्या strategy, क्या requirements हैं आपकी, and what are the strategies that they suggest to you. That number is 469-702-1272 उनका number, या फिर आप उनकी website visit कर सकते हैं, which is mytimeequity.com. Once again, that website is mytimeequity.com.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
4: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal, or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
5: Hey, Frisco, get ready to celebrate silver like never before. Chandrika Silver by Shri Krishna Jewelers celebrates its grand launch. Discover exquisite handcrafted silver jewelry and artifacts with exciting inaugural offers and raffle prizes. Visit 7777 Warren Parkway, Suite 280, Frisco. Chandrika Silver, the tradition shines in silver.
6: When the unexpected becomes inevitable, the real story begins.
7: This one ki kali shakti. और अगर कोई रात को वन में प्रवेश करता है तो उसकी लाश भी नहीं मिलती।
8: Get ready for a brand new action packed experience full of emotion and suspense.
9: एक तरफ है वन देवी और एक तरफ है विकास।
8: The One Force of the Forest,
10: a Hindi mythological folk thriller directed by Arunab Kumar and Deepak Kumar Mishra. Sizzling the big screen for the first time together, Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia.
8: On 25th September in cinemas near you.
11: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
12: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
13: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
14: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
13: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
15: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
16: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
17: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
16: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
18: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
19: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
20: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
19: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
20: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
19: और एंटरटेनमेंट,
20: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में।
19: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
20: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
21: वांट टू एक्सप्लोर प्रॉपर्टीज इन इंडिया? यू डोंट नीड टू फ्लाई टू इंडिया। The Groh Pravesh India Property Expo is coming to Frisco. Meet top developers from Bengaluru, Hyderabad, Mumbai, Pune, Chennai and Delhi NCR. Explore 200 plus projects for your dream home or next investment. October 10th and 11th, Hearth Regency, Frisco, 10 a.m. to 8 p.m. Free entry, free parking. Gruh Pravesh India Property Expo by My Square Feet.
0: जुड़ जाओ अपनी धरती से देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फोनेशिया 104.9 FM।

जी हाँ, मैं भी आपसे मिलने वैसे तो 2:30 बजे से यहाँ पे मौजूद हूँ, लेकिन 5 बजे तक रहूंगी, लेकिन अभी 3 बजे से हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉप फ्रीक्वेंसी. कुछ पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक आपके लिए प्ले होगा 3:30 से 4 तक. आई विल ब्रिंग यू द टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामाज अकॉर्डिंग टू द TRP चार्ट्स ऑफ पाकिस्तान. सो बने रहिए मेरे साथ, अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ जबरदस्त म्यूजिक आपके लिए लाइंड अप है. एक गिव अवे सीधा आपके लिए लेकर आ रही हूँ, क्योंकि आज से 2 दिन पहले, आज है जी September 23rd, 21 सितंबर को एक ऐसी सिंगर का बर्थडे सेलिब्रेट किया हमने जिन्होंने पूरे सब कॉन्टिनेंट, क्या पूरी दुनिया में अपनी गायकी की वजह से वो जानी और पहचानी गई. और वो कौन सी सिंगर हैं ये आप मुझे बताएंगे, क्योंकि मैं लेकर आई हूं आपके लिए बरिस्ता हाउस की तरफ से एक $20 का गिफ्ट कूपन फॉर योर डाइन इन ओनली. सबसे पहले आपको बरिस्ता हाउस के बारे में बताऊं जी कि दे आर वेरी पॉपुलर इन डेंटन और अब वो आपके लिए फ्रिस्को में भी आ चुके हैं. एंड दिस इज ब्रॉट टू यू बाय प्रिज्म बार एंड ग्रिल. आपको यहां पे बेहतरीन खाना तो मिलेगा ही, लेकिन कुछ बेहतरीन चीजें मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि हैदराबादी बिरयानी, नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, और डिजर्ट्स का तो पूछिए ही मत, बेहतरीन हर चीज डिलिशियस. यू हैव टू लॉग आउट, चेक आउट बरिस्ता हाउस. दे आर लोकेटेड एट 6377 कस्टर रोड, फ्रिस्को, टेक्सस. और अब आपके पास मौका है ये $20 का गिफ्ट कार्ड जीतने का डाइन इन ओनली. अगर आप मुझे बताइएगा कि 21 सितंबर को कौन सी ऐसी सिंगर का हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया जिन्होंने अपना आप क्या उनका बारे में मैं आपको बताऊं, मैं बता दूंगी तो फिर और मजीद आसान हो जाएगा. पहले आप मुझे बताइए कि वो कौन है. गाना उन्हीं का मैं प्ले करने लगी हूँ. 6 decades पे उनका करियर स्पैन हुआ, यानी कि 60 साल से ज़्यादा वो करियर में अपने गाती रहीं. दिस इज सच अ ब्यूटिफुल वॉइस. लेट्स प्ले दिस म्यूजिक, दिस सॉन्ग फॉर यू, एंड देन आप मुझे बताइए कि वो कौन है और जीत लीजिए ये मौका.

जी हाँ, वन ऑफ दोज पॉपुलर सॉन्ग्स जिनको कई तरीके से गाया गया सानू नहर वाले पुल पे बुला के। और आपसे पूछा था कि ये जो गाना जिनकी आवाज में आपके लिए प्ले हुआ, ऑब्वियसली उन्हीं का बर्थडे हमने 21 सितंबर को सेलिब्रेट किया। सबसे पहले आपको नाम बता देते हैं जी, नूर जहां, मैडम नूर जहां का बर्थडे था 21 सितंबर को। इट इज ऑलवेज ऑलवेज सेलिब्रेटेड इन सच अ ग्रैंड वे। उनके म्यूजिक को सेलिब्रेट किया जाता है, उनकी गायकी को सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहले आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, पल्लवी, प्रियंका, शोएब, आजम साहब, शिवानी एंड मेनी मोर। अभी भी फोन लाइंस बज हो रही हैं जी। गाना खत्म हो चुका है, कॉन्टेस्ट का टाइम खत्म है। आपका नंबर जिस सीक्वेंस में आपने कॉल किया वो नंबर मैथ के फॉर्मूले में डाल दिया गया है और आपकी लक ने आपकी विन का फैसला कर लिया है। और आज के हमारे लकी विनर हैं शोएब खान। शोएब साहब, कांग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये गिव अवे। और हमें 2 दिन का टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर बरिस्ता हाउस पहुंचाने के लिए। दे आर लोकेटेड इन फ्रिस्को, वंस अगेन 6377 कस्टर रोड। और 2 दिन के बाद आपके पास अबाउट 7 दिन का दिन है टू गो टू बरिस्ता हाउस एंड अवेल योर $20 गिफ्ट कूपन फॉर डाइन इन ओनली। और आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। इट रियली रियली मैटर्स अ लॉट। मैडम नूर जहां को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, 21 सितंबर 1926 इज द डेट ऑफ बर्थ, 23 दिसंबर 2000 एंड व्हेन वी लॉस्ट हर। शी वाज अ प्लेबैक सिंगर, एक्ट्रेस थी। 6 डेकेड्स पे उनका करियर स्पैन हुआ, बोथ ब्रिटिश इंडिया एज वेल एज पाकिस्तानी सिनेमा। और उनकी प्रोफिशिएंसी थी हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में एज वेल एज द अदर जॉनर्स, जैसे कि गजल गाती थी। और उन्होंने जी अपना जो डायरेक्टोरियल डेब्यू किया वो चन वे से किया 1951 में। वो बनी पहली फीमेल डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान। शी इज रिकग्नाइज्ड फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू म्यूजिक इन साउथ एशिया, पर्टिकुलरली ऑफ कोर्स पाकिस्तान। एंड शी वाज गिवन द टाइटल ऑफ मलिकाए तरन्नुम। वो हम इन्हें कहते हैं मलिकाए तरन्नुम का मतलब द क्वीन ऑफ मेलेडी, मलिकाए तरन्नुम नूरजहां। अच्छा, अब मैं आपके लिए जो गाना लगाने लगी हूँ, आपने आजकल उसका वर्जन सुना है और वो वर्जन है जिसमें हमें नौरा फतेही परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है, लेकिन मैं आपको उसका बिल्कुल ओरिजिनल सुनाने वाली हूँ जो मैडम नूरजहां की आवाज में था। दिस इज जालिमा, कोका कोला पिला दे।

जी हाँ, ये कोका कोला का ओरिजिन था जो अब आपको नौरा फतेही जिसमें परफॉर्म करती हुई नजर आती है. दिस इज द वेरी ओरिजिनल जालिमा, कोका कोला पिला दे. वैसे जिस जमाने में ये गाना आया था, मैं सोचती हूँ वैसे बड़ी थॉट डाली होगी जालिमा कोका कोला पिला दे, या फिर कोका कोला वालों ने इनको बहुत ही ज्यादा पैसे दिए होंगे अपने ब्रांड को एडवर्टाइज करने के लिए. ये वैसे मुझे बात ज्यादा सही लग रही है. अच्छा जी, थैंक यू सो मच. हमने सेलिब्रेट किया नूरजहां मैम को. टाइम हमारे पास इतना कम होता है, गाने तो उनके इतने हैं कि पूरा एक दिन भी उनके सारी प्लेलिस्ट में जाई जाए तो भी इनफ नहीं होगा, जस्टिस नहीं होगा. बट वी हैव टू मूव ऑन. सो वी आर डेफिनेटली सेलिब्रेटिंग हर. और दो गाने मैंने आपके लिए उनके प्ले किए. आपको ये बता दी चलूँ कि शी रिकॉर्डेड अबाउट 10,000 सॉन्ग्स इन वेरियस लैंग्वेजेस, जिसमें उर्दू, पंजाबी, सिंधी, और उन्होंने अबाउट फिल्मों के लिए 2,422 से ज़्यादा गाने गाए पाकिस्तानी फिल्मों के लिए. 1,148 films in total. वैसे ये नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, सो इफ आई एम रॉन्ग सो प्लीज स्पेयर मी फॉर दैट. अब हम बढ़ रहे हैं अगले गाने की तरफ. ये बात आपको बताती चलूं फिर से, 3:30 से 4 बजे तक लेके आऊंगी द टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामास फॉर यू अकॉर्डिंग टू द TRP charts. बनी रही है, आई हैव लॉट्स ऑफ न्यू एंट्रीज इन आर लिस्ट.

जी हाँ, दोस्ती तो वैसे कुछ ऐसा ही रिश्ता है. और नाजिया और जुहेब की आवाज़ में जब ये दोस्ती का गाना बजता है, तो वन ऑफ दोज इनिशियल दोस्ती सॉन्ग्स जिन्होंने दोस्ती की जो फील है उसको डिफाइन किया इन अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड ऑफ कोर्स अ म्यूजिकल वे. अच्छा जी, आगे बढ़ रहे हैं और इस गाने के साथ ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं. अली, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल और मुझे याद दिलाने का कि अभी एक सज्जाद अली का गाना प्ले होना बनता है. आपके लिए सज्जाद अली का गाना प्ले कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि अगर आप अनफॉर्चुनेटली किसी कार या फिर किसी ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं या फिर कोई स्लिप और फॉल इंसिडेंट है, तो ऐसी सिचुएशन हम सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकती है, ख़ासतौर पे अगर आपको पेपर वर्क के साथ डील करना है, इंश्योरेंस कंपनी के साथ डील करना है, लीगैलिटीज, देर इज़ सो मच दैट यू हैव टू गो थ्रू. सो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, आप सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखिए और लेट अटर्नी उमर ख्वाजा एंड हिज ऑफिस Do the rest for you. ना सिर्फ ये कि वो आपका केस फाइल करेंगे, आपको बेस्ट कॉम्पनसेशन दिलाएंगे जो आपके सिनेरियो में बनती है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये कि आपको कुछ पे नहीं करना जब तक कि आप इस केस को जीत नहीं जाते. सो इस विन विन सिचुएशन को इस स्ट्रेसफुल टाइम में एक राहत की खबर आपको दे रही हूँ, एक विन विन सिचुएशन दे रही हूँ. आप अटर्नी उमर ख्वाजा को कॉल कीजिए फॉर अ कंसल्टेशन और बात कीजिए, देखिए वेर यू स्टैंड. दैट नंबर इज 4693005046, 4693005046, या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, विच इज attorneyomar.com. अली जी, दिस वन इज फॉर यू.

0: थैंक यू सो मच पल्लवी आपकी फोन का, फॉर शेयरिंग योर फेवरेट ड्रामाज विद मी. एंड बस अगले 5 मिनट में मैं एंटर कर रही हूँ हमारे टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामाज अकॉर्डिंग टू द TRP चार्ट्स. कुछ नए ड्रामे इस बार ऐड हुए हैं, आप कहीं मत जाइए. ये अगला आधा घंटा अगर आप ड्रामा लवर हैं, पाकिस्तानी ड्रामा लवर, तो आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते. इट इज गोइंग टू बी एन एब्सोल्यूट ब्रिलियंट चार्ट जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. बने रहिए, स्टे ट्यून्ड.
1: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
2: अरे सारे तो सेम है.
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
2: ओ हाँ, ये तो अलग है.
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: यार फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है.
5: कितनी लंबी लिस्ट है?
4: बस 2 pages. इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ एक पूजा मंदिर भी.
5: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL वर्ल्ड वाइड है ना. इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं. पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है.
6: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL वर्ल्ड वाइड शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड वर्ल्ड वाइड. विजिट SFLworldwide.com.
7: हेलो, वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
8: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन इज आस्किंग लंच में क्या है.
7: फिकर नॉट, वी हैव द परफेक्ट सॉल्यूशन.
3: द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को ब्रिंग्स यू इट्स ऑल न्यू वीकेंड लंच बुफे, फ्रॉम फ्लेवरफुल इंडियन फेवरेट्स टू लाइव काउंटर्स एंड शेफ स्पेशल, 25+ डिशेस, वेलकम ड्रिंक, चाट, एपेटाइजर्स, मेन कोर्स एंड डिजर्ट. सैटरडे टू संडे 12 PM टू 3 PM. This weekend, let the flavor lounge do the cooking.
9: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दूंगी.
10: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
3: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
10: वेट, इतना सब और प्राइस?
3: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
11: मैं हीरो.
12: हुजूर, आपको चुनना होगा, हम या ये बिरयानी.
13: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह.
12: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
13: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद.
14: प्रेजेंटिंग बिरिस्ता हाउस बाय प्रिज्म बार एंड ग्रिल, ऑथेंटिक हैदराबादी फ्लेवर्स एंड अ ट्रूली नवाबी एक्सपीरियंस. नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, डिलीशियस डेजर्ट्स एंड मेनी मोर टू एक्सप्लोर. डेंटन्स फेमस बिरिस्ता हाउस इज नाउ इन फ्रिस्को, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
3: Happy hours Monday through Friday from 3 PM to 7 PM.
14: Barista House, richness of biryani bliss.
15: Dallas has its own superheroes, fighting dust, clogs, blocked vents and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer and fresher home.
16: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट.
17: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव.
16: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
17: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन.
18: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
19: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
11: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
20: Dallas ki dhadkan 104.9 FM Funisia Radio.

यू ट्यून्ड इनटू 104.9 एफएम फनएशिया रेडियो और सेगमेंट आ चला है जी जब मैं आपको बताने वाली हूँ द टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामास अकॉर्डिंग टू द टीआरपी चार्ट्स फॉर लास्ट वीक यानी के द वीक ऑफ सितंबर 14th टिल सितंबर 20th और टीआरपी चार्ट्स में कुछ नई एडिशंस हुई हैं कुछ पुराने ड्रामे जो कंप्लीट हो गए थे वो आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं और नए ड्रामे ऐड हो रहे हैं लेट्स बिगिन विद ड्रामा नंबर 10 अकॉर्डिंग टू द टीआरपी चार्ट 7 एवरेज टीआरपी के साथ ये ड्रामा रहा 10वें नंबर पे दिस इज ड्रामा सीरियल नश्तर और जी ये फ्राइडे और सैटरडे को आता है 8 बजे शाम ऑन जियो एंटरटेनमेंट पे और अभी ये महीना पहले 21 अगस्त से ये ड्रामा शुरू हुआ है इसमें हमें नजर आ रहे हैं दानिश तैमूर और साथ उनके देखिए नाम मैं अक्सर इनका भूल जाती हूँ फिर रवानी में आता जैसे ही नाम याद आता है मुझे इन लड़की का मैं आपको बताती हूँ बहरहाल द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड वेरी रिच मैन एंड मिडिल क्लास गर्ल जो कि अभी स्टूडेंट हैं और किस तरह से उन दोनों की लाइफ्स क्लैश होती है एक रिवेंज प्लॉट सामने आता है और रिवेंज प्लॉट में आगे क्या होगा ये है डायनामिक्स इस कहानी की मिक्स्ड रिव्यूज इसको यूं मिल रहे हैं कुछ लोगों को ये रिवेंज प्लॉट बहुत अच्छा नहीं लग रहा थोड़ा सा यू नो क्रेजी सा लग रहा है और कुछ लोग जो दानिश तैमूर के फैन हैं उनको ये बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज दानिश तैमूर के ड्रामे की पॉपुलैरिटी की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो दानिश तैमूर के अपने फैंस होते हैं बिकॉज दे जस्ट डू नॉट विश to leave him alone. So Danish Taimur, known for his intense and charismatic anti-hero kind of alpha male jo unki appearances hoti hain. Haan, naam yaad aa gaya mujhe. Anmol Baloch hain ladki jo heroine hai is drama mein. Pehli baar Anmol Baloch aur Danish Taimur ki jodi ek saath nazar aayi hai. Dekhne walon ko wo jodi bhi fresh lag rahi hai. और मजा आ रहा है सो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग जो कैरेक्टर इसमें कर रही हैं वो नईमा भट्ट हैं अगर आपको याद वो ड्रामा फहद मुस्तफ़ा और हानिया आमिर का मैं कभी मैं कभी तुम वो जो ड्रामा था उसमें जिन्होंने भाभी का किरदार अदा किया था जो कि रिच सिस्टर इन लॉ बनी थी वो है नईमा भट्ट सो नईमा भट्ट को भी इस ड्रामे में पसंद किया जा रहा है इफ़ यू हैवन्ट स्टार्टेड वॉचिंग इट देन नश्तर इज वन फॉर यू अच्छा नंबर 9 पे मैं थोड़ा सा हैरान हुई कि ये ड्रामा एकदम से दूसरी तीसरी पोजिशन से 9वें नंबर पे कैसे आ गया बट ऑडियंस हमें जी अब जो चीज़ हमें पसंद आए कुछ जैसे ही बोरिंग हो जाती है तो हम उसको आगे बढ़ा देते हैं कि भाई यार अब ये बोरिंग हो रही है तो मेरा ख्याल है ये पिछली 2 एपिसोड थोड़ी सी स्लो थी एक ही मंजर को और एक ही सीन को देख देख के ऑडियंस थोड़ी सी बोर हो गई है और ये ड्रामा है आपकी इज्जत फ्राइडे और सैटरडे 8 बजे शाम को आता है और इसमें हमें ऑफकोर्स नजर आ रहे हैं एहसन खान और उर्वा हुसैन जो कि एक बेहतरीन रोल में है 15वीं 16वीं एपिसोड तो इस ड्रामे की खैर आउटस्टैंडिंग थी फिर 17, 18, 19, 20 थोड़ी सी स्लो हो गई जिसकी वजह से लोग जो हैं वो अब कह रहे हैं कि भाई मूव ऑन जल्दी जल्दी अब आगे बढ़ाइए इसको कुछ आगे बढ़िए देखिए क्या होता है पेंड बाय उमेरा अहमद सो वी आर एक्सपेक्टिंग स्टिल गुड थिंग्स फ्रॉम द ड्रामा इसी के साथ 8वें नंबर पे ये नवा नंबर था 8वें नंबर पे एक नया एडिशन है और वो है गुलबहार वेंसडेज और थर्सडेज को ये ड्रामा शुरू हुआ है जी 16 सितंबर से ये शुरू हुआ है और वेंसडेज थर्सडेज को आता है शाम 8 बजे ऑन हम टीवी और कोर प्लॉट जो है इसका वो है इट्स लाइक इट फॉलोज अ डीपली इन लव मैरिड कपल जिसको सनम सईद और इमाद इरफानी ने प्ले किया है सनम सईद और इमाद इरफानी का अभी एक ड्रामा गुजरा था जो कि बहुत लोगों ने पसंद किया जिसमें इमाद इरफानी एक क्रेजी हस्बैंड बनते हैं और सनम सईद उनके साथ डील कर रही होती हैं वो मेरा अहमद का ड्रामा था देखिए मेरे जहन से नाम निकल रहा है उस ड्रामे का लेकिन एक बार फिर सनम और इमाद इरफानी की जोड़ी हमें नजर आई है दे आर यू नो अ वेरी हैप्पी कपल बट दे आर फेसिंग सिवियर फैमिली एंड यू नो सोसाइटल प्रेशर्स रिगार्डिंग चाइल्डलेसनेस और फिर क्या होता है उनकी जिंदगी में दैट इज द स्टोरी ऑफ दिस ड्रामा आते ही ये ड्रामा जो है वो 8वीं पोजिशन पे पहुंच चुका है सो दैट वॉज 8, 9, and 10 अब हम जब इस गाने के बाद वापस आएंगे तो आई विल टेल यू 7, 6 and 5.

एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट साउंडट्रैक ऑफ आपकी इज्जत संग बाय अली जफर. अली जफर का चार्म कभी खत्म नहीं होता. अच्छा जी, आगे बढ़ रहे हैं. कमिंग ऑन टू नंबर 7 ट्रेंडिंग ड्रामा जो सातवें नंबर पे रहा 9.6 एवरेज टीआरपीज के साथ, एंड दैट इज ड्रामा सीरियल तपिश. ये एक जियो एंटरटेनमेंट पे ड्रामा आता है मंडेज एंड ट्यूजडेज को शाम 8 बजे, और मुनीब भट्ट और लाइबा खान इसमें हमें मेन लीड रोल्स में नजर आ रहे हैं. द प्लॉट revolves around, you know, मुनीब भट्ट जो कि एक वेल्दी कॉन्फिडेंट ईगो ड्रिवन हैं, और लाइबा जो हैं वो एक रेगुलर सी लड़की हैं, और फिर कैसे इनकी लाइफ्स क्लैश होती हैं. सारे ड्रामे ऑलमोस्ट इसी तरह से शुरू होते हैं. इमोशनल इंटेंसिटी फैंस को इस ड्रामे में बहुत पसंद आ रही है. जो शिफ्ट्स हो रहे हैं ड्रामे में, स्वीट अफेक्शन टू यू नो हाई स्टेक ऑब्सेशन, वो सब कुछ ऑडियंस को मेरे ख्याल कनेक्ट कर रहा है. और एक और जो चीज़ मैं पढ़ रही थी कि क्यों ये ड्रामा हम मतलब लोगों को इतना पसंद आ रहा है, सो ऑन स्क्रीन प्रेजेंस एंड केमिस्ट्री मुनीब भट्ट और लाइबा खान की लोगों को अपनी तरफ खींच रही है. सो रिलेटेबल फैमिली डायनामिक्स तो है ही, सो दैट इज वाई पीपल आर काइंड ऑफ लाइकिंग दिस ड्रामा. अच्छा जी, छठे नंबर पे जो ड्रामा आया ये बिल्कुल नया एडिशन है. अभी अभी मेरा ख्याल गालबन ये ड्रामा शुरू हुआ है और एकदम से आते ही और इसने छठे नंबर पे अपनी जगह बना ली है. दैट ड्रामा इज Hey Fam, that is HEYFAM, Hey Fam. Wednesdays और Thursdays को शाम 8 बजे ARY Digital पे ये ड्रामा आ रहा है. दुआ जहरा जिन्होंने फीमेल लीड का किरदार अदा किया है, सीरत नाम है उनका इस ड्रामे में, जबकि जावियार नुमान एजाज जिन्होंने फैजान का रोल इस ड्रामे में अदा किया है. इसके साथ और भी बहुत खूबसूरत कास्ट है, जैसे कि फैसल कुरैशी हैं, नादिया अफगन हैं, नुमान मसूद हैं, जरार खान हैं. प्लॉट जो है वो हमारी लीडिंग लेडी के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है. सीरत एक सिंपल मिडिल क्लास लड़की जो जिनकी लाइफ ओवरनाइट बदल जाती है व्हेन अ वीडियो शी पोस्ट्स ऑनलाइन रैंडमली गोज वायरल, अभी मेकिंग हर एन इंटरनेट सेंसेशन, जैसा कि बहुत सारा हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये देखते हैं. और पैरेलली क्या हम देख रहे हैं कि फैजान जो हैं वो एक प्रिंसिपल जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, जो कि करप्ट फार्मास्यूटिकल एम्पायर को चैलेंज करने में लगे हुए हैं. और फिर कैसे अभी सीरत की लाइफ में क्या होगा और नुमान उनकी ज़िंदगी में कैसे आएंगे, दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग वॉच. लोगों को जो सबसे अच्छी बात एकदम से जो कनेक्ट किया है ये, दैट इज़ द यूनिक जेन ज़ी नैरेटिव. सो अनलाइक स्टैंडर्ड टेलीविजन ड्रामा जो हम देखते हैं, टिपिकल फैमिली एंड मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ, ये सारी फैमिली डायनेमिक्स चलती रहती है. हे फैम जो है वो स्पेसिफिकली टारगेट करता है यंगर डेमोग्राफिक्स को, तो दैट इज वाई प्रोबेबली पीपल हैव कनेक्टेड टू इट और एकदम से इसको लेके आ गए हैं छठे नंबर पे. टेक्निकल ब्रिलियंस इज वॉट एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इन दिस ड्रामा. द शो जनरेटेड मैसिव

was right out of the gate when producer Abdullah highlighted a technically demanding 10-minute continuous single take sequence shot without any cuts. तो लोगों ने उसको जब इतनी मेहनत की जाती है तो लोग एकदम से पहचान लेते हैं. आप देखने वाले, हम देखने वाले बिल्कुल बेवकूफ, इन्हें कतई ना समझा जाए. सो पीपल आर एक्चुअली लविंग इट. सो दैट इज वाई द ड्रामा इज वेयर इट इज. और फिर आपको जल्दी से बताऊं पांचवें नंबर का ड्रामा, एंड दैट ड्रामा इज मैं तेरा. ये एक सोप ऑपेरा है, मंडे टू फ्राइडे आता है शाम को 9 बजे, और ARY डिजिटल पे आता है. अरीज अहमद और युसरा इरफान, साथ ही काफ़ी सारी कास्ट है इस ड्रामे में. और प्लॉट जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है. मैं मुझे ये ड्रामा परेशान करता है, इसलिए मैं इसको देखती हूँ और उसके बाद मैं इट्स टू मच नेगेटिविटी फॉर मी, टू मच टॉक्सिसिटी फॉर मी, मेरा दिमाग घूम जाता है इस ड्रामा देख के. तो लेकिन यू नो सम पीपल लाइक टू वॉच दीज ड्रामाज. तो नंबर 5 पे ट्रेंड कर रहा है, राइट इन द मिडल ऑफ आर लिस्ट. अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिए. रिलेटेबल बोल्ड सब्जेक्ट है, इमोशनल रेजोनेंस है, और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेज हैं बाय एवरीवन. आफ्टर दिस सॉन्ग आई एम गोइंग टू टेल यू द टॉप 4, 3, 2, 1. Stay tuned.

एंड विद दैट नंबर फोर पे जो ड्रामा ट्रेंड कर रहा है, एकदम से जंप मारी है जी इसने, फोर पे पहुंच गया है. दिस इज ड्रामा सीरियल लीडर, जो कि एक पॉलिटिकल थ्रिलर ड्रामा है. हम टीवी पे आता है और संडेज को एक ही दिन आता है, बस 8 बजे शाम. और देखिए, मार्च 28 मार्च से ये ड्रामा शुरू हुआ था एंड आज सितंबर 20 तक की मैं आपको डिटेल्स बता रही हूँ. और कॉन्स्टेंटली ये ड्रामा टॉप 10 की लिस्ट में रहा है. कोई एक हफ्ता भी मैंने नहीं देखा कि लीडर जो है वो टॉप 10 की लिस्ट से बाहर निकला हो. सो इट इज़ रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, जो मैं आप लोगों से डालस में जब आप लोगों से मुलाकात होती है, तो जब ड्रामों की बात होती है तो बहुत सारे लोग लीडर देख रहे हैं. अली रज़ा एज़ मंसूर, किंजा हाशमी एज़ रुबाब, फरहान ताहिर, अली सफ़ीना, साकिब समीर, और भी बेहतरीन स्टार कास्ट है इस ड्रामे की. स्टोरी जो है वो डेफिनेटली यूथ के ऊपर बेस्ड है, कि यूथ एक मंसूर जो हैं, अली रज़ा, वो एक फार्मर के बेटे हैं, और किस तरह वो आते हैं, स्टूडेंट एक्टिविस्ट बनते हैं, रेवोल्यूशनाइज करते हैं चीज़ों को, और किस तरह जो बड़े बड़े वहाँ पे पुराने लोग बैठे हैं, फ्यूडल्स बैठे हैं आप कह लीजिए, उनके चैलेंज पावर को कैसे चैलेंज किया जाता है, और वो कितने इनसिक्योर होते हैं, और फिर क्या होता है. दैट इज़ वॉट पीपल आर लविंग इट. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, पीपल आर एब्सोल्युटली लविंग द केमिस्ट्री बिटवीन अली रज़ा एंड किंजा हाशमी. वैसे अली रज़ा के बारे में मैं आपको एक बात जरूर बता सकती हूं कि जिस भी हीरोइन के साथ अली रज़ा काम करते हैं, उनकी केमिस्ट्री रॉकिंग होती है. दैट इज अ गारंटी. अली रज़ा जिस ड्रामे में होंगे, केमिस्ट्री तो रॉकिंग होने ही वाली है. मैंने तो अब तक यही देखा है, तो आप बताइए मुझे, डू यू अग्री और नॉट. अच्छा जी, इसके साथ तीसरे नंबर पे जो ड्रामा रहा वो है टूटा हुआ दिल. जी हाँ, टूटा हुआ दिल कोई मतलब अभी तक 5 से नीचे की नंबर पे हमें नज़र आता रहता था, लेकिन एकदम से टूटा हुआ दिल को लोग काफ़ी पसंद करने लगे हैं और लिस्ट में ऊपर चला गया. आई थिंक जैसे ही जंजीरें निकला और कुछ और एक दो ड्रामे निकले, तो जो है डॉक्टर बहू निकला, तो फिर टूटे हुए दिल ने अपनी जगह ऊपर जाता गया. नाज़िश जहांगीर और आगा अली इसमें हैं, अरीज़ अहमद हैं, बाबर अली हैं, वनीज़ा सत्तार हैं. और प्लॉट जो है वो जो लीडिंग लेडी हैं, समीन और इदरान के ऊपर बेस्ड है. टू इंडिविजुअल carrying deep emotional wounds and hardships from life, और उनकी पाथ कैसे मिलती है, कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स हैं रियली. मतलब इट्स अ टिपिकल ड्रामा जो लोगों को देखना पसंद है. फॉर्मूला बहुत टिपिकल है, लेकिन उसकी जो ट्रीटमेंट है वो बहुत डिफरेंट है. हाईएस्ट रेटेड लॉन्ग फॉर्मेट सीरियल बना है ये 2026 का, पुलिंग इम्प्रेसिव TRPs और फॉर द इवनिंग स्लॉट. एक बार फिर आपको बताती चलूँ, डेली आता है ये ड्रामा. दिस इज अ डेली सोप, 7 बजे शाम. सो इंटरेस्टिंगली मैं देख रही हूँ कि डेली आने वाले ड्रामा, ये तो खैर डेली आता है 7 बजे, और वो जो दूसरा मैंने आपको बताया था मैं तेरा, वो डेली आता है 9 बजे. ये दो ड्रामे ऑडियंस एक्चुअली काफ़ी पसंद कर रही है. और नंबर 2 और नंबर 1 पे जो ड्रामा स्टैंड कर रहे हैं, वो बात करते हैं अभी बस इस गाने के उस बारे में.

0: एंड विद दैट वी आर हेडिंग ऑन टू अ शॉर्ट ब्रेक. लेकिन उससे पहले टॉप टू ट्रेंडिंग ड्रामास जो के रहे मेरे और आप के सबसे करीब, दैट इज दरे निजात नंबर टू. फ्राइडे और सैटरडे 8 PM ARY डिजिटल पे ये ड्रामा आता है. दुर्रफिशा सलीम, शहरयार मुनव्वर और नमीर खान हमें इसमें नजर आ रहे हैं. ब्रिलियंट एक्टिंग, ब्रिलियंट ड्रामेटाइजेशन, मतलब हाई वोल्टेज ड्रामा आपको इस ड्रामे में मिलेगा. सो जरूर वॉच कीजिए अगर आपने नहीं देखा. और उमेरा अहमद का लिखा हुआ ड्रामा है तो आपको कुछ सेंस भी बनेगी. ऐसे ही नहीं कि बस यहीं से इधर उधर से कैरेक्टर्स इधर उधर उछल के आ रहे. शी राइट्स रियली सेंसिबल ड्रामास. देखते हैं आगे हमें क्या देखने को मिलेगा और कैसे बनेगा ये रिश्तों का ताना बाना जो कि वो बुनती हैं. अच्छा, नंबर वन पे जो ड्रामा है जी, वो अभी तक उसने अपनी नंबर वन की पोजिशन, हालांकि दरे निजात वॉज 14.4 एवरेज TRP एंड दिस वन बस तेरा साथ हो इस 14.7. ऑलमोस्ट दरे निजात ने इसे बीट ही कर दिया है. मुझे लगता है अगले हफ्ते नंबर वन पे चले ही जाना है दरे निजात ने. बस तेरा साथ हो में फरहान सईद और सना जावेद हैं. ड्रामे की 42 एपिसोड हो चुकी हैं. आई थिंक इट इज टाइम टू रैप अप द ड्रामा. स्लो हो गया है, बिला वजह उसको ड्रैग कर रहे हैं. एक अच्छी चीज बनाई है उन्होंने. वी हैव बीन अ फैन ऑफ बस तेरा साथ हो. आई जस्ट होप के इट रैप्स अप नाइसली एंड क्विकली बिकॉज अब बहुत कुछ हो गया है ड्रामे में. तो अगर आपने देखना नहीं शुरू किया तो जरूर चेकआउट कीजिए. स्टार्ट टुडे, बिंज वॉचिंग शुरू कर दीजिए. दिस इज बस तेरा साथ हो, नंबर वन ट्रेंडिंग ड्रामा ऑन द TRP लिस्ट. सो बस तेरा साथ हो, दरे निजात, टूटा हुआ दिल, दारा द टॉप 3 ड्रामास. विद दैट वी आर रैपिंग अप दिस सेगमेंट. 4 बजे के बाद मैं भी हाजिर होती हूँ विद ट्रॉफी ट्रैक, सम ब्यूटिफुल अवार्ड विनिंग सॉन्ग्स एंड मूवीज. स्टे ट्यून्ड.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
9: Call 857-891-8942 today.
10: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
9: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
11: Dude, life mein kuch aisa karna hai jisme main front page pe rahu.
0: Front page ka to pata nahi, but tera page 3 mein hona meri guarantee hai.
11: Kaise?
0: Page 3 eatery?
11: No, not another restaurant again.
0: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, glass Pours and the food crafted to suit every craving, every appetite.
11: Matlab great food, great drinks, and great company. Yani ki main.
12: Page 3 Eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
13: It's true. Hum apni sadbuddhi se bahut si problem solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwarji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwarji, 945-527-0897. Or visit astrologerishwar.com.
14: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
15: जिंदगी एक रंगमंच है
16: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल। रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो। दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन। फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग, एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com।
17: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले, सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म। सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर।
18: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह। कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259।
19: इमिग्रेशन इज अ सीरियस कंसर्न फॉर अ कम्युनिटी एंड व्हेन यू आर फाइलिंग योर केस, यू वांट अ फर्म व्हिच इज एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू इमिग्रेशन लॉ, लाइक द लॉ ऑफिसेस ऑफ सीमा मेहता। From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
20: Hi, this is Ranveer Shori and you're listening to me on Fun Asia Radio.
21: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनेजिया रेडियो।

और इसी के साथ तमाम फूड लवर्स जरा गौर से सुनिए, ध्यान दीजिए. अगर आप इंडियन फूड में यू नो चाहते हैं बहुत मजे के स्पाइसेस और लॉट्स ऑफ डिलिशियसनेस, देन आई हैव गॉट अ प्लेस फॉर यू. पेज 3 ईटरी इज ब्रिंगिंग द इनक्रेडिबल फ्लेवर्स ऑफ मुंबई एंड लखनऊ राइट हियर इन हब 121 इन मेकनी. तो अगर आज चाट का मूड है, डन. अगर आपने कबाब्स खाने हैं, एब्सोल्युटली. स्मोकी तंदूरी डिशेस, एरोमेटिक बिरयानीज और साथ में सम अमेजिंग हैंडक्राफ्टेड ड्रिंक्स, क्या बात है. सब कुछ मिलेगा आपको, वेदर इट इज डेट नाइट डिनर विद फैमिली या फिर फ्रेंड्स के साथ एक फन इवनिंग. पेज 3 ईटरी डेफिनेटली वो जगह है जहां आपको जरूर जाना है. सो नेक्स्ट टाइम जब दिल करे कि आज कुछ डिलिशियस खाने का मूड है, तो आपको पता है आपको क्या जाना है, कहां जाना है. पेज 3 ईटरी एट हब 121 इन मेकनी. एंड फॉर द मेन्यू सिंपली विजिट page3eatery.com. दिस इज अ प्लेस मुंबई और लखनऊ के फ्लेवर्स मेकनी में आपके लिए.

कुछ बेहतरीन फिल्मों के बेहतरीन गाने ट्रॉफी ट्रैक सुन रहे हैं आप राइट हियर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण। और आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसों की बात, फाइनेंसेस की बात, चाहे बात हो टैक्सेस की, अकाउंटिंग की, पेरोल की, बुक कीपिंग की, बिजनेस या इंडिविजुअल्स, एंड यू वॉन्ट समवन दैट यू कैन ट्रस्ट, तो फिर नाम आता है एजी फिनटेक्स का। एजी फिनटेक्स ऑफर्स ट्रस्टेड टैक्स, अकाउंटिंग, पेरोल, बुककीपिंग और बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज, हेल्पिंग इंडिविजुअल्स एज वेल एज बिजनेसेस स्टे ऑर्गेनाइज्ड, इन्फॉर्म्ड एंड फाइनेंशियली ऑन ट्रैक। तो अगर आपको फाइनेंसिस के मामले में चाहिए प्रोफेशनल गाइडेंस और रिलायबल सर्विस, देन कॉल एजी फिनटेक्स 469-942-9888 469-942-9888 is that number, या फिर simply visit agfintechs.com, your trusted partner for tax, accounting and business solutions. Here is another beautiful number, I just absolutely love this one.

और अगर हेल्थ की बात आए तो एक जल्दी से क्विक रिमाइंडर आपको देती हूँ, इंश्योरेंस नहीं है या फिर पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर आपकी इंश्योरेंस नेटवर्क में नहीं आते तो नो वरीज एट ऑल. पैशन हेल्थ डायरेक्ट, दे ऑफर प्रीमियम केयर फॉर यू फॉर $85 अ मंथ. दिस इंक्लूड्स प्राइमरी केयर, प्रिवेंटिव केयर, मेडिकेशन मैनेजमेंट, टेली हेल्थ और भी बहुत कुछ. और गुड न्यूज ये है कि अर्विंग और फ्रिस्को की लोकेशंस आर ओपन सैटरडेज एंड संडेज टू. सो वीकडे बिजी हो तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप वीकेंड पे भी पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर विजिट कर सकते हैं अर्विंग और फ्रिस्को में. सो गिव देम अ कॉल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और यू वांट टू मेक योर बुकिंग्स. दैट इज 214-666-6259. यहां आप कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर पैशन हेल्थ फिजिशियंस .com पे लॉग ऑन कर सकते हैं टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम. आई हैव टू टेल यू दैट पैशन हेल्थ डायरेक्ट इज नॉट अ हेल्थ केयर इंश्योरेंस प्लान या हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है जी ये. एलिजिबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस डू अप्लाई. गिव देम अ कॉल, सेंड देम अ टेक्स्ट 214-666-6259.

0: जाना।
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य। एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइज़रवे, स्वीट 205, फ्रिस्को।
2: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
3: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
2: क्या मतलब?
3: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
2: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
3: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
2: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
4: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
5: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
6: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा, ईस्ट प्लेनो। विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
7: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
8: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
7: नहीं।
8: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
7: नहीं।
8: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
7: वो भी नहीं।
8: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
9: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
10: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
11: We need to talk.
12: अब क्या हुआ?
11: Nothing. It's not you.
12: Oh no.
11: It's the distance.
12: Distance? We live 10 minutes apart.
11: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
9: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
13: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
14: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
15: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
16: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
15: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
17: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
1: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
18: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
9: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
19: तुमसे मिलके दिल का है।
18: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
9: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
4: कितने आदमी थे?
3: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।

सेलिब्रेशन छोटी हो या बड़ी, मेमोरीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी होनी चाहिए. जी हाँ, वेडिंग, ग्रेजुएशन, हाउस वार्मिंग या कोई भी स्पेशल ओकेजन, विनेसा इवेंट्स टेक्स केयर ऑफ इट ऑल. वेन्यू डेकोर बाय सिग्नेचर इवेंट्स, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी एंड केटरिंग एक्सक्लूसिवली बाय बसेरा ग्रैंड. तो अगर आपका कोई भी इवेंट आ रहा है एंड यू वांट टू एंजॉय दैट इवेंट एंड लेट समबडी एल्स टेक केयर ऑफ द रेस्ट, देन विनेसा इवेंट्स इज द प्लेस यू नीड टू कॉल. हरी बसेरा साहब को कॉल कीजिए. विनेसा इवेंट्स, दैट नंबर इज 469-442-8770 और देखिए किस तरह वनेसा इवेंट्स आपकी पार्टी की सारी टेंशन आपके सर से उतार के खुद ले लेते हैं और आपको करवाते हैं पार्टी एंजॉय. यू मेक ब्यूटीफुल मेमोरीज व्हाइल दे डू द रेस्ट. दे आर योर सेलिब्रेशन पार्टनर्स. एंड विद दैट आई एम गोइंग टू टेक यू टू द वेदर अपडेट. इस वक्त जी वेंसडे सेप्टेम्बर द 23rd 4:49 PM इन द स्टूडियो एंड अकॉर्डिंग टू वेदर बग सिटी ऑफ मेकिनी में 96 degrees है. However, it feels like 103. ट्रिपल डिजिट से नीचे हमारी फीलिंग आ ही नहीं रही है, सारी वहीं अटक गई है. दिन रहा मोस्टली सनी और आज का हीट इंडेक्स वैल्यूज अप टू 104. पार्टली क्लाउडी रहेगी शाम, देन बिकमिंग मोस्टली क्लाउडी, लोज इन द लोअर 70s. पॉलन काउंट इज 10.8, आई एम सॉरी, विच इज वेरी हाई ऑफ कोर्स. बहुत सारे लोग पॉलन से परेशान हैं. आप अपनी रेमेडीज ले लीजिए इफ यू आर वन ऑफ दोज. यूवी इंडेक्स इज 8, विच इज वेरी हाई. कीप योर सनस्क्रीन्स हैंडी. हाइड्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सनराइज आज का हुआ 7:15 सुबह 7:15 AM, जबकि आज का सनसेट होगा 7:22 PM.

जी हाँ, कुछ खरीदने बेचने के लिए पैसों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. और देने लगी हूँ आपको करेंसी अपडेट. यूएस डॉलर कहाँ स्टैंड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज इन द वर्ल्ड. तो जी, इस वक्त अकॉर्डिंग टू xrates.com यूरो ट्रेड कर रहा है 0.87 पे, ब्रिटिश पाउंड 0.75 पे स्टैंड कर रहा है, इंडियन रुपी 95.89 पे ट्रेड कर रहा है, जबकि 1.41 कनेडियन डॉलर्स ट्रेडिंग फॉर 1 US डॉलर. पाकिस्तानी रुपी 277.46 पाकिस्तानी रुपीज स्टैंडिंग फॉर 1 US डॉलर, जबकि नेपाली रुपी 153.50 पे स्टैंड कर रहा है. बांग्लादेशी टका 122.90 बांग्लादेशी टकर्स आर ट्रेडिंग for 1 US dollar. And with that, let me give you the gold price update as well. Gold price per ounce right now, according to goldprice.org, is $4,287.09. Jabki 1 gram sone ki keemat is waqt hai $137.83. Kal ki nisbat 1 gram sone ki keemat mein $1.69 ki kami hui, jabki 1 ounce sone ki keemat mein $59.49 ki kami dekhne ko mili. But that's pretty much all that I have for you where your finance matters right here on Suneri Kiran.

0: मुझे।
1: और इसी के साथ आपको ट्रैफिक अपडेट देती चलूं बिफोर आई से माय बायस टू यू। तो जी ट्रैफिक में हमें कुछ इंसिडेंट्स नजर आ रहे हैं। द वेरी फर्स्ट दैट आई कैन सी इज एट 35 ईस्ट टुवर्ड्स गार्डन रिज बुलेवार्ड नॉर्थ बाउंड, जिसकी वजह से टू लेन्स आर ब्लॉक्ड आउट ऑफ देखिए नौ लेन्स, टू लेन्स आर ब्लॉक्ड इंक्लूडिंग वन ऑफ द एग्जिट लेन्स। द सेवेरिटी ऑफ दिस इंसिडेंट इज रिपोर्टेड हाई, एम्बुलेंस हैज बीन कॉल्ड हियर, सो प्लीज ध्यान रखिए अगर आप यहां पहुंचने वाले। There is another incident that has been verified about 25 minutes ago. That is at IH 30 at loop 12 west of eastbound. So, iski wajah se two lanes are blocked, including an exit lane. Once again, the severity of this incident is reported high as well. एक और इंसिडेंट जो हमें नजर आ रहा है दैट इज ऑफ अ डिसेबल्ड व्हीकल। अब इस डिसेबल्ड व्हीकल की वजह से बहुत सारा बैकअप यहां पे स्पॉट पे नजर आ रहा है। IH 30 टुवर्ड्स होराइजन रोड ईस्ट बाउंड, जिसकी वजह से टू लेन्स आर ब्लॉक्ड। और आपको पता है कि ट्रैफिक की सिचुएशन जो होती है इस वक्त ड्राइव रश आवर में, उसमें एक दो लेन्स और एक डिसेबल्ड व्हीकल कैन कॉज अ लॉट ऑफ बैकअप। सो देर इज अ लॉट ऑफ बैकअप एट दिस स्पॉट इज वेल। एंड अनदर इंसिडेंट दैट इज रिपोर्टेड एंड वेरीफाइड जस्ट नाउ अबाउट 10 मिनट्स अगो इज एट लूप 12 टूवर्ड्स ग्राउयलर रोड नॉर्थ बाउंड, जिसकी वजह से वन लेन इज ब्लॉक्ड। द सेवेरिटी ऑफ दिस इंसिडेंट इज रिपोर्टेड हाई, एम्बुलेंस हैज बीन कॉल्ड, there is a lot of backup. और अभी अभी चूंकि ये incident verify हुआ है इसीलिए आपको बहुत ज्यादा backup इस spot पे देखने को मिलेगा। But that's pretty much all, ये चार पांच incidents हैं जो मुझे roads पे नजर आ रहे हैं जो मैंने आपके साथ discuss किए। आप अपना ख्याल रखिए और please drive safe, be very careful, and I will see you tomorrow Thursday on afternoon drive time with Sunehri Kiran में। First Thursdays of the month we bring you Food Junction, the rest of the Thursdays आपकी फरमाइश पे वो 90s का Bollywood। Stay tuned and have a lovely evening.

0: वंडरफुल ट्रैक रीमा जी, आपकी रिक्वेस्ट कर दीजिए, हमने पूरी, दैट्स व्हाट वी डू। देखो रिक्वेस्ट भी पूरी होती है, आलू पूरी होती है, हलवा पूरी होती है, छोले पूरी होती है, बस मेरी नींद कमबख्त पता नहीं क्यों पूरी नहीं होती है, इसका कोई इलाज है तो बताओ। वैसे मेरी नींद पूरी करने के लिए मैं चाहता हूँ कि एक दो महीने की छुट्टियाँ हों, ठीक है जी, पहाड़ों का व्यू हो, अच्छा खाना हो, फिर तो मज़ा आए। मतलब बंदा सोए तो स्ट्रेस फ्री सोए ना, इतनी टेंशनों के साथ बंदा कैसे सो सकता है। बट नन द लेस मैं आपको ये बता दूं, आपकी टेंशन दूर हो जाएगी जी। व्हेन इट कम्स टू एनी ऑफ योर होम बाइंग नीड्स, योर स्ट्रेस कैन बी टेकन अवे बाय नवनीता खेमका, हु इज नाउ रियल्टर विद केलर विलियम। जी हाँ, हमारी अपनी नवनीता इज नाउ रियल्टर एंड शी कैन हेल्प यू गेट योर होम विद द प्लान एंड द एरिया दैट यू आर चूजिंग। उनकी स्पेशलिटी क्या है जी, पहले तो ये है कि मार्केट नॉलेज उनके पास काफ़ी है, क्रिएटिव मार्केटिंग के प्लान हैं उनके पास, एंड पर्सनलाइज गाइडेंस है, दैट कैन ऑलवेज हेल्प यू आउट। राइट योर स्टोरी विद हर, गिव हर अ कॉल 347-449-4242, दैट्स 347-449-4242, नवनीता खेमका विद केलर विलियम।
1: सब पे नहीं।

0: Taken from the movie Vibe, this was the track जिसका नाम है जी रातों में आना. And Vibe is a movie which recently came out, and that one is with Mr. Kunal Khemu, and he's directing the movie for the first time. I saw that movie and I thoroughly enjoyed it. अगर आपने नहीं देखी है जरूर चेक कीजिए. Let's see who we have with us on Fun Asia this evening. Good evening to you, Fun Asia. Who's this?
1: Hey Marvin, Anand this side. How are you, bro?
0: I am badhiya, brother. Anand, Anand बोले आप?
1: अनिंद्या.
0: अनिंद्या का मतलब क्या है अनिंद्या?
1: इसका निंदा नहीं कर सकते हो.
0: निंदा नहीं कर सकते हैं. चलो अनिंद्या बताइए, मैं आपके लिए आज क्या कर सकता हूँ ब्रदर?
1: भाई कोई भी मधुबंती बख्शी का गाना लगा दो.
0: मधुबंती बख्शी
1: बख्शी.
0: अच्छा जी, ये कौन आइटम है जी?
1: ये सिंगर है फेमस जिसने गाना गाया था नहीं आज की रात वाली.
0: अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे को नाम नहीं पता था इनका, बट थैंक यू फॉर दैट एजुकेशन ब्रो. एंड एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद मैं आपका गाना जरूर लगाऊंगा. थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग. यू आर लिसनिंग टू इवनिंग ड्राइव टाइम शो. इन अबाउट 3 or 4 minutes आई बी बैक. पहले सुनिए छोटे से मैसेजेस फ्रॉम आवर स्पॉन्सर्स, एंड ऑफ कोर्स चिपक के सुनते रहिए फनीशा.
2: Hey Frisco, get ready to celebrate silver like never before. Chandrika Silver by Shri Krishna Jewelers celebrates its grand launch. Discover exquisite handcrafted silver jewelry and artifacts with exciting inaugural offers and raffle prizes. Visit 7777 Warren Parkway, Suite 280 Frisco. Chandrika Silver, the tradition shines in silver.
3: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट.
4: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव.
3: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
4: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन.
5: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
6: अरे यार घर मिल गया.
7: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग.
8: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट. अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर. वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी.
7: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
8: बिल्कुल. विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम.
9: When the unexpected becomes inevitable, the real story begins.
10: इस वन की काली शक्ति, और अगर कोई रात को वन में प्रवेश करता है तो उसकी लाश भी नहीं मिलती.
11: Get ready for a brand new action packed experience full of emotion and suspense.
12: एक तरफ है वन देवी और एक तरफ है विकास.
11: The One, Force of the Forest,
13: a Hindi mythological folk thriller directed by Arunabh Kumar and Deepak Kumar Mishra, sizzling the big screen for the first time together, Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia.
14: On 25th September in cinemas near you.
15: What if your next home came fully loaded with over $35,000 in premium appliances, electronics and designer furnishings included? This nearly new home in Cambridge Crossing, Selina, first occupied in January, is available as the seller relocates. Enjoy resort-style amenities, upgraded interiors and truly move-in ready. Just bring your suitcase. Buyer's agents, get your client under contract by October 15th and earn an additional $2,000 bonus. Call Navneeta Khemka with Keller Williams Realty at 347-449-4242.
16: Every home has a story. Let's create yours together.
17: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
18: Weekend ka plan abhi tak nahi bana. Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein, har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye, to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort, Durant. Entertainment, luxury or excitement, sab ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
19: Raj.

भाई टाइम इतना एडवांस हो गया है कि मैं अभी इंडिया गया था मई में, तो वहां पे ना एक दुकान के बाहर लिखा हुआ था चैट जीपीटी विद एआई। मैं कहा मां यहाँ कि यहाँ चैट जीपीटी विद एआई का क्या चक्कर है, ये तो दुकान है और यहाँ तो मिलती है चाट और समोसे पकौड़े। मैंने पूछा भाई साहब से, मैं कहा ये चैट जीपीटी विद एआई का क्या चक्कर है, वो कहता भाई साहब कुछ नहीं, चाट गरम पोहा टी विद अदरक एंड इलायची।

0: 25 मिनट हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में, मैं रहूंगा जी आपके साथ 7 बजे तक। आज बुधवार हो चुका है जी, मिड वीक दैट इज वेंसडे एंड वी आर सिटिंग ऑन सितंबर 23rd एंड टुडे इज अ स्पेशल डे फॉर मी क्योंकि आज मेरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का बर्थडे है, यानी कि माय फादर्स बर्थडे टुडे एंड ही इज 72 इयर्स ऑफ एज, बट गॉड इज काइंड टू हिम एंड काइंड टू अस। ही इज फिट, ही इज हेल्दी एंड अभी भी मतलब फुल ऑन, यू नो, हमारे से भी ज़्यादा एनर्जी उनमें। ही लव्स फिशिंग, ही लव्स टू गो आउट टू यू नो प्लेसेस एंड बड़ा गार्डनिंग का शौक है और आजकल जो हमारा पेंट हाउस है वो भरा पड़ा है जी फूलों और बाकी चीज़ों से, ऑल थैंक्स टू माई डैड। हिज नेम इज़ माइकल दास। अगर आप उनको दुआओं में अपनी शामिल करना चाहते हैं आज के दिन तो ज़रूर कीजिएगा एंड आई एम विशिंग हिम अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। दिस बर्थडे विश इज़ कमिंग फ्रॉम SFL वर्ल्ड वाइड। इफ़ यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग इन द नियर फ्यूचर, आपकी एनिवर्सरी आने वाली है या आपके कजन्स का बर्थडे है, फैमिली में किसी का बर्थडे है, कोई शादी होने वाली है, यू लुकिंग टू सेंड देम गिफ्ट्स, पर आप कह रहे हो यार मैं यहाँ अमेरिका में बैठा हूँ, वो ऑस्ट्रेलिया में है या इंडिया में है, साउथ अफ्रीका में है, होनोलुलु में है, जहाँ भी है, SFL Worldwide can send everything for you. चाहे देसी आउटफिट्स ढूंढ रहे हो आप, मिठाई भेजना चाहते हो, नमकीन भेजना चाहते हो, anything that you wanna get from any other country to yourself, or if you want to send this to any other country to your loved ones, worldwide shipping karate hain with the best cost and the best part is doorstep pickup karte hain and delivery. To aapke ghar se saman uthayenge, jahan aapko pahunchana hai wahan pahunchayenge. Ocean shipping bhi available hai for larger items jaise ki puja ke mandir mangwane hain aapko, jhula, furniture, whatever you're looking to go ship or move, SFL Worldwide can do that for you. 1-800-691-2335 ya fir simple hai, website ko yaad rakhiye SFLworldwide.com. Let's see who we have with us this evening. Good evening to you, Phanesia. Who's this? 1-800-691-3. Radio volume. Radio का volume कम करेंगे sir, तभी बात हो पाएगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी मालिक।
1: मेरा नाम प्रणव देसाई है।
0: प्रणव देसाई साहब कैसे हैं आप?
1: बस मजे में हूँ। मैंने आपको अभी इसलिए फोन किया क्योंकि मैंने सुना कि आपके पिताजी का बर्थडे भी आज है।
0: मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे, उनका जन्मदिन है जनाब।
1: या तो मैंने आज एक मैन्युफैक्चरिंग मैंने भी किया था मेरे बेटे का।
0: अच्छा, वेरी गुड। क्या नाम है उनका?
1: शाइव देसाई।
0: शाइव देसाई, शाइव को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। ओके जी,
1: थैंक यू और आपके पिताजी को भी
0: थैंक यू साहब। और आज के दिन मैं उनको याद कराना चाहता हूँ, जिनको भी मेरे साथ कंप्लेंट है ना, मेरे पापा को फोन कर लेना क्योंकि कंप्लेंट अक्सर मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाई जाती है। यू आर लिसनिंग टू द बिंदास शो।

0: करण औजला विद दैट ट्रैक तेरे नाल प्यार जटाता इट इज कॉल्ड फॉर अ रीजन। आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है जी कि हम जो पंजाबी गाने हैं स्पेशली पंजाबी गाने इनका नाम जो है इंग्लिश में लिखा जाता है। अब जैसे अगला गाना है उसका नाम है बॉयफ्रेंड है, ये भी पंजाबी गाना, ये भी करण औजला साहब का है, पर बस आजकल ट्रेंड यही है कि हम इंग्लिश में लिखेंगे कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, ट्रेंडिंग है भाई, ट्रेंडिंग। अब वो 80s वाला ट्रेंड चला हुआ था, है ना, लोग फोटो खींच रहे लेफ्ट राइट, मैं भी था उसमें, कर करके कॉपी जी चैट GPT चक फटे हैं। इनको बताओ कि आपने 80s वाले फोटो को तो एक्सपीरियंस कर लिया, पर 80s में आपको पता है बाथरूम की जो फैसिलिटी है ना, ये इतनी मतलब तावड़ तोड़ नहीं होती थी भैया, स्पेशली हिंदुस्तान पाकिस्तान नेपाल बांग्लादेश बड़ा बुरा हाल था मालिक। और आपको पता है उस टाइम पे एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो थी लोटा, और लोटे से याद आए वो अंकल लंबे बाल वाले गंजे, लोटा लोटा लोटा लोटा मैं अजी, कमाल का एक्टर है, कमाल के सिंगर है वो, मतलब अमेजिंग बंदे को किसी ने समझाया भी नहीं कि रहने दे, पर आज देखो लोटा लोटा लोटा।
1: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
4: अरे सारे तो सेम है।
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
4: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो हैं, फ्रॉम टाइमलेस गोल्ड एंड रेडियंट डायमंड्स टू हेरिटेज पोलकीज, डिस्कवर टेक्सास लार्जेस्ट हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी कलेक्शन नाउ एट मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को। Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: Dad, property papers kahan hai?
6: Laptop mein.
5: Investment?
6: Google Drive.
5: Insurance? Passwords?
6: Beta, don't worry, mujhe sab pata hai.
5: Dad, wahi to problem hai, sirf aapko pata hai.
2: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
7: Hi, this is Deepti Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
2: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
4: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic alag. और ऊपर से ये स्ट्रेस।
8: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
4: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
8: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
4: ये क्या होता?
8: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
9: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
2: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल।
10: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
11: कुछ भी नहीं. Oura Debt Relief will do it for us.
10: क्या मतलब?
11: Oura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
10: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
11: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
10: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
12: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
13: ये तारा वो तारा हर तारा।
2: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
9: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
2: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense. Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
14: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
15: Hello, mere relatives aa rahe hain. Everyone's asking lunch mein kya hai?
14: Fikar not. We have the perfect solution.
2: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25-plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
16: Hi, this is Vinay Pathak, and you're listening to me on Fun Asia Radio.

It is 5:47 in the studio clock. This is your evening drive time show. It's a Wednesday evening. Right now in the studio, it's 5:47, September 23rd, and the weather is hot. I was out there today, and it was crossing 90s, and I think right now as well, we're sitting at 92 degrees. 92 degree abhi ka temperature hai janab, aaj ka low. Is going to be around 73, but you're only going to see that tomorrow morning when the sun, you know, it starts to hit the Texas ground. But uske baad phir se wapas jayega ji. It's going to be around 91 for a high tomorrow, 90 for a high on Friday, and Saturday is the same. But we're looking at good lows starting Friday, 68 for a low, 70s is what I see until Tuesday, and then we do a cold dip with the 60s and 61 is something I see for the next Wednesday and Thursday. पर चलो ये मौसम तो हम वेलकम कर ही रहे हैं. मुझे पता था टेक्सास यही करेगा हमारे साथ. ये हमेशा ऐसे ही करता है, गर्मी पहले बारिश, बारिश गर्मी, गर्मी बारिश, सीधा सर्दी ठा. मतलब बीच में हमें ऑटम शॉटम की फीलिंग तो लेने नहीं देता ना फॉल. ये नहीं नहीं, इनका तरीका नहीं है. ये कहते हैं सीधा तुम जलने के बाद सीधा बर्फ की सिलियों पे लगो. यू आर गोना बी विद मी टिल 7 o'clock, एंड दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय नन अदर देन हिमालयन बाजार, व्हिच इज नाउ ओपन फॉर यू राइट इन द हार्ट ऑफ ग्रैंड प्रेरी. इट इज अ देसी ग्रोसरी स्टोर जिसमें आपको आपकी जरूरत की हर चीज मिलेगी, चाहे आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, यू नो फॉर दैट मैटर अफगानिस्तान, व्हिच एवर कंट्री, एंड यू आर लुकिंग फॉर ग्रोसरीज, फ्रेश वेजिटेबल्स, हलाल मीट, यू गेट एवरीथिंग एट दिस बाजार जिसका नाम है हिमालयन बाजार. The good part that if you stay within a 5-mile radius, $50 ki grocery pe, aapko delivery absolutely free milegi. You don't even have to go to the store. And it is serving people in Mansfield, Arlington and in Grand Prairie. So make sure to check out Himalayan Bazaar. Google kijiye isko. With Google, you will know exactly how far you are. And if you're within a 5-mile radius, chaka chaka boom boom, aapki delivery absolutely free. And for my Nepalese listeners, they do carry water buff as well. And shaam ko aapko milenge ji 5 baje ke baad taza taza pakode, chai, samosa and coffee. Don't miss on that. I'm going to be back right after this next track. But ek baat notice ki maine, and that is to do with how we become impatient with our life. Jaise ki agar aap gaadi mein hote hain, which almost all of you are doing every day. When you're in your cars aur jam laga ho, traffic jam hai, you have nothing to do but wait. उस टाइम पे आप फोन कर लेते हैं किसी को या कोई रील्स देख लेते हैं. But what you're actually doing is you're waiting for the traffic to clear up. पर हम लाइफ में ऐसा क्यों नहीं करते यार? अगर कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, थोड़ा सा कुछ चीजें रुक गई हैं, तो हम फ्रस्ट्रेट होकर सारा कुछ छोड़ के कहते हैं जिंदगी खत्म हो गई, तौबा तौबा तौबा. अरे भाई, हर प्रॉब्लम परमानेंट नहीं होती. जैसे कि आपका ट्रैफिक जैम परमानेंट नहीं है ना मेरे जान, वैसे ही आपकी प्रॉब्लम्स भी परमानेंट नहीं है. डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ. और ये मत बोलते रहा करो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है. नहीं भाई, सबके साथ हो रहा है. आपके साथ जो गाड़ी ट्रैफिक जैम में फंसे हैं, वो सब ट्रैफिक जैम में फंसे हैं. बट चॉइस आपके पास है. क्या आपको हर चीज़ अपने प्रॉब्लम्स को ये सोचना है कि ख़त्म हो गई ज़िंदगी में, फंस गया मैं, बर्बाद हो गया, कि उसको एक ट्रैफिक जैम की तरह लेना है? ठीक है जी, दैट इज़ हाउ लाइफ इज. इट्स जस्ट अ जैम एंड दिस टू शैल पास. यू आर लिसनिंग टू द बिंदास शो ओनली ऑन फन एशिया. And right after this track, RIG, a giveaway.

0: We are taken from the movie Azad, and this was in the voice of Madhuvanti Bagchi. Somebody had called earlier, requested for that voice and that lady's song. So, mirko ye wala laga ke should be a good one to play for you all. And of course, this is your station, jis pe aap apni vichar hamare sath share kar sakte hain. You can share your thoughts about whatever you're going through. Yaar, baat karne ka dil hai kisi se, we are always here for you. And like I said, pehle bataya aapko ke zindagi ki pareshaniyan hum apne aap zyada badhate hain. Actually, mein itni badi pareshani hoti nahi. And we just focus too much on the problem than the solution. That is the problem. Khair, agar aap kabhi ek accidental problem mein phas jayein, if you fall in a place, कोई स्लिप एंड फॉल आपका किसी बिल्डिंग में हो जाए, किसी की वजह से हो जाए, यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद द अटॉर्नी हु हैंडल्स योर केसेस फॉर यू. हिज नेम इज अटॉर्नी ओमर ख्वाजा एंड ही इज अ स्पेशलिस्ट व्हेन इट कम्स टू एक्सीडेंट्स, स्लिप एंड फॉल्स. नाउ ये तो हम कभी नहीं चाहते कि आपका एक्सीडेंट हो, बट इफ यू एवर इन्वॉल्वड इन वन, द पर्सन दैट कैन हेल्प यू इज अटॉर्नी ओमर. ही इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट एट attorneyomar.com. उनकी वेबसाइट पर चले जाइए एंड जस्ट रिमेंबर दिस नेम, क्योंकि कभी ऐसी मुसीबत हो तो आफ्टर यूर सेटल्ड इन, यूर डन, यू नो, calling 911, making sure you're safe, the second thing you're going to do before you call your insurance company is call Attorney Omar. attorneyomar.com on the website for you. I'm going to play a song, aur iske saath saath maine aapse ek baat boli thi ki I'm going to do a giveaway, and I'm going to do this. Ek celebrity aaj apna janmdin मना रही हैं, एंड हर बर्थ नेम वॉज समर्थ, समर्थ SAMARTH, बॉर्न ऑन 23rd of September 1943, एंड शी इज़ अ बॉलीवुड एक्ट्रेस. अपने टाइम में बहुत सारी फिल्में इन्होंने की, एंड शी इज़ समबडी हु हैज़ फिल्म फॉर अवार्ड. और उसके लिए मैं मूवीज़ आपको बताऊंगा, आपको पहचानना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है. द सेकेंड कॉलर हु गिव्स मी द राइट आंसर गेट्स दिस गिव अवे फ्रॉम मिराज लाउंज. नाउ मिराज लाउंज इज लोकेटेड इन मिकिनी, और ये आपको दे रहे हैं $20 ऑफ योर $50 डाइन इन बिल. हुकास प्रीमियम क्वालिटी के वहाँ आपको मिलेंगे डिलिशियस फूड जो मैं खा चुका हूँ. कॉकटेल्स आर टू डाई फॉर. लाइव म्यूजिक डीजे नाइट्स दे होस्ट देम क्वाइट रेगुलरली. हैप्पी आवर हमेशा चलता है मंडे टू थर्सडे 11 AM टू 6 PM, और लेडीज नाइट एंड कॉलेज नाइट दे host that as well. Right now, if you give me the answer to my question, which is whose birthday are we celebrating when I tell you these movie names. Remember, her birth name was Samarth, born on today's date, 23rd of September 1943. Some of the movies that she did: Mere Jeevan Saathi 1972, Do Chor, Uske Saath Saath Hathi Mere Saathi 1971, Jeene Ki Raah, Nayi Roshni, Rajkumari, Kadam Phool, Pratham Kadam Phool, and और कौन सी बताऊँ मैं आपको, बाहरें फिर भी आएंगी, जूल थीफ. इफ़ यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट, गिव मी अ कॉल. इतने टाइम में हम सुनते हैं उन्हीं की फिल्म से एक प्यारा सा गाना, विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. लेट्स सी हू डू वी हैव फर्स्ट हियर. गुड इवनिंग फनेजा, हु इज दिस?
1: रुचिका.
0: रुचिका जी कैसी हैं?
1: अच्छी, आप बताइए.
0: आंसर इज तनुजा. रुचिका जी आप कॉलर नंबर वन हैं, बट आई अप्रिशिएट यू कॉलिंग. लेट्स सी हु डू वी हैव ऑन नंबर टू, हु कैन टेल मी इफ दिस इज द एक्ट्रेस दैट आई एम लुकिंग फॉर.
2: रुचिका जी रेडियो का वॉल्यूम वन है, बट आई अप्रिशिएट यू कॉलिंग.
0: रेडियो रेडियो हेलो, रेडियो का वॉल्यूम कम कर लो. मालिक प्रभु दाता भगवान मेरे मालिक नहीं सुनते. देखो ऐसा होता है जब रेडियो का वॉल्यूम नहीं कम करते, मुझे आगे जाना पड़ता है. गुड इवनिंग फरेशा, हु इज दिस?
3: माय नेम इज रुपेश.
0: रुपेश भाई क्या हाल?
3: बस बढ़िया, आप बताओ. मेलिन भैया
0: ऊपर वाला मेहरबान, खुली हमारी दुकान. नाम मालूम है आपको?
3: तनुजा.
0: तनुजा इज द राइट आंसर ब्रदर. मिकिनी जा सकते हैं?
3: हाँ जी, हाँ जी, श्योरली.
0: राइट, होल्ड ऑन, आई विल टेक योर इन्फॉर्मेशन ऑफ द एयर. Yes, it is indeed Tanuja celebrating her birthday today. She is 83 years of age, and a lot of movies to Bollywood by her, jaise ki Rajkumari, Deya Neya, Do Chor, and Hathi Mere Saathi, of course, a very popular one, Jewel Thief, another one. Happy birthday, Tanuja ji, from the team here at Fun Asia and from Banda Bindas.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Yaar, festival season aa raha hai aur meri wife ne shopping list bhi de di hai.
7: Kitni lambi list hai?
6: Bas 2 pages. इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ एक पूजा मंदिर भी.
7: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL Worldwide है ना. इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं. पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है.
8: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL Worldwide. शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड Worldwide. विजिट SFLWorldwide.com.
9: हुजूर, आपको चुनना होगा, हम या ये बिरयानी.
10: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह.
9: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
10: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद.
11: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco. 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
12: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
11: Barista House, richness of biryani bliss.
13: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
14: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
15: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway. Cause miracles happen in Mirage.
16: जिंदगी एक रंगमंच है
17: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल. रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो. दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन. फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन. कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com.
18: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
19: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
20: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
21: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
20: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
0: इंडिया में घर खरीदना हुआ आसान, गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो आ रहा है फ्रिस्को में अक्टूबर 10th एंड 11th, हैथ रीजेंसी फ्रिस्को 10 AM टू 8 PM, मुंबई, बैंगलोर, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद एंड दिल्ली NCR के टॉप डेवलपर्स से मिलने का एक ही मौका. चूज योर होम फ्रॉम 200+ प्रोजेक्ट, फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग, एन इवेंट बाय माय स्क्वायर फीट.
1: All right, welcome back once again to your evening drive time show right here on Fun Asia. It's 6:05 in the studio clock, and that means it is time to talk about something that we think, haan, kar lenge yaar, asaan hi to hai, online jayenge, bhar lenge form. Arey bhai, I'm talking about insurance. Haan ji, asaan hai, jaiye online, le lijiye quote aur bhar lijiye. But jab claim ki baari aayegi na, tab wo bolenge, oh, I'm sorry, clause number 5, you didn't have that coverage, clause number 7. तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना, इनको ना आने दें, एंड उसके लिए हमारे पास एक सोल्यूशन है. दैट इज हुमैरा जुमानी, हु इज इन द इंश्योरेंस फील्ड फॉर गॉड नोज हाउ मेनी एवर ईयर्स. जब से मैं शायद डालस आया हूँ तब से शी इज डूइंग दिस, एंड शी इज विद सिनारा इंक, SENADAINC, एंड द वेबसाइट इज sinaraink.com, SENADAINC.com, और जस्ट गूगल नेम हुमैरा जुमानी, यू विल फाइंड ऑल द इन्फॉर्मेशन. शी जॉइंस अस टू गिव अस अ टिप फॉर इंश्योरेंस फ्रॉम द इंश्योरेंस वर्ल्ड एवरी डे, एंड लेट्स आस्क हर व्हाट इज द टिप फॉर टुडे. गुड इवनिंग हुमैरा जी, please share today's tip with our listeners.
22: Yeah, hi, good evening. Today's tip is, if somebody wants to save money on their auto, home, umbrella, bundle insurance, they can contact us. Or if somebody's looking for commercial auto policy, we have a very good market for that. They can contact me or my team and we can definitely assist them, save their money. They can contact me or my team at 972-863-7772. 972-863-7772, or they can visit my website, Sinada, SENADAINC.com.
1: That is Sinada Inc. for you, and you can always Google the name Humaira Jumani. We were talking about Tanuja ji celebrating her birthday today, somebody whose birth name was Samarth Tanuja, but Tanuja Mukherjee was her screen name, Bengali, Marathi, kaafi filmon mein kaam kiya hai. She's done a lot of work in the cinema industry. एंड फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है जी. काफ़ी फिल्में जो करी हैं बहुत पॉपुलर हुई, जैसे कि हाथी मेरे साथी, जूल थीफ, नई रोशनी एंड मैनी मैनी अदर्स. टुडे मार्क्स हर 83rd बर्थडे. अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू तनुजा जी. और जब उनकी बात की है यार, तो एक और गाना उनकी एक बड़ी बढ़िया सी फिल्म से, एंड आई थिंक दिस ट्रैक इज़ ऑल्सो फॉर एवर गोल्ड राइट हियर.

इनके दिल को तो चैन आ जाएगा, बट अगर आपके दिल में काउमाऊ काउमाऊ होता है या आपको लगता है कि आपको एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, यू लुकिंग फॉर अ गुड पीसीपी, देन आई वुड रेकमेंड डॉक्टर मंदीप आचार्य हु इज विद द लिनोक्सी मेडिकल एंड टेक्सास प्राइमरी केयर. दे हैव टू लोकेशंस इन फ्रिस्को फॉर यू, वन इज ऑन मेन स्ट्रीट, द अदर वन इज ऑन काइजर वे, एंड ही इज अ एक्सलेंट डॉक्टर. आई यूज हिम पर्सनली एज माई पीसीपी एज वेल, एंड समबडी हु इज डन अ लॉट ऑफ यू नो वर्क इन द कम्युनिटी चैरिटी वाइज अगर बात की जाए, बट आई थिंक हिज नॉलेज द वे ही इज केप्ट हिज क्लिनिक में सारी फीचर्स आपको इन इनसाइड द क्लिनिक मिलेंगी, जैसे कि एक्सरे फैसिलिटीज, सीटी स्कैन, एनी ऑफ योर ब्लड वर्क, एंड दे ऑल्सो टेक वॉक इन पेशेंट्स. अगर आपके पेरेंट्स इंडिया से आए हैं या कहीं और से आए, यू हैव गेस्ट विजिटिंग एंड दे नीड टू बी टेकन केयर ऑफ राइट अवे विद नो वेटिंग एंड नो डाउन टाइम, देन यू कैन गेट विद टेक्सास प्राइमरी केयर. 7 days a week ये ओपन है एंड दे टेक पेशेंट्स वॉक इन एज वेल. यू डोंट नीड एनी अपॉइंटमेंट इफ यू आर वॉकिंग इन. एंड आई वुड सीरियसली, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ पी सी पी हु स्पीक्स योर लैंग्वेज, देन डॉक्टर आचार्य इज डेफिनेटली अ पर्सन टू गो विद. टेक्सास प्राइमरी केयर इज द नेम ऑफ द फेसिलिटी एंड देर लोकेटेड ऑन 777 मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को. लेके चलते हैं जी आपको अगले गाने की तरफ. इज दैट्स वॉट वी डू यार, गाने और कुछ बातें खास, एंड ऑफकोर्स अपडेट्स that keep you informed of what's happening in the community. Phir film aayi thi ek nayi brand new which is called Vibe. Isme hai ji Kunal Khemu and he's also the director of the film. The track is called Aisi Meri Vibe. Here we go.

अलग है लाइफ, अलग है स्टाइल, अलग है हाइप मेरी अलग है वाइब, अलग है लाइफ, अलग है स्टाइल, अलग है हाइप मेरी अलग है वाइब, अलग है लाइफ, अलग है स्टाइल,

0: taken from the movie Vibe, directed by Kunal Khemu, and also in the lead role in that one. उसके साथ था जो लड़का दूसरा है नहीं जी, उनका नाम है स्पर्श. स्पर्श कौन? ओ सजनी रे, कहा हम तुमका बता सकते हैं, आई लव यू. वो वाले एक्टर भी इस फिल्म में है, नहीं देखिए तो जरूर चेक कीजिएगा, मजा आएगा आपको. फिल्म अच्छी है, एंटरटेनिंग है, मजेदार बनाई गई है. आपको पता है ये जो बातें करता रहता ना ब्रूस ली, जेट ली, ये बाद में आए हैं ब्रो. इससे पहले इनकी और लंबी फैमिली है, ब्रूस ली, जेट ली. फिर आपको मैं बताता हूँ, देखो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, एंड डोंट फॉरगेट फाइनेंशियली. आज बर्थडे एक और है किसका, ये देखो.
1: वो भला हो जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हो जी. मैं रुक्मणी का मामा हूँ, नाम है मेरा संपत, संपत लाल.
2: अच्छा
1: वो भला प्रेम नाम है मेरा, प्रेम
0: नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा. और इनका फिल्मों में नाम प्रेम चोपड़ा ही रह गया. काम ऐसा किया इन्होंने कि मतलब वैसे बड़े शरीफ तबीयत के इंसान, पर जब भी ये स्क्रीन पे आते थे तो पता लग जाता था कि आप कोई कांड होने वाला है. प्रेम चोपड़ा साहब विलन के बहुत सारे रोल, 60 इयर्स का करियर इन द इंडस्ट्री, एंड टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे. ही इज बॉर्न इन लाहौर, पंजाब, इन द ईयर 1935, 23rd of September. He's 91 years of age. बहुत सारी फिल्में इनके नाम हैं, जिसमें से कुछ हैं उपकार, दो अजनबी, बॉबी, क्रांति एंड मेनी मोर. गुड इवनिंग फन एशिया, हु इज दिस?
3: I'm with insurance.
0: अरे भाई ये तो मुझे कुछ बेचने आ गया. इसको मालूम नहीं कि ये तो गलत नंबर लग गया इसका. इट्स ओके, हमें तो मालूम है ना गलत नंबर लग गया, तो लो हम ये लगा रहे हैं.

0: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहां पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर।
1: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
2: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
3: वी नीड टू टॉक।
4: अब क्या हुआ?
3: नथिंग, इट्स नॉट यू।
4: ओह नो,
3: इट्स द डिस्टेंस।
4: डिस्टेंस? वी लिव 10 मिनट्स अपार्ट।
3: अरे इट्स एक्चुअली नॉट यू, इट्स दैट ड्राइविंग ऑल द वे फॉर माय सैल्स हॉट चिकन।
2: इरविंग, दैट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इज ऑफिशियली ओवर। सैल्स हॉट चिकन इज नाउ इन इरविंग। योर क्रिस्पी चिकन, लोडेड सैंडविचेस एंड बोल्ड सैल्स फ्लेवर्स जस्ट गॉट अ होल लॉट क्लोजर। सैल्स हॉट चिकन इरविंग, सेम ऑब्सेशन, लेस डिस्टेंस। Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
5: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
2: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
5: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com।
6: भूख लगी
7: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
8: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
2: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इन टू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी। Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice. Sadia!
9: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
10: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
2: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
11: तुमसे मिलके दिल का है।
10: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
2: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क। इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क इश्क है।

एक ना फिल्म आई थी जुड़वा, उसमें ना एक सीन था, जॉनी लीवर साहब ना पुलिस में थे और थिएटर, मतलब मेरा ख्याल है जुड़वा है वो, उसमें जॉनी लीवर साहब थाने में हैं और उनको बाथरूम जाना है, पर जब भी वो थाने की बाथरूम की तरफ जाते हैं कोई ना कोई घुसता रहता था, तो वो डायलॉग मारते हैं कहाँ जा रहे हो, एयरपोर्ट, कितनी फैसिलिटीज़ होती है ना वहाँ पे, तो ऐसी एयरपोर्ट पे एक बंदा फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहा था। और एक्चुअल में ना इंडिया में एटलीस्ट मेरा एक्सपीरियंस ये था कि जब 90s के बाद का टाइम, जब 2000 के बाद लेट्स से, दी पब्लिक रेस्टरूम्स वर बेस्ट इन द एयरपोर्ट, उसके बाद बाकी जगह सेट होना शुरू हुआ, बट ऐसे ही बंदा एक बेचारा अपना बाथरूम यूज़ कर रहा था, टॉयलेट में जाके बैठा है तो आवाज़ आती है साथ वाली स्टॉल से, क्या हाल है? आदमी घबरा के बोलता है, ठीक हूँ भाई। फिर आवाज़ आती है, क्या कर रहे हो? कहता है, भाई ज़रूरी काम से बैठा हूँ। फिर आवाज़ आती है, मैं आ जाऊँ? वो कहता है, यार नहीं नहीं भाई, मैं अकेला ही ठीक हूँ। फिर आवाज़ आती है, अरे यार मैं ना तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, कोई आदमी साथ बैठा मेरी हर बात का जवाब दे रहा है। है। बताओ बंदा फोन भी नहीं कर सकता, अपनी बीवी को बात भी नहीं कर सकता, साथ में बैठे पटर पटर पटर पटर लगाइए। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप कहीं फंस गए हो, बड़ी मजबूरी में हो, तो मैं क्या करूं, अपना कोई हल निकालो।

बंदा है बिंदास है जी, नाम अरविंदास है, शो का नाम द बिंदास शो, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। मैं रहूंगा जी आपके साथ 7 बजे तक आज की शाम। कुछ कुछ गाने मैंने अपने सुनाए जी, कुछ आपकी पसंद के चलाए। सेलिब्रेटिंग द बर्थडे ऑफ तनुजा जी, वेरी हैप्पी बर्थडे टू हर। साथ साथ में प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा साहब को भी जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। एंड दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज ब्रॉट टू यू बाय नन अदर देन सोनू निगम का शो आ रहा है। यार आप लोग क्या कर रहे हो, टिकटें नहीं ली तो फिर फटाफट ले लो, क्योंकि ये शो तो सोल्ड आउट हो जाएगा। दिस इज गोना बी दिस सैटरडे 26th of September एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इन एलन। आपने अभी तक टिकटें नहीं ली हैं तो अभी बोल रहा हूँ, जाइए। वेबसाइट का नाम है ticketmaster.com, गो देयर, गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन यू नीड, सेलेक्ट योर सीट्स एंड गेट द बेस्ट सीट्स इन द हाउस। अगर आपको ज़्यादा बड़ा ग्रुप है, कॉल करना है किसी को, बात करके टिकटें लेनी है, 1-855-360-SHOWS, दैट्स 855-360-SHOWS। शो का नाम रेवोल्यूशन, बिकॉज व्हेन सोनू निगम केम टू इंडस्ट्री, वाकई अपने साथ एक रेवोल्यूशन लेके आए। इतनी अच्छी आवाज, सो मेनी वेरिएशंस टू हिज सॉन्ग्स, एंड इतने प्यारे प्यारे गाने जो हम सब ने गुनगुनाए हैं अपनी लाइफ में, वो सब साथ गाएंगे, मिलके गाएंगे। एंड दैट इज गोना बी टुमारो, दिस सैटरडे 26th of September, 8:30 PM ऑनवर्ड्स, लाइव इन कॉन्सर्ट। इट इज सोनू निगम, वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक्स फ्रॉम सोनू पाजी, कमिंग योर वे। हम पंजाबी हैं, हम सोनू निगम को भी सोनू पाजी कह देते हैं।

Wonderful track, wonderful voice. Sonu Nigam live for you this Saturday at the Texas Credit Union in Allen. Get your tickets right away, and that's going to be at Ticketmaster.com. Don't delay it, bhai, kyunki ye tickets jo hai bilkul sold out hone wali hai. You would not get tickets on the last day, so please don't wait till then. This part of our show is brought to you by none other than SFL Worldwide, jinke bare mein aapko bata chuka hoon ji. They bring you some wonderful options when it comes to getting your stuff delivered. Ya yahan se kuch mail karna hai. Anything from a needle, a letter, to a whole home can be moved with SFL Worldwide. And you should also take note of Hoko, which is a brand new restaurant in India. Mein khub sans, you know, sansanati khez sab khabare. Sansani khez, sansanati kya hota hai? Sansanati bhi hoga kuch, shayad, chalo. But ye ji, kafi inhone shor machaya India mein. And that's because of their food, and some of the items that they sell are very unique to them. जैसे कि इनके पास एक आइटम है चना पूरी, सैंडविचेस, करीज एंड एक लेजेंडरी कोल्ड कोको. जाइए वहां पे जाके ट्राई कीजिए. लेट मी नो हाउ इट वाज. स्टूडेंट्स विल गेट 20% ऑफ विद अ वैलिड आईडी ऑल द टाइम. जी हाँ, इफ यू आर अ स्टूडेंट यू लिस्टिंग, 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा व्हेन यू गो टू होको एंड शो योर स्टूडेंट आईडी. एंड इफ यू आर एम्प्लॉय, वेल यू गेट 20% ऑफ लंच पैक्स व्हिच आर अवेलेबल मंडे थ्रू फ्राइडे ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, दैट इज बिटवीन 9 to 5. विजिट 2693 प्रेस्टन रोड स्वीट 1000 और गेट द मेन्यू ऑन द वेबसाइट होको.us.

यो यो हनी सिंह तो जैसे पता नहीं ऑटो पे ही बैठ गए हैं, एकदम निकल ही पड़े हैं, टका सका टकीला, बट नाइस गाना मैन, हैज दी फुल एनर्जी, मतलब पार्टी अगर डाउन हो ये वाला गाना चला दो एकदम पार्टी उड़ जाती है भैया। यो यो हनी सिंह फीचरिंग प्रियांशी, दिस वॉज कॉल्ड कासा तुपका अंथेमो, एंड इसमें डिस मार रहे हैं बादशाह भाई को, क्या हुआ वर्ड का चली नहीं। अः कोई बात नहीं यार, जिंदगी में दोस्त हैं, कभी कभी दोस्तों का टाइम बुरा होता है अच्छा होता है, पर दोस्तों को हमेशा अच्छा साथ रखना चाहिए। पता है क्या फ़ायदा होता है अच्छे दोस्तों का? अच्छे दोस्तों का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कभी बुरा वक्त भी आ जाए ना, अच्छे दोस्त हो ना, तो बुरा वक्त भी अच्छा वक्त बन जाता है बड़े भैया। इसीलिए कीप गुड पीपल विद यू ऑल द टाइम, मेक श्योर यू बिल्ड क्लोज रिलेशंस विद योर लव्ड वंस एंड योर फ्रेंड्स। एंड ये पता है रिलेशन कैसे बनते हैं? ये रिलेशन निभाने से बनते हैं, रिश्ते बन जाते हैं, बट इफ़ यू डोंट कॉल, इफ़ यू डोंट शो अप, इफ़ यू डोंट यू नो कीप इन टच, दे आर गोना गो डाउन द ड्रेन। तो मैं हमेशा ये करता हूँ, एंड अगर आपको ये लगे वो नहीं करता मैं क्यों करूँ, अरे भाई किसी को तो ये सेल्फलेसली करना पड़ेगा ना, दैट इज़ व्हेन थिंग्स गो वेल। सो मैं तो सेल्फलेसली अपने दोस्तों को हमेशा फ़ोन करता हूँ, बात करता हूँ, और वो रिश्ता बरकरार रखता हूँ, और जब जाता हूँ तो उन पे धौंस भी जमाता हूँ वो दोस्तों वाले के, हाँ भाई उल्लू के बट्ठे एयरपोर्ट आ। तो दैट्स हाउ इट गोज, कीप योर रिलेशंस, कीप योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू हैव टू गो द एक्स्ट्रा माइल टू डू दैट, कर लो ना यार, क्या फ़र्क पड़ता है। एंड जाते जाते ये बताऊँगा, अगर आपकी किसी से कोई नाराजगी है, समबडी इज़ अपसेट विद यू, यू आर अपसेट विद समबडी, यू नो वॉट, क्रैश दिस ईगो मैन, पिक अप दैट फोन, बोलो उसको यार के यू नो लेट्स फॉरगेट अबाउट इट, क्योंकि ज़िंदगी एक ही है यार, और इस ज़िंदगी का पता भी नहीं होता कब है कब नहीं है। तो जब तक है ये ज़िंदगी, मुझे लगता है कि हमें अपने दिल की हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहिए, यह हमारा हक है, दैट इज़ वॉट वी डिज़र्व, एज लाइफ इज़ गिवन टू यू, यू हैव ऑल द राइट्स टू फुलफिल ऑल ऑफ योर डिज़ायर्स। चाहे आपकी कोई ख्वाहिशें हैं, चाहे आपकी कोई एक यू नो गोल है दैट यू वांट टू अकॉम्प्लिश, चाहे आपके आसपास के रिलेशंस हैं, मेंटेन देम वेल, एंजॉय लाइफ बिकॉज इट्स ओनली वंस। विद दैट थॉट इज अ गुड नाइट, बाय बाय, अदियोस, आफ्टर मी इट इज इपी द हिपी फ्रॉम 7 to 10।